FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संबत 1948 के भाद्रपद मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आज के प्रथम सवा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय अपराह्न के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई।

0: 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701705000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी DGP इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार PSA बुडापेस्ट क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

जब हाथ थाम लो तुम तो हर राह सुहानी हो जाती है। तुम्हारी मुरली की धुन में ऐसी मिठास है कि थका हुआ मन भी कह उठता है, अब सब तुम्हारे पास है। आइए इसी विश्वास और भक्ति के साथ सुनते हैं तेरे भरोसे नंदलाल।

पवन पुत्र हनुमान जी बल, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। आपकी कृपा से हर संकट दूर होता है और मन में साहस का संचार होता है।

हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं। बस ऐसा स्मरण रहे, ऐसी कृपा बनाए रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसमें आज आपने जिन गायक स्वरों में भक्ति परक रचनाएं सुनी, वे गायक स्वर हरिओम शरण, मोहम्मद रफी, पंडित ओमकार नाथ और ओम व्यास के थे। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे थे, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज का विषय है मुक्ति। आलेख डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी का है, वाचन है यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: वृद्ध प्रज्ञा चक्षु संत स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी से एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, क्या सांसारिक लोगों और परमार्थियों के लिए

0: श्रम आवश्यक है? उसके उत्तर में प्रफुल्लित होते हुए स्वामी जी ने कहा, श्रम ही तो जीवन का अर्थ, सृष्टि का सौंदर्य और परमपिता परमात्मा को आनंद देता है। बिना श्रम हमारा जीवन नीरस, उदास और निष्क्रिय बन जाता है। ऐसा जीवन जीवित होते हुए भी मृत है। श्रमहीन जीवन कभी ये जान ही नहीं सकेगा कि जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, उसकी मंजिल क्या है। उसके लिए जीवन और जगती का अर्थ, उनका सौंदर्य, उसकी अनंत संभावनाएं, उसके अनगिनत रहस्य, उसके ज्ञान के अनंत आयाम सभी अर्थहीन हैं। वस्तुतः श्रम से जी चुराने वाला भूतल का भार है, उसके माथे का एक कठोर कलंक है। उन्होंने आगे कहा, इस धरती को किसने सजाया संवारा, किसने इन महान शहरों का, बड़े बड़े पुलों का, झीलों का, बाग बगीचों का, लाखों मील फैले इन मार्गों का, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किया? श्रम ने। ये बड़े बड़े गिरजाघर, देवालय और मस्जिदें किसने बनाई? किसकी बदौलत हजारों हजारों आविष्कार हुए, खोजें हुई? इतने भारी भारी उद्योगों को किसने उभारा? ये सब श्रम ही तो है। करोड़ों करोड़ों व्यक्ति के श्रम से ही संभव हो सका है ये सब। श्रम ही चंदन, श्रम ही वंदन। इन्हीं के दिन रात परिश्रम से हमें अन्न, वस्त्र और आश्रय मिल रहे हैं। वस्तुतः असंख्य व्यक्तियों के श्रम की बदौलत ही आज हम जीवित हैं। और सुनो, उन्होंने कहा, हम परमात्मा को सर्जनहार कहते हैं, क्योंकि उसने श्रम से इस विश्व की रचना की। अतः जब हम श्रम करते हैं तो हमारे हाथों में भी सृजन होता है, हमारे हाथों से भी सृजन होता है, और इस प्रकार हम भी परमेश्वर के समीप पहुंच जाते हैं। जब हम पूरी शक्ति लगाकर श्रम करते हैं तब हम स्वयं को भूल जाते हैं, हमारा अहं विलीन हो जाता है, हमारा संकल्प विकल्प, सारी आशा आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। तब हम समग्र मानव बन जाते हैं और हमारे हाथों सृजन के फूल खिलने लगते हैं, कुछ नया, कुछ अनूठा बनने लगता है। इस प्रकार श्रम हमें परमेश्वर बना देता है। स्वामी जी ने कहा, श्रम की बड़ी महिमा है। जो पुरुष श्रम करते हैं उनके पास लक्ष्मी अपने आप चली आती है। जो मानवता के त्राण के लिए श्रम करते हैं उन्हें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि की भांति समाज और देश में कीर्ति मिलती है। यही नहीं, शारीरिक श्रम हमारे संपूर्ण व्यावहारिक विश्व से संबंधित है। इसीलिए ईशोपनिषद में लिखा है, कर्म करता हुआ ही मानव 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, परंतु श्रम करने में कर्ता की भावना से निर्लिप्त रहे। श्रम धर्म है, धर्म का साधक है, धर्म की साधना में ध्यान, तपस्या, संयम, व्रत आदि का समावेश है। ये साधना का मार्ग भी बड़ा कठिन है, श्रम से भरा है। बुद्ध महावीर को जंगलों की खाक छाननी पड़ी, असंख्य ऋषि मुनियों को साधना के कठोर मार्ग का अनुसरण करना पड़ा। अतः साधना का श्रम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें चिरंतन सुख और चिरंतन शांति देता है, हमें सारे बंधनों से मुक्त कर देता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज का विषय था मुक्ति। आलेख डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी का था, वाचन था यतीन्द्र चतुर्वेदी का।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसारण।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थीं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। 5 घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर भूपेंद्र सिंह का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। प्रातः 6:55 में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:00। ब्रज माधुरी कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज वार्ता, ब्रज मंडल में चतुर्मास का महत्व। वार्ताकार होंगे राकेश तिवारी। इसी कार्यक्रम में श्रोता आनंद ले सकेंगे ब्रज लोकगीतों का। चित्रपट संगीत गीतांजलि आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर। कलामे शायर मोहम्मद अशफाक समर आप सुनेंगे प्रातः 9:00। कार्यक्रम जिले की हलचल सुना जा सकेगा प्रातः 9:15 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम आबोहवा का समय रहेगा प्रातः 9:25 पर। आज का विषय होगा जल की बर्बादी। आलेख एवं वाचन होगा मोनिका विजय का। गैर फिल्मी गजलें सलमा आगा की आप सुनेंगे प्रातः 9:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकेंगे प्रातः 10:00 से 11:00 तक। फरमाइशी फिल्म संगीत हेलो आकाशवाणी सुना जा सकेगा प्रातः 11:00।

प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर आप सुनेंगे दिन में 12 बजे। विषय होगा मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर बलवंत सिसोदिया। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे हरि किशन। संगत कलाकार होंगे बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ। हारमोनियम पर संगत रहेगी हरिशंकर शुक्ला की। ढोलक पर संगत होगी अमित पाठक की। परकशन सूरज भान होंगे। समय रहेगा दिन में 12:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक सुना जा सकेगा अपराहन 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा विश्व झील दिवस विषय पर। इसके अलावा चर्चा होगी स्वच्छता का महत्व विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे काव्य पाठ जिसका शीर्षक होगा वारिश और रक्षाबंधन। काव्य पाठ करेंगे चंद्रेश जैन। इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का। एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना जा सकेगा अपराहन 2:30 पर। संध्या 5:30 पर होगा कार्यक्रम युववाणी जिसमें आज की बात का विषय होगा विश्व झील दिवस पर। इसके अलावा आज की बात होगी आयुष्मान जन आरोग्य योजना विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता स्वरोजगार एवं उद्यम प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाएं। वार्ताकार होंगे चंद्रवान सिंह और इनसे बातचीत करेंगे जितेंद्र सिंह। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत

0: है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व। वार्ताकार है विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। भारत में पशुपालन के कार्य में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा लघु कृषक, सीमांत कृषक या भूमिहीन मजदूरों द्वारा पशुपालन कर पूर्ण किया जाता है। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण इनके द्वारा पाले गए पशु भी कुपोषण का शिकार होते हैं। पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध न होने के कारण इनका शारीरिक विकास मंद रहता है, इनकी प्रजनन क्षमता अधूरी रहती है, पशु देर से प्रजनन योग्य होता है, गर्मी के लक्षण भी प्रदर्शित नहीं होते, गर्भाधान के उपरांत पशु गर्भित नहीं होते हैं तथा ब्याने के बाद कम दूध उत्पादन होता है, काफ़ी समय तक गर्मी में नहीं आते और विभिन्न प्रजनन व्याधियों का शिकार हो जाते हैं। अब जानते हैं कि ये यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक यानी UMMB आखिर है क्या। यह यूरिया फीडिंग का एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है। इसके साथ ही इसमें भोजन के लिए अन्य आवश्यक तत्वों का मिश्रण भी इसे और उपयोगी बनाता है। यूरिया पशुओं के पेट में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, साथ ही इसमें मिनरल आदि भी पशु को सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसकी फीडिंग से पशु स्वस्थ रहता है, दुग्ध उत्पादन व प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। जो पशुपालक कम संख्या में पशु पालते हैं तथा पशुओं में पोषण तत्वों की कमी होने पर UMMB यानी यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक फीडिंग काफी लाभदायक तथा आर्थिक रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है। यूरिया ब्रिक को पशु के बांधने के स्थान पर रख देते हैं तथा पशु को उसे चाटने देते हैं। इसकी फीडिंग से अनेक लाभ हैं। बछिया व पड़िया इसके प्रयोग से कम समय में प्रजनन योग्य हो जाती हैं। गर्भित अवस्था में प्रसव के उपरांत इनके प्रयोग से दुग्ध उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है तथा पशु शीघ्र गर्मी में आता है। पशुओं को गर्मी में लाने में विशेष उपयोगी हैं। गर्मी में लाने के अन्य उपचारों के असर को भी यह बढ़ाता है। सामान्यतः उससे कम दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं की खली की आवश्यकता को भी काफी हद तक कम कर देता है तथा पशु प्रजनन संबंधी अन्य व्याधियों से भी पशु को मुक्त रखता है। अब बात आती है कि इसे बनाने की क्या विधि है। इसको बनाने की विधि अत्यंत सरल है। किसी बड़े उपकरण अथवा संयंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। पशुपालक एकल रूप से या समूह में सम्मिलित होकर इसको बना सकते हैं। ग्रामीण बेरोजगार इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। UMMB यानी यूरिया मोलेसिस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक की एक ब्रिक का आकार सामान्यतः एक ईंट के आकार का बनाया जाता है। इसके लिए ईंट बनाने के ढांचे में थोड़ा फेरबदल कर उपयोग में लाया जा सकता है। इसका औसत वजन 3 किलोग्राम होता है। इसके लिए विभिन्न सामग्रियों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसके निर्माण में जिन सामग्रियों को मिलाया जाता है वो इस प्रकार से है। मिनरल मिक्सचर लगभग 450 ग्राम, शीरा 900 ग्राम, नमक 200 ग्राम, यूरिया 300 ग्राम, सरसों या मूंगफली की खली 300 ग्राम, चावल की भूसी 300 ग्राम, आटा आप गेहूं का, मक्का का या बाजरे का कोई एक आटा ले सकते हैं 450 ग्राम, चूना 125 ग्राम। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर खली व अनाज को बदला जा सकता है। आवश्यकता के अनुरूप अन्य तत्वों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। चूने को छोड़कर अन्य सामग्री को पीसने के उपरांत मिला लेते हैं, फिर इस सामग्री में चूना मिलाते हैं तथा वजन करते हैं। इसके बाद सांचे में सामग्री को भरते हैं, दबाते हैं तथा 2 दिन छाया में सुखाते हैं। इसके बाद पॉलिथीन में लपेटकर भंडारित करते हैं। यह कभी खराब नहीं होता है। इसे नमी से दूर भंडारित किया जाना चाहिए। यद्यपि यूरिया फीडिंग एक सुरक्षित विधि है, फिर भी कुछ सावधानियां इसमें आवश्यक है। 6 माह से कम आयु के बच्चों को यह नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके पाचन तंत्र का विकास इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। अत्यधिक भूखे, कमजोर व पानी की कमी वाले पशुओं को भी इसे नहीं देना चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, विषय यूरिया ब्रिक फीडिंग का पशु प्रजनन में महत्व। वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः नेपालदेश

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है बाबुल। शब्द रचना शकील बदायूनी की है और इस गीत को धुन से संवारा है नौशाद ने।

अभी आपने सुना सुरैया को फिल्म शमा परवाना में। शदरथना मजरू की थी और इस गीत को धुन से संवारा था हंसलाल भांगल राम ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत आशा भोसले और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम है शारदा। इस गीत को लिखा है राजेंद्र किशन ने और इस गीत को धुन से संवारा है सी रामचंद्र ने।

इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में कल सुबह आई अचानक बाढ़ से अंतिम समाचार मिलने तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। इनमें से अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। पर्यटकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड ने टोल फ्री नंबर 1234, हेल्पलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किए हैं। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: इस बीच नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के करीब 150 स्थानों सहित देश भर में 1500 जगहों पर खेलो इंडिया संवाद के तहत युवाओं को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा। समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक नहीं लेने को कहा। इस बीच देश के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भी चिकित्सा सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की समय पर पहचान, आवश्यक जांच और उपचार के साथ गंभीर मरीजों के प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा भी शुरू कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ करते हुए विशेष बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के अनुसार प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की मातृशक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई।
3: वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, उसके रोजगार तक, उसकी उद्यमिता तक और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन का की गारंटी। यानी हमारी हर योजना, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समर्पित है।
0: मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न जिलों में सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को उपलब्ध कराई गई निःशुल्क बस सेवा के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और सिटी बसों में 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। रक्षाबंधन पर

0: यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने चंडीगढ़ लखनऊ और दिल्ली वाराणसी रूट पर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार चंडीगढ़ लखनऊ चंडीगढ़ आरक्षित स्पेशल ट्रेन आज रात 7:40 पर चंडीगढ़ से रवाना होकर कल 9:30 लखनऊ पहुंचेगी। वहीं दिल्ली वाराणसी दिल्ली स्पेशल ट्रेन आज रात 8:10 पर दिल्ली से चलकर कल सुबह 6:30 लखनऊ और 11:45 पर वाराणसी पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिलों में कृषि उत्पादकता और अन्नदाताओं की आय बढ़ाने के लिए आयोजित समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादकता को सुदृढ़ करने और प्रदेश के कृषि भविष्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: मुझे प्रसन्नता है कि यूपी एग्री सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के विजन के अनुरूप आज यूपी के अंदर जमीनी धरातल पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। ये 4 MOU उसी कड़ी को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने के क्रम में आगे बढ़ाया गया है और मेरा मानना है कि यहाँ पे जो 4 MOU हुए हैं ग्लोबल एंड नेटवर्क फॉर ह्यूमैनिटी के साथ, ITC के साथ और एक्वाब्रिज के साथ, ये केवल एक MOU नहीं है। हमारे अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने और यूपी की कृषि के भविष्य को एक नई दिशा देने का एक हम सब का एक संकल्प भी है।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के परिणाम कल जारी कर दिए। आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए आयोग की ओर से बताया गया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में शामिल करीब 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर उपलब्ध है। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का कल गाजियाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो करीब 89 वर्ष के थे। उन्होंने वर्ष 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दीं। प्रदेश भर में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर की बात। कहा, भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार। पड़ोसी देश नेपाल की बाढ़ को देखते हुए प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले में बढ़ाई गई सतर्कता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ से लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किए शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के परीक्षा परिणाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद 8:00 प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजय

0: ये है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: श्रोताओं, कैसे हो आप? उम्मीद करें और प्रभु से प्रार्थनाओं करें कि आप सभी सुखी हों, संपन्न हों, खुशहाल हों। और चतुर्मास चल रहे हो, जामे कछु अच्छो क्रियाकर्म भी कर रहे हों, क्योंकि चतुर्मास हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पावन महत्व रखो जावे। आषाढ़ सुदी एकादशी ते कार्तिक सुदी एकादशी तक चलवे वारो जिस समय भक्ति साधना संयम और सेवा को समय हते। और जब बात हुए हमारी प्यारी ब्रजभूमि की, तो चतुर्मास को महत्व तो और अधिक बढ़ जावे। इन 4 महीनन में तो ब्रज की गलियन में, मंदिरन में, कुंजन में भक्ति को अलग ही रंग दिखाई देवे। दूर दूर ते भक्तजन ब्रज में आमे, मंदिरन के दर्शन करें और भजन कीर्तन के संग परिक्रमाऊ लगामे। चतुर्मास हमें ये सिखावे कि जीवन की भागदौड़ में थोड़ी सी ठहरवे की जरूरत हते। कुछ समय अपने मन की ओर देखवे के ताई भगवान को स्मरण करो और अपने मन के अंदर झांको, और हमें का चाहिए, हम का करवे जा पृथ्वी पे आए हैं, वा को स्मरण करो। और अपनो समय या चतुर्मास को सुंदर बनावे के ताई अपनो समय दियो। ब्रज में तो भक्ति और सेवा एक दूसरे के संग संग चली रहे हैं। मंदिरन में विशेष आयोजन होमे, सत्संग और कथा होमे, और भक्तजन अपने सामर्थ्य अनुसार दान और सेवा भी करें। चतुर्मास हमें एक बहुत सुंदर बात सिखावे श्रोताओं, बाहर की दौड़ थोड़ी कम करो और भीतर की यात्रा थोड़ी बढ़ाओ। ब्रज की पावन धरती पर रह के तो ये अनुभव और गहरो है जावे। कायकू यहाँ की माटी के कण कण में राधा कृष्ण की भक्ति रची बसी है। तो आओ, जब पावन चतुर्मास में हम सब मिलके भक्ति सेवा और सद्भावना को संकल्प लें। 4 महीनन की जे पावन समय मन को प्रभु के चरणन में लगाओ और जीवन में प्रेम सेवा और संयम को रंग भरो। जाई क्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक ब्रजवार्ता, ब्रज मंडल में चतुर्मास को महत्व। वार्ताकार हते राकेश तिवारी।
1: ब्रज मंडल में चतुर्मास का अपना एक अलग ही महत्व है। वैसे तो 12 मास ब्रज में कोई वास करता है तो अपने आप को धन्य समझता है, परंतु सावन, भादों, क्वार और कार्तिक, ये जो 4 महीने हैं, ये ब्रज मंडल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार माँ यशोदा और नंद बाबा ने जब अपने पुत्र भगवान कृष्ण से

तीर्थ करने की इच्छा जाहिर की तो भगवान के द्वारा सभी तीर्थों का आह्वान करके ब्रजमंडल में बुलाया गया। जैसे लोग आप देखते हैं हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी तीर्थ वर्तमान में ब्रज में ही वास करते हैं। अभी आप देखेंगे जब ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है तो वो इन्हीं 4 महीने में होती है, क्योंकि मान्यता यही है कि ठाकुर जी इस समय यहीं ब्रज में वास कर रहे हैं। चाहे वो वल्लभ कुल संप्रदाय की यात्रा हो या किसी अन्य संप्रदाय की यात्रा हो, वो इसी 4 महीने में होती है। क्योंकि ब्रज मंडल में आप जो देखेंगे उस पूरे ब्रज में लगभग 360 कुंड, 12 वन, 24 उपवन, 4 सरोवर, 4 पोखर, 4 गंगा, 8 झूला की ठौर, 8 जो है दाऊ जी के दर्शन, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो पूरे ब्रज में इस समय इस 4 महीने में इन सभी के दर्शन के लिए लोग जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, यहीं पे वास करते हैं। तो इस प्रकार से तो ये 4 महीने की बात है। इसी बात की बात जब हम करते हैं तो श्रावण मास में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ हमारे झूलों की परम्परा है, हिडोलों की परम्परा है, तो पुष्टिमार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ ठाकुर जी के बाल स्वरूप की सेवा है, और बाल स्वरूप की सेवा के साथ साथ तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र, इसके हिसाब से ठाकुर जी सभी कार्यक्रम करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में श्रावण मास में 1 महीने के लिए ही स्वर्ण और रजत हिंडोले निकलते हैं, जो कि 11 महीने तक अंदर रखे रहते हैं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है, उस दिन ठाकुर जी सर्वप्रथम स्वर्ण और रजत हिडोले में विराजमान होकर झूला झूलते हैं, और यह झूला झूलने की परंपरा नित्य प्रतिदिन चलती रहती है, जिसमें आप देखेंगे केले का हिडोला है, फल फूल का हिडोला है, कली का हिडोला है। और इसके साथ साथ ही श्रावण मास में बहुत ही प्रसिद्ध घटाओं के कार्यक्रम ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होते हैं, जो ब्रजमंडल में हो सकता है कहीं और भी होते हों, लेकिन पुष्टिमार्ग संप्रदाय में और जिस भव्यता के साथ ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होते हैं वो लोग कहाँ कहाँ से देखने आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन घटाओं का जो कार्यक्रम है वह ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है कि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो बाल स्वरूप है, और बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना ही घटा है। और इस प्रकार लगभग 9 घटाओं का आयोजन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होता है, और वो भी तिथि के हिसाब से होता है। सावन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन सर्वप्रथम केसरी घटा का आयोजन होता है, केसरी घटा के बाद सोसनी घटा होती है, सोसनी के बाद आसमानी, आसमानी के बाद लाल घटा, उसके बाद गुलाबी घटा, श्याम घटा, लहरिया घटा, इस प्रकार से सफ़ेद घटा लास्ट में होती है। तो सफ़ेद घटा से तात्पर्य होता है कि बाहर का मौसम अब बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, इसलिए सफ़ेद घटा का आयोजन सबसे लास्ट अर्थात पूर्णिमा के दिन 28 तारीख को जब रक्षाबंधन होता है उस दिन होता है। उसके बाद दोज के दिन ठाकुर जी के हिडोला विजय होते हैं। विजय से तात्पर्य हमारा ये है कि ठाकुर जी अब हिडोले में नहीं विराजमान होंगे, इस प्रकार से हिडोला विजय होता है। और उसके बाद जो बाल स्वरूप है उसी के कार्यक्रम नित्य रूप से चलते रहते हैं, और जैसे ही श्रावण मास समाप्त होता है तो हे अजन्मा जन्म ले, अजन्मे के जन्म की तैयारी वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, लेकिन जब मथुरा को आप देखेंगे और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, यहाँ ठाकुर जी के जन्म की इतनी तैयारी पहले से होती है कि देश विदेश से आए जो भी तीर्थयात्री हैं वो ये देखते हैं कि भाई किस प्रकार से पूरे ब्रजमंडल में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से कृष्ण जन्मभूमि है, द्वारकाधीश मंदिर है, बाके बिहारी मंदिर है, राधा, जितने भी मंदिर हैं उन सब में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की तैयारियां हो जाती हैं। और जन्माष्टमी के जैसे ही बात होता है तो भाद्रपद में ही ब्रज 84 कोस की यात्राओं का क्रम हो जाता है, और वह यात्राएं पहले सर्वप्रथम विश्राम घाट पर आके नियम लेती हैं, और नियम लेने के बाद आप देखेंगे मथुरा में भी
एक अंतग्रही परिक्रमा का आयोजन होता है। उस अंतग्रही परिक्रमा में लोग पहले मथुरा के अंदर के सभी दर्शन करते हैं, उसके बाद इन सभी वनों में

0: हैं, पड़ाव के बाद उन जगह रहते हैं, और जब इस यात्रा का समापन होता है तो इस समापन के बाद एक बाह्य परिक्रमा, जिसे कि मथुरा की हम और आप बाहर की परिक्रमा कहते हैं, वह बाहर की परिक्रमा होती है। इस प्रकार से भरत 84 कोस की यात्रा के माध्यम से लोग पूरे ब्रजमंडल में घूमते हैं। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाहीं, भगवान कृष्ण ने भी उद्धव से कहा है कि उद्धव, ये जो ब्रज है इसकी मुझे छोड़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त है जाए। तो जहाँ तक ठाकुर जी के भाव की बात है, अभी हम बात करें कि भाई हम जा रहे हैं तो हमारे पास तो वो भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी के चरणों की धूल भी अगर हमें मिल गई तो हम निश्चित रूप से अपने आप को धन्य समझेंगे, क्योंकि ब्रजवासियों के प्रति ठाकुर जी का जो लगाव है, ठाकुर जी का बाल्यकाल मथुरा गोकुल में ही बीता, और ठाकुर जी की जो लीला है वो इन्हीं जगह हुई है। कि जहाँ हम देखते हैं कि अभी लोग जैसे नाथद्वारा जाते हैं, तो नाथद्वारा में लोगों ने देखा होगा कभी भी ठाकुर जी के शयन के दर्शन नहीं होते हैं। कि यहाँ आपके देखिए आन्योर गांव है जतिपुरा में, गोवर्धन के पीछे आन्योर गांव में एक बाई रहती थी, अजब कौर बाई। उस अजब कौर बाई ने भगवान की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि ठाकुर जी उस अजब कौर बाई की सेवा से प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उससे कहा, भाई तुझे जो मांगना हो वो हमसे मांग ले। अजब कौर बाई ने मांगा कि प्रभु आप मेरे साथ मेरे देश चलो, वह मेवाड़ की रहने वाली थी। तो ठाकुर जी ने उससे हाँ कर दी। जैसे ही ठाकुर जी ने हाँ की, ब्रजवासियों को ये पता लगा तो सभी ब्रजवासी एकदम से उस लकड़ी लेके आ गए उस बाई को मारने के लिए। तब ठाकुर जी ने ये कहा कि भाई मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आप लोगों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा, चूँकि इसने मेरी सेवा की है और ये मैंने इसको वचन दिया है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा और लेकिन दिन भर वहाँ रहूँगा, रात में आके आपके ब्रज में ही विश्राम करूँगा। इस शर्त के साथ ठाकुर जी यहाँ से पधारे, और ठाकुर जी ने भी उससे शर्त की थी, जहाँ देखे मुड़ के देखेगी मैं वहीं बैठ जाऊँगा। तो नाथद्वारा जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा ठाकुर जी आज भी खपरेल में बैठे हुए हैं, और नाथद्वारा के दर्शन करके ठाकुर जी नित्य प्रति ब्रज में आते हैं। वो जतिपुरा में एक मंदिर है श्रीनाथ जी का, उस मंदिर में एक आज भी भौरा बना हुआ है, और मान्यता ये है ठाकुर जी उससे नित्य प्रति नाथद्वारा जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि जब यमुना जी का श्रृंगार होता है पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर, तो वह भी आरती के बाद ही होता है। मान्यता ये है कि ठाकुर जी आ गए हैं तभी यमुना जी का श्रृंगार होगा। ब्रजवासियों को जब ये वचन दिया उसके बाद ठाकुर जी नित्य प्रति यहाँ ब्रज में आते हैं और अपने सभी कार्यक्रम आकर रात्रि में यहीं करते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी की लीला बहुत ही इस तरह की है कि ब्रज के प्रति लोगों का जो लगाव है, ब्रज में ऐसे ऐसे सुंदर स्थान हैं जहाँ लोग जाएँ तो साक्षात प्रभु से वास होता है। उनका देखने को ये लगता है कि हम जब तटीय स्थान आ गए तो उस रमणीय के स्थल में ऐसा लगेगा कि हम ठाकुर जी के पास ही बैठे हुए हैं, ठाकुर जी इस रज में हमारे साथ खेला हुआ है। हमारे मन में जो एक शांति है, जो हमारे मन में एक उत्साह है, वह ठाकुर जी से मिलने का उत्साह है। आदमी को अपने आप को अगर ठाकुर जी में लगाना है तो दुनियादारी से इस सब से हमें हटना पड़ेगा और ठाकुर जी के प्रति अपना लगाव रखना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी का चिंतन ऐसा चिंतन है कि इस समय जो श्रावण मास का हम बात कर रहे हैं, श्रावण मास की बात में यही है कि राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा। इस बदरा में जो झूला की परंपरा है, अभी आप देखेंगे इस तो रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी बहनें जब अपने पियर जाती हैं भाई को राखी बांधने, तो वहाँ भी चाहे वो पेड़ हो या कुछ भी हो, झूला झूलने की एक परंपरा इतनी ज़बरदस्त हमारे यहाँ चली हुई है कि इस झूला झूलने की परंपरा के साथ ही लोग अपने घरों में भी उसमें भी सब जगह झूला झूलते हैं। और इन चारों महीने का श्रावण भादों क्वार और कार्तिक, कार्तिक में आप देखेंगे यमुना स्नान की परंपरा आती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि इन चार महीने में सनातन धर्म में हिंदू रीति रिवाज में कोई भी शादी विवाह लगन प्रकार नहीं होते हैं।
1: अवई आप सुन रहे हते ब्रजवार्ता, ब्रज मंडल में चतुर्मास को महत्व। वार्ताकार हते राकेश तिवारी। ब्रज मंडल में चतुर्मास की बात चली तो आपने जानो कि ब्रज में चतुर्मास

में काका होवे। श्रावण मास में झूला झूले, बिहारी जी झूला झूले, और जब बिहारी जी झूला झूले तो हमारो मन भी कैसे हर्षोल्लास से आनंदित है उठे, वो जानवे के ताई हम आपको सुनवा रहे हैं जी मीठो सो ब्रजलोक गीत। तो बिहारी जी को मन में मानसिक रूप से झुलाते हुए जा मीठे से ब्रजलोक गीत को आनंद लो।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। अब आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10

0: करके हो जाती है।
1: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779709107500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0086185142905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1 लाख

0: 50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
3: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
6: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में

0: मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people including 133 Indians missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India dialogue today through video conferencing. Centre begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test series win against Sri Lanka in Colombo. Nearly 160 people have been killed and over 750, including 133 Indian nationals, remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects.

सिसोदिया वरिष्ठ चिकित्सक इंटरनल मेडिसिन आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी आज 27 अगस्त 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत गीतांजलि। कार्यक्रम का पहला गीत आप तक सुनवा रहे हैं।

0: सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: राखी का बंधन हो तो बहन को सिर्फ प्यार नहीं, सुरक्षा का भरोसा भी चाहिए। इस रक्षाबंधन UP 112 है हर परिवार के साथ।
6: पुलिस सहायता, एम्बुलेंस, फायर इमरजेंसी, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, साइबर क्राइम, रेल, हाईवे या किसी भी इमरजेंसी में 112 की फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर।
5: शहर हो या देहात, दिन हो या रात, रखिए अपनों की सुरक्षा का भरोसा।
6: किसी भी आपात स्थिति में फोन उठाइए और 112 मिलाइए। UP 112, नंबर एक सेवाएं अनेक।
5: UP 112 द्वारा जनहित में जारी।
7: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत, चित्रपट संगीत। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, उदित नारायण और साधना सरगम की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम जो जीता वही सिकंदर।

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म दिल क्या करे से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म कच्चे धागे से। आवाजें हैं अलका याग्निक और हंसराज हंस की।

0: अभी आप सुन रहे थे कच्चे धागे फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थीं अलका याग्निक और हंसराज हंस की। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत गीतांजलि का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है मोहम्मद अशफाक समर का कलाम शायर।
1: हजरात, 12 रबीउल अव्वल के को मद्देनजर रखते हुए एक कता पेशे खिदमत है, मुलाहिजा फरमाएं।

देखो। और शेर देखिए, अजब कशमकश में है दिल आज उनका, अजब कशमकश

और एक गजल का मतला और चंद अशआर पेश खिदमत में मुलाहिजा फरमाएं कि उसकी एक एक बात पर दिल ने भरोसा कर लिया, उसकी एक एक बात पर दिल ने भरोसा कर लिया। अब ये अक्सर सोचता हूं मैंने ये क्या कर लिया। अब

और शेर देखिए कि तम मेरी दुश्वारियां कुछ और भी बढ़ने लगी।

किया। और शेर देखिए कि जिस तरह से आसमां इस जमी का साथ है,

और देखिए शेर तवज्जो का तालिब हूं कि तब मेरी दहलीज पर सूरज चमकने लग गया।

0: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अशफाक समर का कलामे शायर। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलरामपुर और फर्रुखाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रामकुमार मिश्र का।
1: जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने विकास खंड की ग्राम पंचायत बलुआ बलुई का स्थलीय भ्रमण कर ग्राम पंचायत में संचालित विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गांव का भ्रमण करते हुए ग्रामीणों से सीधे संवाद किया तथा उन्हें मिल रही सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। जनपद में बाढ़ के दृष्टिगत संवेदनशील गांवों में राहत एवं बचाव दलों द्वारा बाढ़ राहत चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। जनपद में तैनात राहत एवं बचाव दलों द्वारा ग्रामीणों, स्कूली बच्चों को बाढ़ आपदा समेत अन्य आपदाओं से निपटने हेतु पूर्व तैयारियों, बचाव के उपायों आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है। जनपद बलरामपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अंतर्गत जिले के युवा स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। युवा इस योजना का लाभ लेकर अपना रोजगार शुरू कर अन्य लोगों को भी अपने साथ रोजगार से जोड़ रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 331 युवकों को स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में योजना लाभकारी सिद्ध हो रही है।
2: ऐसे युवा जो कोई विनिर्माण के क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री, इन दो इंडस्ट्रियों से संबंधित कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, वो युवा 1 लाख से लेके 5 लाख तक लाभान्वित हो सकते हैं। लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों को 1054 फाइल प्रेषित की जा चुकी है। 1400 का भौतिक लक्ष्य है और उसके सापेक्ष 1054 पत्रावली बैंक को प्रेषित किया।
1: जनपद में परिवार नियोजन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने, छोटे

0: परिवारों के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन एवं मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कलेक्ट्रेट परिसर से परिवार नियोजन जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद की मिश्रित आबादी एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण जिले में शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन ने संपूर्ण जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा यह कदम आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए उठाया है। सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने, भ्रामक प्रचार करने या वैमनस्यता फैलाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार ने बताया कि खरीफ मौसम में कृषक बंधुओं को प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से होने वाले संभावित नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत जनपद के सभी ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। खरीफ मौसम में धान, केला एवं मिर्च फसलों को योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। ऋणी कृषकों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। प्रदेश में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निरंतर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद बलरामपुर के विधानसभा क्षेत्र सदर अंतर्गत बलरामपुर श्रावस्ती बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर गोंडा बलरामपुर रेलखंड में बलरामपुर एवं झारखंडी रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित संपार संख्या 136 स्पेशल 3E पर प्रस्तावित 2 लेन रेल उपरगामी सेतु निर्माण का कार्य भूमि पूजन बलरामपुर में सम्पन्न हुआ। भूमि पूजन विधायक सदर पलटू राम द्वारा वैदिक मंत्रों चार एवं विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेल उपरगामी सेतु के निर्माण से रेल फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी तथा नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने तथा वाहन चालकों एवं आमजन को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 20 अगस्त को पूरे जनपद में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रवर्तन विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जनपद की सभी तहसीलों में प्रमुख मार्गों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को सुरक्षित यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की गई। जनपद बलरामपुर में 22 अगस्त को नवागत पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश, कानून व्यवस्था का अनुपालन, महिला सुरक्षा जनपद पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
1: सबसे पहली प्राथमिकता अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण, जन सुनवाई को और प्रभावी बनाया जाएगा और समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। तीसरी जो है, पुलिस के व्यवहार को संयमित और नियमित कराया जाएगा जिससे कि पुलिस का व्यवहार अच्छा हो। ये तीन हमारे फोकस के बिंदु होंगे।
0: जनपद बलरामपुर में श्यामन माह पर जिले के सभी प्रमुख शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मुख्यालय स्थित झारखंडी मंदिर, राजापुर भरिया स्थित बाबा जंगलीनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है।
2: बलरामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फरुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
3: उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए तथा अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन अवश्य उठाएं। बैठक में पेयजल, सिंचाई, सड़क, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा कर लंबित कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत, विधायक डॉक्टर सुरभि, MLC प्रांशुदत्त द्विवेदी, जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृत चेक, ब्रेल किट, करौनी पत्र, आवास योजना की चाबी तथा अन्य प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने फरुखाबाद जनपद के आगमन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्राओं को साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के प्रभाव को प्रति जागरूक किया। उन्होंने बेटियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत से आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिला चिकित्सालय में कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। यहां केक काटकर 20 नवजात बेटियों और माताओं को खिलौने, बेबी किट, मिठाई का वितरण किया। उपाध्यक्ष जी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण कर ड्रेस और भोजन की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही वृद्धाश्रम के निरीक्षण के दौरान बुजुर्गों को माता पिता समान बताते हुए के स्वास्थ्य की देखभाल तथा खान पान का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। फरुखाबाद जनपद

0: में बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैंक प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारक कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही बैंकों द्वारा निरस्त किए गए आवेदनों का पुनः सत्यापन कराने और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित बैंक के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजने का फैसला लिया है। जिलाधिकारी ने KCC, SHG, PMEGP, MYSPI और मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम में गति लाने तथा लंबित ऋण आवेदनों को बिना अविलंब निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ सहित अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। फरुखाबाद जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने स्थलीय निरीक्षण कर राहत एवं बचाव योजनाओं की गहनता से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को समयबद्ध ढंग से राहत सामग्री, खाद्यान्न, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर निगरानी बनाए रखने के साथ साथ संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए।
1: फरुखाबाद में गंगा जी और रामगंगा की वजह से बाढ़ आती है और इस बार गंगा जी का स्तर जो चेतावनी बिंदु है उससे ऊपर गया है बट खतरे के निशान से अभी नीचे है। 3 गांव मरहूम हुए हैं, उनका सभी का विजिट किया गया है और 300 लोगों को बाढ़ शरणालय में विस्थापन किया गया है। शरणालय में सभी व्यवस्थाएं की गई है, हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था है, फॉगिंग छिड़काव, कुक्ड फूड वहां पर दिया जा रहा है और शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों के लिए वहां पे क्लासेस भी लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा गांव में जो आपके पशु हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं तो उसे पशु नाले की भी व्यवस्था की गई है और उनके चारे की भी व्यवस्था की गई है।
0: फरुखाबाद जनपद में ऑपरेशन ग्राम संवाद का आयोजन पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी थाना प्रभारी, बीट कांस्टेबल एवं क्षेत्राधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र वाले गांव में एक दिन बीट की सूचनाओं, स्ट्रीट शीटरों एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के प्रति जानकारी एकत्र करेंगे। इस ग्राम संवाद का मुख्य उद्देश्य गाँव के संभ्रांत लोगों से बेहतर समन्वय बनाना है, जिससे लोग बेखौफ होकर आपराधिक प्रवृत्ति एवं स्ट्रीट शीटरों की जानकारी बिना डर के पुलिस से साझा करें, भयमुक्त और अपराध मुक्त समाज का निर्माण हो सके।
2: इसमें सभी थाना प्रभारी, बीट कांस्टेबल, क्षेत्राधिकारी किसी भी एक दिन अपने क्षेत्र के गांव में जाएं, वहां पे जितनी भी सूचनाएं हैं, चाहे वो बीट की सूचनाएं हो गई या फिर HS की सूचनाएं हो गई, सी प्लान ऐप में जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे जुड़ी सूचनाएं हो गई, इन सारी चीजों से एक तरह से संवाद स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है इस पूरे योजना के तहत।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
4: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा, विषय है जल की बर्बादी, आलेख एवं वाचन मोनिका विजय का है।
5: हमारे शरीर में 70% पानी होता है, यहाँ तक कि धरती भी 70% पानी से ढकी हुई है। जल न केवल हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है पर हमारी अच्छी सेहत के लिए भी उतना ही जरूरी है। बहुत पुराने समय से हमने पानी को कई तरीकों से इस्तेमाल किया है, जैसे कि यातायात, खेती और बिजली के उत्पादन में भी। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती करने के लिए हमें सबसे ज्यादा पानी की ही जरूरत होती है। पानी पेड़ पौधों को जीवित रखते हैं और हमारे जंगल को हरा भरा रखते हैं। इस वजह से वातावरण का तापमान संतुलित रहता है। जीने के लिए हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बिना पानी के बिना किसी भी जीव जंतु का रहना मुश्किल है। इसीलिए हमें पानी को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम पानी को कभी भी बेकार न करें। एक एक बूंद पानी किसी को भी जीवन दे सकती है, इसीलिए शायद ठीक ही कहा गया है कि जल प्रकृति का है एक वरदान, जल प्रकृति का है एक वरदान, जल बिन जीवन है सुनसान। इसी से हम खाते पीते हैं, जल से सब प्राणी जीते हैं। पानी पानी पानी पानी जीवन का आधार है। पानी गर्मी से राहत दिलवाता, हर प्राणी की प्यास बुझाता, अकुलाहट को दूर भगाता, सबको निर्मल स्वच्छ बनाता। पानी पानी पानी पानी धरती का श्रृंगार है। पानी बादल वन अमृत बरसाता, वन झरना यह सबको भाता, नदियां बन यह कलकल गाता, सीप का यह मोती बन जाता। पानी पानी पानी पानी सबका पालन हार है। पानी पेड़ों को

हरियाली देता, जीवों को नव जीवन, धरती को खुशहाली देता, करता सबको पावन। पानी पानी पानी पानी। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पानी की मांग भी बढ़ती जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मौसम के तापमान में जितनी ज्यादा बढ़ोतरी होती जाएगी, वैसे ही पानी की जो मांग है और भी बढ़ती चली जाएगी। और पानी की समस्या की परेशानी हमें ना झेलनी पड़े, इसके लिए यह कोशिश होनी चाहिए कि घर में पानी का सही रूप से इस्तेमाल किया जाए। चलिए आज इसी बात को जानते हैं कि पानी का उपयोग कैसे कम किया जाए और कैसे पानी की बचत को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे बचाएं पानी। सबसे पहला है व्यर्थ ना बहाएं। जब भी आप ब्रश करती हैं तो उस समय व्यर्थ ही आपके नल में पानी बहता रहता है और बेकार होता रहता है। पानी बहुत कीमती है, इसीलिए जब भी इस्तेमाल ना करना हो तो उसे बंद ही रखें। दूसरे स्थान पर है पानी कहीं लीक ना हो। ज्यादातर लोग पानी का अपनी जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि उनके नल से या पाइप से पानी लीक हो रहा होता है। अगर नल से पानी टपकता है तो उसे तुरंत बनवाइए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो नल के नीचे बड़ी बाल्टी या कटोरा लगा दीजिए और बाद में उस पानी को इस्तेमाल कर लीजिए। और समय पर लीक हुए पाइप की और नल की मरम्मत भी करवा लेनी चाहिए, जिससे पानी व्यर्थ ना बह सके। अब है शावर से नहीं बाल्टी से नहाएं, क्योंकि शावर से पानी ज्यादा खर्च होता है। अतः नहाते वक्त हो सके तो शावर की बजाय बाल्टी का उपयोग करें, क्योंकि शावर से बाल्टी के अपेक्षा पानी ज्यादा खर्च होता है। इसके अलावा लोग शादी पार्टी में जाते हैं तो लोगों की आदत होती है कि नल को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम एकजुट होकर सही तरीकों से इस पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो निश्चय ही इसकी समस्या से हमें निजात मिल सकती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय था जल की बर्बादी। आलेख एवं वाचन था मोनिका विजय का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गजलें। आज की कलाकार हैं सलमा आगा।

आप सुन रहे हैं सलमा आगा की गाई हुई गजलें, और आइए एक और गजल सुनवा देते हैं आपको इन्हीं के स्वर में।

गैर फिल्मी गज़लें सलमा आगा की गाई हुई, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं सलमा आगा के ही स्वर में कार्यक्रम की अगली गज़ल।

इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं गजलों का। आज की कलाकार हैं सलमा आगा।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गजलें। आज की कलाकार थी सलमा आगा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियम कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 27 अगस्त 2026 यानी आज दोपहर 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलवंत सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ चिकित्सक इंटरनल मेडिसिन आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मोटापा, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, पित्त की पथरी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, सांस फूलना एवं संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान के संबंध में। श्रोताओं, मोटापा, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, पित्त की पथरी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, सांस फूलना जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर कुलवंत सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ चिकित्सक इंटरनल मेडिसिन आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 27 अगस्त 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। और आइए अब सुनिएगा फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत। आवाज़ थी किशोर कुमार की, शब्द रचना मजरू की थी और इस गीत को धुन से संवारा था आरडी बर्मन ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था वो कौन थी। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से, आवाज है किशोर कुमार की।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। फिल्म का नाम था कटी पतंग। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठा की आवाज़ है। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत गीतांजलि का। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: अभी आप सुन रहे थे आनंद फिल्म में से लिया गया मन्ना डे का गाया हुआ ये गीत, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है यादों की बारात।

0: बरसों बाद घूमने निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: एक काम करें, कुछ दिनों के लिए तो
0: भूल गई।
2: आप सुन रहे हैं गुलजार का लिखा गीत, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार। फिल्म का नाम है आंधी।

सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, ये दिन में नहीं निकली ना।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत जारी रहेगा, उससे पहले सुन लेते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 27 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलवंत सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ चिकित्सक इंटरनल मेडिसिन आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मोटापा, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, पित्त की पथरी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, सांस फूलना से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान के संबंध में। श्रोताओं, मोटापा, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, पित्त की पथरी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, सांस फूलना जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर कुलवंत सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ चिकित्सक इंटरनल मेडिसिन आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 27 अगस्त 2026 यानी आज, और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे लकी अली और रमैया को। फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। शब्द रचना ब्राहिम अश्क की थी और इस गीत को धुन से संवारा था राजेश रोशन ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर और कुमार सानू की युगल आवाजें हैं। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म डुप्लीकेट से, आवाज है कुमार शानू की।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में डुप्लीकेट फिल्म का ये गीत। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।
1: नमस्कार
2: नमस्कार,
1: कहिए कैसे हैं आप?
2: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
2: कौन है वो?
1: अपने वो सभी श्रोता जो हमें सुनने के लिए रहते हैं बेकरार, और जिनसे फोन कॉल्स करने के लिए हम करते हैं मिन्नतें बार बार। तो चलिए देखते हैं आज के हेलो आकाशवाणी में ये पहला कॉल हमें किसने किया है। हेलो आकाशवाणी।
3: हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? परिचय दे दीजिए।
3: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
1: जी स्वागत है कार्यक्रम में टेकचंद जी, और कैसे हैं आप?
3: हम बहुत बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया।
3: और सबसे पहले आपको एवं हमारे समस्त श्रोता मित्रों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
1: जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपकी बहन है?
3: मैडम मैं सीनियर सिटीजन हूँ और लगभग 66-67 साल की उम्र है मेरी। तो हम तीन भाई हैं।
1: अच्छा।
3: और तीन भाइयों में ऊपर वाले ने बहन तो नहीं दिया, लेकिन हमारे जो पड़ोस में जो हमारी कुछ बहनें रहती थी तो वो हमें राखी बांधती थी।
1: अच्छा।
3: लेकिन वो भी हमसे सीनियर थी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: तो अभी 4-5 साल पहले वो जो है शांत हो गई हैं।
1: जी जी जी जी।
3: तो अभी 4-5 साल से थोड़ा सा निरस्ता आ जाती है।
1: जी जी जी जी। चलिए ये भी जीवन का रंग है, कहीं अभी बहुत सारे रंग देखने को मिलते हैं, कहीं जी, कहीं जी, कभी ब्लैक कभी व्हाइट, है ना
3: जी, जी,
1: तो ये भी हो जाता है।
3: मैडम मैं हमेशा ये कहता था कि मैं जब मेरे बच्चे हों तो सबसे पहले मेरी बेटी हो।
1: जी जी।
3: ऊपर वाले ने हमारी सुना भी।
1: अच्छा।
3: तो मेरी दो बेटियां हैं, दोनों बेटी की शादी हो गई है, एक खंडवा में एक भोपाल में है।
1: जी
3: जी। उनके बीच में एक बेटा है।
1: जी जी।
3: उन बच्चों

0: मतलब जो खुशी जो हमको नहीं मिल पाई, देखिए क्या होता है, जो खास रहता है वो एक खास वाली बात रहती है। हमारी जितनी भी मात्र शक्ति, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, लेकिन जो घर के में खास रहता है वो, आप समझ रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: क्या कहना चाहता
1: हूं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो, देखिए जब अपने घर में भी अपने बच्चे जब त्योहार मनाते हैं ना, तो फिर इतना मलाल नहीं रहता, बच्चों को देखकर जो खुशी मिलती है तो उससे भी सारी जो अंदर की तकलीफें हैं वो भर जाती हैं, कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती।
0: उन्हीं की खुशी में हम लोग अपनी भी खुशी ढूंढ लेते हैं।
1: बिल्कुल। तो बताइए आज इस खुशी के मौके पर क्या सुनेंगे?
0: मुझे फिल्म है बेईमान।
1: बेईमान फिल्म का कौन सा गीत?
0: जी, मुकेश और लता जी की आवाज में है
1: जी।
0: ये राखी बंधन है ऐसा।
1: जी
0: ये राखी बंधन है ऐसा।
1: ठीक है। हेलो आकाश।

0: बंधन है ऐसा।
1: ठीक है। हेलो आकाशवाणी,
2: दीदी सादर नमस्कार।
1: नमस्कार, परिचय दे दीजिए अपना।
2: जी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं?
2: आपका आशीर्वाद बाकी बिहारी कृपा है, काफी दिनों के पश्चात आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: जी कहिए, आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी प्रजापति जी?
2: सर्वप्रथम मैं आपको आकाशवाणी परिवार को सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। ये पावन पर्व सभी के लिए स्नेह प्रेम बना रहे, भाई बहन के बीच में अटूट संबंध रहे, यही मेरी शुभकामना है।
1: जी और आपको भी हमारी यही शुभकामनाएं हैं, और खूब अच्छे से रक्षाबंधन का पर्व मनाइए, खूब घेवर फैनी सिवई जो भी घर में बने, खीर पूड़ी सबका आनंद लीजिएगा, और बताइए त्योहार के साथ क्या सुनेंगे?
2: जी दीदी आपका साधन आमंत्रित हैं ऐसे पकवानों को आनंद लेने के लिए, और अपेक्षा करते हैं कि आप अवश्य हमारे घर पे आएंगे रक्षाबंधन के अवसर पर।
1: देखिए अभी रक्षाबंधन के अवसर पर तो आपसे कोई वादा नहीं कर सकती हूँ मैं, लेकिन हाँ जब कभी भी उपयुक्त समय होगा मैं बिल्कुल जरूर आपके घर आऊंगी।
2: जी स्वागत है, अभिनंदन है। दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बेईमान
1: जी,
2: और गीत के बोल है ये राखी बंधन ऐसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे सूरज और किरण का, जैसे धरती और
1: गगन का,
2: गगन का
1: जी, जैसे
2: चंदा और किरण का
1: जी। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो आकाशवाणी, पिशावर से विजय कुमार से दीदी राधे राधे।
0: राधे राधे विजय जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ बढ़िया है, आप सुनाइए दीदी, आप कैसी हैं? और
0: जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और हमारा पूरा आकाशवाणी परिवार भी बिल्कुल बढ़िया है।
1: हाँ और देखो बहन जी, आज का रक्षाबंधन भी है, देखो बहने हमारी कितनी प्यारी प्यारी राखी बांध रही है बहने हमारी।
0: जी बिल्कुल, रक्षाबंधन पर जो राखियां होती हैं वो वैसे ही देखने में सुंदर होती है, और जब बहन अपने भाई को बांधती हैं तो वो और सुंदर हो जाती है।
1: जी हाँ जी हाँ। और बहन जी आप बढ़िया हो आप?
0: हाँ मैं बिल्कुल अच्छी हूँ
1: बहन जी, आपसे हम बात जब बात करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने के लिए। रश्मि बहन जी,
0: अच्छा चलिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपको मुझसे बातें करना अच्छा लगता है, और मैं बड़ी कृतज्ञ हूँ आपके इस प्रेम के लिए और इस सम्मान के लिए। और क्या सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे पहले मेरे बच्चे हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं,
0: बताइए सबके नाम।
1: बच्चे मेरे ईशु, हर्ष, खुशी, और मेरे दोस्त हैं गुड्डू, राजा, तन्नू, यही है बस।
0: चलिए अब बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: अब गाना सुनना है, देना में भाई की कलाई से प्यार बना है, प्यार के तूफान से संसार बना है, ये वाला गाना।
0: जी बिल्कुल, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए
1: मैं अमर सिंह भील बोल रहा हूँ, दिलवाले पटा छबड़ा राजस्थान से। ठीक
0: जी। स्वागत है कार्यक्रम में। और कैसे हैं आप
1: ठाक हूँ दीदी, मैं बढ़िया हूँ।
0: जी? बिल्कुल। और क्या करते हैं आप
1: अपन खेती किसानी करते हैं।
0: अभी इस समय? क्या चल रहा है खेतों में?
1: अभी दीदी मक्का लगी हुई है तो अभी खाद मार दे रहे हैं मक्का में,
0: अच्छा।
1: और इसके बाद में महीना भर में पक जाएगी, पक के तैयार हो जाएगी, डेढ़ महीना में कट जाएगी।
0: जी। और उसके बाद क्या सोचा है मक्का के बाद?
1: उसके बाद में इसके बाद में सरसों बोएंगे, सरसों गेहूं। जी
0: अच्छा, सरसों और गेहूं की फसल तैयार की जाएगी। तो चलिए, खूब अच्छे से आपकी मक्का हो और खूब अच्छे से आप मक्का खाएं भी और मक्का बेकें भी। और आज क्या पसंद रहेगी आपकी?
1: आज दीदी हमारी पसंद रहेगी, तो पागल इस पिक्चर का गाना है टाइगर सॉन्ग।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं ब्रज रेडियो श्रोता में सांवरिया गांव थरावर तहसील कुमेर जिला डीगरा।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में सांवरिया जी। और देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो अभी ये बताइए कि ससुराल जो है वो घी बूरा खाने जाते थे या अब भी जाते हो?
1: हम तो खैर अब नहीं जाते हैं, लेकिन अब जाते तो हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन पहला जैसा रुकना
0: हाँ
1: और आना जाना नहीं है। पहले चार चार जन रुकते थे ससुराल में, अब
0: अच्छा
1: तो बस गाड़ी से मोटरसाइकिल से जाते हैं
0: हाँ
1: और तुरंत वापस हो जाते हैं।
0: अच्छा, वाकई में घी भूरा खाने को दिया जाता था मेहमानों को?
1: नहीं बिल्कुल, चावल घी भूरा दिया जाता था और विदा में भी चावल भूले
0: हाँ
1: चावल भूरा और ये सब कुछ दिए जाते थे।
0: सेवई चावल भूरा
1: हाँ
0: सब भर
1: बिल्कुल,
0: भर के थैले। हाँ
1: हाँ भर और कपड़े।
0: वाह वाह वाह वाह भाई, जवाइयों की भी तो मौज है, हैं? तो पहले के जवाई ज्यादा अच्छे थे या अब इस समय जवाई ज्यादा अच्छे हैं? आप किसको अच्छा मान रहे हैं?
1: क्यों, हमने तो पुराना समय देखा है, उसको अच्छा करेंगे हम तो सब।
0: अच्छा चलिए, अच्छा कहते रहिए, अच्छा करते रहिए और अच्छा सुनते
1: सुनते रहिए,
0: रहिए
1: अच्छा देखते रहिए।
0: जी। अच्छा देखते भी रहिए और बताइए, इस समय हम तो सुनाने का ही काम करेंगे, तो बताइए क्या सुनेंगे?
1: आज सुनवाइए मजबूर फिल्म से,
0: कौन
1: गाना
0: सी?
1: है किशोर कुमार की आवाज में,
0: हुँ?
1: मैं तुझे देख सकता हूँ कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
0: रोते हुए। चलिए सुनिए पसंद का ये
1: भाई
0: गीत।
1: बहन का पवित्र त्योहार प्रबंधन की आपको शुभकामनाएं,
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी जी, आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं मिल पा रही है।
1: महिपाल सिंह बोल रहा हूँ नंगला देवी टीम से।
0: जी जी जी, स्वागत है कार्यक्रम में महिपाल जी। और आज क्या फरमाइश रहेगी, क्या सुनेंगे?
1: ओ तिरंगा फिल्म का गाना सुना दीजिए। हाँ जी, वो है जो इसे समझो ना रेशम का तार भैया।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की थी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए जानते हैं कार्यक्रम संबंधी विशेष सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी आज 27 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलवंत सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ चिकित्सक इंटरनल मेडिसिन आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या फिर मोबाइल नंबर 9412255 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मोटापा, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, पित्त की पथरी, कोलेस्ट्रॉल भरना, सांस फूलना से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान। श्रोताओं, मोटापा, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, पित्त की पथरी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, सांस फूलना जैसे लक्षणों के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर कुलवंत सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ चिकित्सक इंटरनल मेडिसिन आकाश सिम्स मथुरा हॉस्पिटल से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी आज। आज ही के दिन यानी 27 अगस्त 2026 दोपहर 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम फिल्म संगीत का। श्रोताओं, भारत त्योहारों का देश है। भारत में हर महीने एक न एक त्योहार तो आता ही है जो लोगों को बिल्कुल एक साथ जोड़ता है। अभी त्योहार यानी कि 15 अगस्त भी हम एक त्योहार की तरह ही मनाते हैं। जब हम चौराहों से निकलते हैं तो देखिए क्या तीन रंगों में कितने सुंदर शामियाने से सजी हुए चौराहे और हर प्रतिष्ठान पर तिरंगा मिठाइयाँ सुसज्जित रहते हैं। हम एक जश्न की तरह मनाते हैं और हमारे दिल की जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल हमारे देश की तरफ झुकती हुई होती है। हम गर्व से कहते हैं कि वंदे मातरम।

और हमारा जो देश है ना, हर तरफ सुसज्जित रहता है और रंगीला रहता है, तभी तो हम ये गीत इतने प्यार से गुनगुनाते हैं।

जी हाँ साथियों, देश तो हमारा रंगीला है ही, और इसे और भी रंगीला बना दिया जाता है सारे त्योहारों की लड़ी में पिरोकर। जी हाँ बिल्कुल, त्योहारों की लड़ी बस एक के बाद एक खड़ी ही है। फिलहाल तो रक्षाबंधन है, श्रावणी पूर्णिमा के दिन बहन रेशम के धागे की डोर अपने भाई के कलाई पर बांधती है। तो ये केवल एक डोर नहीं होती, वह अपने भाई की कलाई पर विश्वास और आस्था की डोर बांधती है। जी हाँ, बड़े ही खुशी के साथ भाई और बहन के बीच ये बंधन बनता है। बड़ा ही शुभ और खास अवसर होता है। जैसे लता मंगेशकर ने छोटी बहन फिल्म में गीत गाया है ना, फिर वो बहन बिल्कुल वही शब्द गुनगुनाती है जब वो अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है।

साथियों, हमारा देश अनेक रिश्तों के बंधनों में बंधा हुआ है, जिसमें से एक पवित्र रिश्ता भाई और बहन का भी है, जो प्रेम की एक ऐसी अटूट डोर से बंधा हुआ है जिसे चाह कर भी तोड़ा नहीं जा सकता। रक्षाबंधन के दिन राखी का तो विशेष महत्व होता ही है। यूं तो राखी कच्चे धागे से बनी होती है, लेकिन कच्चे धागे की ये पक्की डोर जब भाई की कलाई पर बंध जाती है ना, तो वो रक्षा सूत्र में बदल जाती है। इसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करती हैं और भाई भी जीवन भर अपनी बहन को रक्षा देने करने का वचन देते हैं।

श्रोताओं, ये जो त्यौहार है ना रक्षाबंधन का, ये अपने आप में एक इतिहास लिए हुए है। जब श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी से ये प्रसिद्ध भी है, जिसमें श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से जब शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी तर्जनी उंगली में चोट आ गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी, और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में उनकी सहायता करने का वचन दिया था। तब बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं कि परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग

की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यहीं से प्रारंभ हुई। जी हाँ साथियों, रक्षाबंधन का त्योहार सद्भावना का, विश्वास का, आस्था का, पवित्रता का त्योहार है। बहन अपने भाई की कलाई पर जब रक्षा सूत्र बांधती है तो वो इसी विश्वास के साथ बांधती है। एक बंधन है भाई और बहन के प्यार में, एक अटूट बंधन है जी। और जब हम बात त्योहारों की बात कर ही रहे हैं, लड़ी जब लग ही चुकी है तो आने वाले थोड़े समय के बाद ही जो हमारा ब्रज है ना, श्री कृष्ण के जयकारों से भी गूंजने वाला है जी। तो कृष्ण नाम ही ऐसा है, कृष्ण नाम जपने से ही मन के पाप कष्ट सब दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि वृंदावन का लल्ला है ही इतना प्यारा।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आज हमने सजाया है कुछ रिश्तों की डोर से, और त्यौहार भी है, बिल्कुल भावनाओं का, संवेदनाओं का। ये पर्व ही कुछ ऐसा है, ये एक विशेष पर्व है जो भाई और बहन की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा बंधन है जो दो जनों के स्नेह की धागे से बंधा हुआ है और बांधकर रखता भी है। रक्षाबंधन पर भाई बहन तक ही हमें सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि

ऐसा भी कोई बंधन जो किसी को बांध सकता है। भाई बहन के रिश्तों की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए भी आज बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो हम खुद भी बना सकते हैं और उनको प्यार की डोर में, विश्वास की डोर में बांध सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में राखी केवल बहन का रिश्ता ही नहीं, बल्कि राखी का अर्थ श्रद्धा और विश्वास के धागे को भी बांधने का है। राखी बंधवाने वाले जो भैया हैं, भाई हैं, वो पूरी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। स्वीकारने के साथ साथ इस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करते हैं। बात इस तरह है कि देखिए, जो हमारे वीर हैं, जवान हैं, जो सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं, जिसके कारण हम चैन की नींद सोते हैं, उन सरहदों पर भी कुछ हमारी बहनें रक्षा सूत्र उन जवानों को बांधती हैं, उनको विश्वास दिलाती हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी बहन ने आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र के साथ साथ आपकी दीर्घ आयु की कामना भी की है। और इसी रिश्ते को कहते हैं अटूट बंधन।

0: इस पवित्र रिश्ते की डोर यूं ही बंधी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिराधा वैली मथुरा।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय लेकर आए हैं मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान। आपको जानकारी देंगे डॉक्टर कुलवंत सिंह सिसोदिया।
2: श्रोताओं नमस्कार, एक बार पुनः आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में अवेयर कराते रहते हैं, जानकार करवाते रहते हैं। जानकारी और जागरूकता इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी बीमारी की शुरुआत अचानक नहीं होती, एक साथ नहीं होती। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं छोटे छोटे, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बीमारी के रूप में हमारे और आपके सामने आते हैं। हमारे जीने का तरीका, हमारे खान पान का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, इसके बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट होते हैं। जो अच्छा, अगर हमारा सब कुछ चल रहा है तो हम स्वस्थ होते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से हमारी मानसिक परेशानी बढ़ जाए, खान पान की आदतें बिगड़ जाए, जीवन शैली अच्छी न रहे, जैसे सोने का, उठने का क्रम है, व्यायाम का क्रम है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जीवन किसी एक घटना या एक परिस्थिति से नहीं बनता है, जीवन दरअसल समग्रता में है। जब हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचारते हैं, जैसा करते हैं और जैसा व्यवहार रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी आती हैं, या कहें कि शारीरिक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो मानसिक पर आती हैं, मानसिक नहीं है तो शारीरिक पर आती हैं, अगर ये दोनों ठीक नहीं है तो फिर बीमारी के रूप में आती हैं। तो डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहले हमें ये खुद भी देखना चाहिए कि इन किसी बीमारी के होने के पीछे कहीं हमारी आदतें तो नहीं है, कहीं हमारी सोच तो नहीं है, कहीं हमारी, कई बार हम जीवन जो मिला है हमारे माँ बाप में कोई ऐसी जेनेटिक्स तो नहीं रही जो आज हमारे सामने आ रही बीमारी के रूप में। तो बीमारी, अब जैसे मोटापे की ही जब हम बात करते हैं, तो मोटापा, कोई व्यक्ति एक साथ मोटा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे कई बार उसके काम करने का तरीका ऐसा होता है, कार्यक्षेत्र ऐसा होता है।

बैठे बैठे हमें काम करना है, बैठे बैठे लिखना है, तो धीरे धीरे फिर आदतें ऐसी होती जाती हैं कि उसका परिणाम खाने पीने का, जब जहाँ चाहा जैसे चाहा, घर से बाहर हम अक्सर रहते हैं, टूर में रहते हैं, यात्रा में रहते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं किसी व्यक्ति के कि वो हफ्ते में पूरे हफ्ते घर से बाहर ही रहता है, तो घर का बना हुआ खाना नहीं मिल रहा। तो ये सारी समस्याएं जब हम ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं कि ऐसा लोग कर रहे हैं तो वो सब बीमार हो जाते, लेकिन अक्सर चीज़ों के प्रभाव धीरे धीरे होते हैं और फिर हम किसी बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। थायराइड होना, अब थायराइड अगर आपको हुई है तो मोटापा बढ़ सकता है, डायबिटीज़ का होना, या कई बार सीजेरियन

0: डायबिटीज़ का होना, या कई बार सिजेरियन प्रॉब्लम्स होती हैं माँ बहनों के साथ तो होती ही है, लेकिन कई हमारे प्लास्टर चढ़ गया और उस वजह से हम हमारी जो लाइफ है वो महीने में हम कहीं गए ही नहीं, बिस्तर पे पड़े हुए। तो बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी होती है और हम मोटापे की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जेनेटिक्स हो सकती है, शारीरिक मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, खान पान जीवन शैली हो सकती है, या कुछ बीमारियां भी ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से हम मोटापे की तरफ चले जाते हैं। तो अब हमें अगर मोटापा है तो फिर कैसे उससे निकलें, ये आज हमारा विषय है। और हमारे साथ डॉक्टर कुलवंत सिंह सिसोदिया साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार
1: जी, नमस्ते
0: जी। तो आज हमारे श्रोता हमसे जानेंगे कि जो मोटापा है
1: जी।
0: क्यों हो जाता है, क्योंकि ऐसा मैं अभी बात कर रहा था कि मोटापा एक साथ नहीं होता, अचानक नहीं होता, या किसी एक कारण से नहीं हो सकता, बहुत सारे समग्र कारण हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि जब तक वो जुड़े कि क्या कुछ चीज़ें मोटापे को प्रभावित करती हैं।
1: जी देखिए, मोटापा एक तरह से बीमारी को ही मानेंगे हम, है ना। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसी तरह मोटापा भी है। और मोटापा का कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो लाइफस्टाइल है, आपका एक्सरसाइज कितनी है, चलना फिरना कितना है, बैठे रहते हैं या कितना काम करते हैं। दूसरा खान पान है, खाना आपका कैसा है, मील्स कैसी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो मोटे होंगे। उसके अलावा लाइफ में स्ट्रेस कितना है, क्योंकि जब स्ट्रेस आता है तो नींद कम लेते हैं लोग, नींद कम लेते हैं तो खाना ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से फिर मोटापा बढ़ जाता है। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, कसिंग सिंड्रोम एक बोलते हैं, उसके अंदर कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है, कुछ लोग स्टेरॉइड्स पे रहते हैं अस्थमा की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, उससे मोटापा होता है। जो महिलाएं ओसीपीज लेती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उनकी वजह से मोटापा होता है। कई सारे न्यूरॉन जो नसों का दिक्कत होती है उसके लिए कई दवाइयाँ चलती हैं, पिरिकावरिन, गाबापेंटिन, उनसे मोटापा बढ़ता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ
0: बहुत
1: हैं
0: सारे कारण
1: जी,
0: हो
1: बहुत
0: सकते हैं,
1: सारे कारण हो
0: मतलब
1: सकते
0: बहुत
1: हैं
0: सारे कारणों से मोटापा हो जाता है, और मोटापा होने से बहुत सारे और अन्य
1: जी।
0: कारण
1: तो
0: और
1: किसी को ये
0: बीमारियां पैदा
1: बोलना
0: होती,
1: कि वो मोटा है तो वो बस आलसी है, ये गलत होगा।
0: गलत होगा।
1: बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर मोटे होने के लिए जी।
0: तो अब इसमें कहाँ से एक व्यक्ति को सावधान कब रहना चाहिए, भाई हम मोटापे की तरफ चले जाएं या मोटे हो जाएं तब सोचें, उससे बेहतर है ना कि मैं एक स्वस्थ हूँ, जीवन जी रहा हूँ। एक बच्चा 18 साल का है, पढ़ाई कर रहा है, एक व्यक्ति है 24-25 साल का, अपने पारिवारिक जीवन में जा रहा है, या हम जैसे लोग जो 50+ हो गए, अब एक बहुत बड़ा जीवन जी लिया लेकिन अब सोचते हैं अब कुछ करने को ही नहीं है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये सोच है हर स्टेज पे, कभी भी मैं समझता हूँ कि जीवन में अब सब समाप्त हो गया या सब अब आराम की तरफ चला गया, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए ना।
1: जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो लाइफस्टाइल ही है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप एकदम बस बैठ ही रह रहे हैं, खाना पीना आपका उतना ही है, नियमित एक्टिविटी ज़ीरो है ऑलमोस्ट, तो आप मोटे होने ही हैं। और आप ये बोल रहे हैं कि आपको कब पता चलना चाहिए, देखिए सबको पता होता है कि हम मोटे हो रहे हैं, इसके अंदर कोई नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। लोगों को पता चल जाता है हम मोटे हो रहे
0: मोटे
1: हैं
0: हो रहे
1: जी।
0: हैं।
1: अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं मोटा हो रहा हूँ तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए हैं कि मोटे हो गए हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है इसको डायग्नोज करने की ज़रूरत है, ये आदमी खुद समझ जाता है कि मोटा हो गया। हाँ, बात यह है कि अंदर झांकने की ज़रूरत है तब, कि क्या गलती हो रही है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दवाई तो नहीं है, या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको पता है कि बस लाइफस्टाइल की दिक्कत है तो
0: तो
1: आप
0: फिर वहां से
1: वहाँ
0: शुरुआत
1: से
0: कर
1: चालू
0: लीजिए।
1: करिए। पर आपको पता है कि लाइफस्टाइल मेरी ठीक है, खाना पीना ठीक है, एक्सरसाइज भी मैं नियमित कर रहा हूँ, फिर भी मैं मोटा होता हूँ, तो फिर
0: तो
1: डॉक्टर को
0: फिर
1: दिखाने की ज़रूरत है
0: हाँ फिर
1: जी।
0: हॉस्पिटल
1: फिर
0: आते हैं
1: हॉस्पिटल आइए, उससे पहले आने की ज़रूरत नहीं है आपको
0: उसमें। तो
1: जी।
0: पहले तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि खान पान जीवन शैली और अपना व्यायाम और आहार विहार जो जो नियमित चल रहा है, हम
1: जी जी जी
0: सुबह जगने से लेके सोने तक की जो हमारी लाइफ
1: जी जी
0: स्टाइल है
1: जी
0: उस पर ध्यान दें। उसमें कौन, आपने शुरुआत में कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बीमारियों की वजह से भी मोटापा हो सकता है, वहाँ आपको आना है। तो इस बीच में हमारे एक श्रोता जोड़ने, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हेलो जी,
0: नमस्ते भैया, नाम बता दीजिए अपना।
2: नमस्कार। नाम है जी परमानंद जी।
0: परमानंद,
2: हाँ जी,
0: बताइए समस्या। मोटापे पे बात कर रहे हैं हम, डॉक्टर कुलवंत सिसोदिया हमारे साथ हैं।
2: हाँ जी, मोटापे के बारे में पूछ रहा हूँ जी।
0: बताइए बताइए परमानंद जी, बताइए
2: मैं
0: पूछ।
2: जी, मुझे एक्सीडेंट हो गया था पैर का,
0: हाँ
2: तो करीब करीब 1 साल सी हो गई मुझे। तो मैं

0: कुछ पेट बढ़ गया मेरा, तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या है?
1: डॉक्टर साहब बता,
2: पेट बढ़ गया मतलब कि पूरे शरीर में मोटापा बढ़ा है, बस पेट ही बढ़ा है, ऐसा तो नहीं है ना?
0: पेट ही बढ़ा है, नहीं मोटापा वैसे नहीं बढ़ा, पूरे शरीर का पेट जरूर बढ़ गया है।
2: देखो अब कभी कभी ना गैस भरी होती है पेट में कॉन्स्टेंटली, कब्ज होता है, उसकी वजह से पेट फूला फूला रहता है, वो भी लगता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप बैठे बैठे आपकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत है उसकी वजह से आपको लग रहा है पेट फूला रहता है? क्योंकि मोटापा तो आपको आदमी को समझ में आ जाता है, बस पेट फूला होना ये अलग चीज़ है। पर हाँ कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बस पेट मोटा हो जाता है, तो एक बार तो इतना देखना पड़ेगा। बाकी अगर आप बोल रहे हैं कि एक साल से आपको पैर में एक्सीडेंट है, तो मतलब नॉर्मल सी बात है, आप चल फिर तो कम रहे होंगे, एक्सरसाइज वगैरह तो कुछ नहीं होगी, खाना पूरा चल रहा होगा, तो फिर मोटा होना तो स्वाभाविक है इस चीज़ में। तो मेरी तो यही सलाह होगी अगर आप फिजियोथेरेपी वगैरह कुछ कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाने के बाद भी अगर मोटापा रहता है और पक्का है आपके वो गैस नहीं है मोटापा ही है, तो फिर आप हमारे पास आइए एक बार।
1: ये जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब, जैसे हाँ आप थोड़ा सा दिखा लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है परमानंद जी, तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल, लेकिन अच्छा जरूर एक देखिए कि हम कई बार शॉर्टकट में नीम हकीम खतराए जान पैदा कर लेते हैं, एक अच्छा डॉक्टर हो और एक अच्छा हॉस्पिटल हो, ये हम हर बार आपको हर समय कहते हैं, हर व्यक्ति से भी कहते हैं, तो एक अच्छे डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। इसमें डॉक्टर साहब जैसे गैसियस प्रॉब्लम, उससे आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई एक पेट निकल रहा है और एक पेट भारी रह रहा है, उसमें बना रहता है मेरा, फूला रहता है।
2: देखो जो मोटा आदमी भी होता है उसकी भी आंतों की चाल जो होती है वो स्लो हो जाती है, तो उसके अंदर भी जो क्या होगा कि गैस भरेगी, नीचे नहीं जा रही है ऊपर की तरफ आ रही है, तो पेट फूला फूला लगेगा। पर ऐसा कभी नहीं होता कि पेट फूला लग रहा है और वो मोटा नहीं हो, 99.9% केसेस में वो मोटा होगा। जी
1: मतलब असर तो इम्पैक्ट तो आएगा
2: मोटापे की वजह से, ब्लोटिंग जिसको बोलते हैं पेट फूला रहना, पचाव नहीं होना, खाना खा लिया पेट में खाना रखा रह गया है, ये बहुत कॉमन है।
1: बहुत से लोगों का जैसे चल फिर की कम है लेकिन जब भी चलते हैं तो सांस फूल रही है, सीढ़ियाँ चल रहे हैं तो फिर वो चढ़ने में
2: मोटापा हार्ट को भी इम्पैक्ट करता है, हार्ट फेलियर का वन ऑफ द लीडिंग कॉज मोटापा है। तो जब हार्ट फेलियर होगा तो आपको ये सारी दिक्कतें आएंगी कि आप सांस फूल रही है, चल नहीं रहे, पैरों में सूजन आ रही है। जितने भी हमारे पास लोग मोटे आते हैं मैक्सिमम केसेस के अंदर मैंने देखा उनके पैरों में सूजन होती है, और ये जो आपने कंप्लेन बताई है ना कि चलने में सांस फूलती है, सीढ़ियाँ चलते हैं सांस फूलती है, ये बहुत कॉमन है। मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उसमें से हार्ट एक सबसे कॉमन बीमारी है, वो है हार्ट फेलियर, धीरे धीरे हार्ट फेल होता जाता है।
1: तो ये जो मोटापा जो शरीर में आ रहा है तो कहते हैं कि चर्बी चढ़ गई है, जैसे एक असामान्य बोलचाल की भाषा में हर व्यक्ति इसको समझता है कि भाई मोटा हो गया, इसमें चर्बी चढ़ रही है, इसका मतलब फैट जो है बॉडी उसको इकट्ठा कर रही है उसमें। तो ये जो टेंडेंसी है क्या नाम है फैट को इकट्ठा करना, फिर वो फैट इकट्ठा होगा तो किसी नेचुरली किसी लिवर पे आएगा, किडनी पे, तो ये आपने कहा हार्ट का आपने बताया ही, अपना शरीर मोटा हो रहा है, पैरों में आ रहा है उसमें, तो ये जो फैट इकट्ठा हो रहा है तो खातों में बहुत कुछ फैट के रूप में वो जमा हो रहा है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म भी हमारी कहीं कमजोर हो रही है।
2: देखिए बॉडी ना वो दो चीजें देखती है, हम कैलोरीज वर्ड होता है अगर आप नॉर्मल भाषा में समझे तो, ताकत कितनी, ताकत मान लीजिए ताकत हम कितना शरीर में डाल रहे हैं और कितनी खर्च कर रहे हैं। बॉडी बस एक मैथमेटिक्स पे काम करती है एक तरह से पे। अगर आप 2000 कैलोरीज डाल रहे हैं, 1000 बर्न कर रहे हैं, पूरी जिनकी जितनी एक्टिविटी 1000 ही है, तो 1000 एक्स्ट्रा बची बॉडी के पास, उस 1000 को वो मोटापे में चर्बी में रूप में कन्वर्ट करके पूरी बॉडी में फैला लेगी। हम इंडियंस के साथ एक दुर्भाग्यता ये है कि कंपेयर टू वेस्टर्न जो अंग्रेज लोग होते हैं उन पर मोटापा थोड़ा लेट आता है। हमारे साथ क्या दिक्कत है, हम थोड़े से में भी मोटे जल्दी हो जाते हैं। मोटापा मेन है पेट का मोटापा, जो सारी दिक्कतें मैंने आपको बताई वो पेट के मोटापे की ज्यादा होती हैं। किसी के हाथ पर मोटे इतनी दिक्कत नहीं होगी, जिसका पेट ज्यादा है उसको सारी दिक्कतें चालू हो जाएंगी। हम इंडियंस बैड लक के लिए मान लीजिए आप कि हमारे पेट पर जल्दी चर्बी चढ़ती है और सारी दिक्कतें हमारे जेनेटिक्स ही मान लीजिए,
1: हमारा
2: लाइफ स्टाइल जेनेटिक्स सब कुछ मान लीजिए। हमारे जो साउथ एशिया के पूरे जो एरिया है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इंडिया, सारे एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि आप अगर सारी किताबें पढ़ेंगे, वेस्टर्न किताबें जो अंग्रेजों की पढ़ते हैं, उसमें BMI 30 का माना जाता है मोटापे के लिए, हमारे यहाँ 25 है वो, तो हम 5 BMI कम में भी मोटाए हो जाते हैं,
1: पहले से खतरे में आ जाते हैं,
2: पहले से खतरे में आ जाते हैं। जितनी सारी प्रॉब्लम है उनको 30 के BMI पे आएंगी, हमें 25 के BMI पे आ जाती है, उनके लिए ओबेसिटी 30 का BMI, हमारे लिए 25 का BMI।
1: एक फोन आ रहा है, हेलो।
3: हाँ हेलो
1: जी, नमस्ते।
3: नमस्ते,
1: नाम बताइए।

0: जी, मेरा नाम अंकिता
1: अंकिता
0: है।
1: कहाँ से बोल रही हैं?
0: मथुरा से बोल रही हूँ।
1: मथुरा से। बताइए डॉक्टर साहब से बात करिए मोटापे के बारे में। बताइए बताइए अपनी
2: जी
1: समस्या
2: नमस्ते
1: बताइए।
2: अंकिता जी।
0: हाँ नमस्ते
2: जी
0: सर जी, मैं ये कह रही थी कि मेरे ना 3 बेटे हैं, तो
2: जी
0: जो तीसरी डिलीवरी हुई ना उसके बाद से मेरा बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया है, मतलब 80+ हो गया है। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
2: देखो सबसे पहले तो वही मैंने जो आपको बताया कि लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज सबसे पहले आती है, क्योंकि मोटापे का ट्रीटमेंट भी तभी स्टार्ट करते हैं हम लोग जब पेशेंट विलिंग होता है लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप अपना नियमित व्यायाम करिए, कुछ आधे घंटे कुछ ऐसा व्यायाम करिए जिससे सांस फूलती हो, दिल की धड़कन तेज होती हो, पसीने
0: हाँ,
2: आते हो।
0: चलने में तो लगता है कि मतलब बिल्कुल हार्ट बाहर आ जाएगा, ऐसे लगता है, सांस भी फूलती है,
2: आपके
0: चल
2: पैरों
0: मतलब
2: में सूजन
0: पैदल
2: वगैरह भी
0: चलने
2: है
0: में।
2: क्या?
0: हाँ, एक पैर में, दोनों पैर में, मतलब थाई पे है।
2: तो ये एक बार तो फिर तो मुझे देखना पड़ेगा
0: सूजन
2: क्या।
0: नहीं, सूजन नहीं है, जैसे वही फैट है, इकट्ठा है, मतलब फैट जो
2: हाँ
0: इकट्ठा
2: तो
0: नहीं
2: मैं
0: हो
2: वही
0: जाता
2: बताया
0: है।
2: ना आपको कि एक तो
0: हाँ
2: नियमित आहार और एक्सरसाइज आधे घंटे, और योगा एक्सरसाइज नहीं है, प्राणायाम एक्सरसाइज नहीं है, हमें
0: नहीं, बिल्कुल
2: एक्सरसाइज
0: टाइम
2: वो
0: ही नहीं मिलता है, मतलब अकेली हूँ ना, बस हस्बैंड वाइफ ही हैं हम, तो इस वजह से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है योगा एक्सरसाइज वगैरह करने का।
1: लेकिन मैडम टाइम तो निकालना पड़ेगा, बाकी सब कामों के लिए है तो आधा घंटा। डॉक्टर साहब ने कहा कि आधा घंटे से शुरुआत तो करिए। अगर कोई समस्या है और प्रॉब्लम हमको दे रही है जीवन में
0: हाँ, मैं बहुत
1: तो
0: परेशान हूँ,
1: हाँ,
0: मेरा
1: तो
0: जब
1: अब इतनी
0: तीसरी डिलीवरी
1: परेशानी
0: हुई
1: में।
0: है।
2: जी मैं समझ गया आपकी डिलीवरी हुई है, आप बिजी हैं, 3 बच्चे भी संभालने हैं, बट स्टिल अगर जब तक आप
0: हाँ,
2: एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, दुनिया की कोई दवाई, दुनिया का कोई खाना
0: बस
2: कुछ नहीं
0: सर
2: ठीक करने वाला।
0: खाने पीने में, जैसे खाना पीना क्या है, कैसे करना पड़ेगा?
2: देखो मैंने इनको फिर बताया था, हमारा शरीर कैलोरीज पर काम करता है, हम अच्छा खाने को बोलते हैं पर लोग केक खा के भी पतले हो सकते हैं, बात तो वो है कि वो लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं, है ना। तो खाना
0: अच्छा,
2: नियमित
0: जैसे
2: खा, मेरी बात
0: हाँ
2: सुनिए एक
0: चाय
2: बार।
0: वगैरह।
2: जी जी
0: हाँ
2: वही मैं कह रहा हूँ
0: सुन
2: कि
0: लीजिए।
2: जी अब जैसे कि आप खाना खा रही हैं, चीनी कम करने से क्या फ़ायदा है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड नहीं होंगी बॉडी के अंदर। जंक फूड कम खाने से क्या फ़ायदा है, जंक फूड ना काफ़ी एनर्जी डेंस खाना होता है, उसको कम खाएंगे तो कैलोरीज कम होंगी। तो ये सारी चीज़ें बस कैलोरीज कम करने के तरीके हैं। तो आप जितना भी बाहर का खाना बंद करिए, नॉर्मल खाना चालू करिए, नॉर्मल
0: बाहर का
2: संतुलित
0: मैं नहीं
2: खाना बहुत
0: खाती।
2: काफ़ी है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कम खाने से भी कोई पतला नहीं होता, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना होगा हमें।
1: आप नहीं भी खाएंगे तो शरीर में पहले से जमा है कैलोरी, पहले से वो चर्बी
2: सर
1: जमा
2: मेरे पास लोग
1: है।
2: आते हैं दिन की 2 रोटियां खा के मोटे हो रखे हैं,
1: जी,
2: काम नहीं करते कुछ भी, लेटे रहते हैं।
1: हाँ। तो क्या नाम है अंकिता जी, आप ना एक्सरसाइज तो
0: हाँ
1: आपको सुबह नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, बच्चों को तो डॉक्टर तो आजकल ये भी कहते हैं कि शाम तो आपकी है, बच्चे घर आ गए,
0: हाँ
1: पति आ गए, सब काम कर लिया, खाने को ऐसा करिए थोड़ा सा गैप दे दीजिए, शाम खाने से पहले एक्सरसाइज कर लीजिए, क्या परेशानी, 4 बजे कर लीजिए, क्यों डॉक्टर
2: जी
1: साहब
2: कभी भी
1: गलत
2: कर
1: तो नहीं
2: सकते,
1: कह रहा?
2: एक्सरसाइज कभी भी कर
0: हाँ,
2: सकते हैं आप।
0: तो आप 4-5 बजे शाम का टाइम रख सकती हैं अच्छा
1: अपने।
0: मैं ये कह रही थी, ये जैसे चाय, आलू और चावल, ये तीनों चीज छोड़ देने पे मतलब
2: देखो
0: कम
2: मैंने फिर
0: हो
2: बताया,
0: जाएगा?
2: छोड़ने से कुछ नहीं होने
1: छोड़ने से
2: वाला,
1: बात नहीं है।
2: अच्छा,
0: छोड़ने
2: खाना
0: से,
2: नियमित
0: अच्छा,
2: खाना है, एक्सरसाइज बढ़ानी है, और खाना ज़्यादा नहीं
1: लेकिन
2: खाना है।
1: ज्यादा नहीं खाना, और
0: अच्छा
1: जो खाना है
0: कम
1: उसको
0: मात्रा
1: पचाना
0: में।
1: है, फिर पचाने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी
2: चावल छोड़ के भी कोई पतला नहीं हुआ है,
0: अच्छा, ये
2: एक्सरसाइज साथ
0: सर
2: में
0: दर्द,
2: चाहिए।
0: मुझे ये लगता है ना कि गैस की वजह से सर दर्द भी रहता है, मतलब
2: नहीं
0: एक
2: वो
0: टाइम
2: गैस
0: नहीं
2: भी
0: है।
2: मोटापे की वजह से काफ़ी कॉमन है, मैंने बताया था अभी कि जब हम
0: अच्छा
2: मोटे
0: अच्छा
2: होते हैं तो हाथों की चाल स्लो हो जाती है, जब स्लो होती है तो पेट में खाना ऐसा लगता है वहीं रह गया, हिल नहीं रहा आगे, फिर गैस बनती रहती है,
0: अच्छा,
2: वो नीचे नहीं निकलती तो फिर ऊपर आती है।
1: और
0: और
1: डॉक्टर
2: सर
0: साहब मथुरा का
2: ये
0: पानी भी है ना, तो थोड़ा सा मतलब
1: नहीं
0: वैसा
1: ये
0: है
1: मैडम
0: भी है।
1: ये वाली बातें हम बहुत सारी चीज़ें तर्क देते हैं, लेकिन पुराने लोग ये भी मथुरा में ऐसे थे जो पतले रहे हैं और खूब खा के भी जो है मथुरा का ब्रज का खान पान खूब मक्खन वाला रहा है, तो परेशानी काम न करने से और शारीरिक जो एक्टिविटी है वो कम होने से हुई है इसमें। तो
2: वैसे
1: आप
2: उसमें बोलूंगा
1: डॉक्टर साहब
2: दोनों
1: की बात पर
2: चीज़ें
1: ध्यान
2: हैं।
1: रखिए, तो आपका हो जाएगा उसमें ना। डॉक्टर साहब एक सिरा, ये रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख लिख रहे हैं कि मोटापा ना हो इसलिए किस तरह की कोशिश करनी चाहिए, और दूसरे प्रकाश जैन नांदेड़ से, ये भी महाराष्ट्र में ही है, अगर हम होटल के चाइनीज फूड, डोसा, बड़ा, पूरी, पोहा, मिर्ची, भजिया खाने में मोटापा होता है तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है?
2: देखिए मैंने फिर बताया, स्पेसिफिक खाना रिलेटेड नहीं है, टोटल कितना एनर्जी आप बॉडी में डाल रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, और कितना खर्च कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी इसी काम पे चलती है। बाकी आप, मैंने आपको फिर बताया, लोग केक खा के भी पतले हो जाते हैं, और मैंने देखे हुए हैं ऐसे लोग कि बस नॉर्मल जंक फूड खा रहे हैं बट उनका कैलोरिक इंटेक दिन में इतना कम था और एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा थी, उससे भी पतले हो गए।

0: अच्छा
1: मतलब जो शरीर का जो अकाउंट है,
0: हाँ सर अकाउंट है ये, इनपुट आउटपुट हमें अकाउंट मेंटेन करना
1: पड़ता है, कितना डालने
0: कितना निकालने। फिर आप ये बोलेंगे कि फिर डॉक्टर क्यों सलाह देता है कि अच्छा खाना खाने के लिए जंक फूड मना करने के लिए, तो ये है कि अगर हम 1500 कैलोरीज खा रहे हैं उसमें जंक फूड ही जा रहा है तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो जो हम वेट लूज कर रहे होंगे वो मसल मास भी लूज हो रहा होगा हमारा, हमें बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो सकती हैं बेटा।
1: इसीलिए संतुलित खाने की बात,
0: संतुलित खाने की बात ये है
1: कि उसमें
0: तो ये जो खाना है इसलिए रोकना है, इसलिए नहीं रोकना कि हमें पतले होना है, इसलिए रोकना है कि जब हम खाना कट करेंगे तो अच्छा खाना जाए, बॉडी में नई बीमारियां डेवलप ना हो जाए पतला होने की वजह से, और हम मसल मास लूज ना कर दें। मसल मास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पतला होना बस चर्बी कम करना नहीं है, लोग पतले जब होते हैं तो मसल भी लूज होती है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल को बचा लेंगे, बस चर्बी चर्बी निकलेगी,
1: और फिर जब एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आप फिर उससे वही अच्छा खाना। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ आपसे, चूंकि ग्रामीण परिवेश अभी भी बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है हमसे भी, रेडियो से भी और हमारी सोसाइटी से भी, एक ये होता है कि अच्छा और बैलेंस खाना खाने के लिए कोई महंगाई
0: कुछ नहीं सर, नॉर्मल
1: जो घर में चीज है, गुड़ है, दूध है, मठा
0: काफी है सर, बस एक हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा दूध वगैरह ज्यादा पी लीजिए, सोयाबीन खा लीजिए, दाल वगैरह खा लीजिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं बाहर से एक्स्ट्रा प्रोटीन ले सकते हैं तो ये सब तो कर ही सकते हैं आप, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपकी तो टेंशन ही नहीं है,
1: कोई फिर परेशानी नहीं है तो ये चीजें मतलब घर से भी अच्छे बैलेंस डाइट हम बना सकते हैं और घर का ताजा और वैसा खाना खा रहे हैं।
0: मैं सर आपको ये फिर बता रहा हूँ, पतला होने के लिए बैलेंस डाइट इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि मसल मास लूज ना करें, विटामिन पूरे रहे हमारे अंदर, पतले आप किसी भी खाने से हो सकते हैं, खाना स्पेसिफिक जरूरी नहीं है, बैलेंस डाइट इसलिए हो ताकि मसल मास बना रहे और विटामिन्स वगैरह जितनी न्यूट्रिएंट्स है सारे मिलते रहे, वरना लोग चिप्स खा के भी पतले हो सकते हैं पर वो लंबा चलेगा नहीं।
1: जी जी, एक फोन हमारे पास आ रहा है। हेलो,
2: हेलो सर
1: जी, नमस्ते।
2: नमस्ते सर, मैं मथुरा से नुसरत खान बोल रही हूँ।
1: मथुरा से क्या नाम बताया आपने?
2: नुसरत खान।
1: नुसरत खान, बताइए, डॉक्टर साहब से बात करिए।
2: सर मेरा भाई है, 9-10 साल का है वो।
0: जी जी।
2: तो उसका एक तो पेट बहुत भार है और ऊपर से मोटापा भी है।
0: अच्छा, कितने किलो का होगा वो?
2: समथिंग 50 किलो का।
0: अच्छा, कितना कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ करता है या फिर कैसे, क्या एक्टिविटी कैसी है उसके दिन की?
2: नहीं, एक्टिविटी कुछ नहीं है क्योंकि सुबह से स्कूल जाना होता है तो उस वजह से उसकी एक्टिविटी नहीं हो पाती, शाम को उसका ट्यूशन है एंड कोचिंग है।
0: कुछ खेलता वेलता है दिन में?
2: सर क्या
0: खेलना वेलना, कुछ बाहर जाना दोस्तों के साथ खेलना?
2: कुछ नहीं है।
0: आपने खुद ही आंसर दे दिया मेरे ख्याल से, मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर। बचपन में लोग पहले कितना होता था कि बाहर पार्कों में जाके खेलते थे, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, अब यहाँ पे बच्चा हमारे बस पूरे दिन पड़ ही पड़ रहा है, जब पूरे दिन पड़ेगा नॉर्मल खाना खाएगा तो फिर कैसे बताएं। और फिर ये एक मैंने जितना देखा है और एक किताबों में भी है कि जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंट फैक्टर असर करते हैं, अगर फैमिली में लोग मोटे हैं तो बच्चा भी मोटा होता ही है। एक्सरसाइज वगैरह बहुत हेल्प करती है, इसकी जीरो है अब आप बता रही हो जो।
2: और एक और दिक्कत है, मतलब उसे हम दवाई खिलाते हैं ना, जैसे बुखार आ जाता है बच्चे को, खांसी जुकाम होता है, उसकी दवाई खिलाते हैं तो उसकी सांस फूलती है।
0: मैम ये तो देखना पड़ेगा मेरे को, सांस क्यों फूल रही है, बट हाँ ये
1: तो
0: है
1: परेशानी है, 9 साल का अगर बच्चा है,
0: सांस वांस के लिए तो देखना पड़ेगा कि क्या रीजन है, बट हाँ मोटापे के लिए तो सबसे सिंपल चीज लग रहा है इसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा खेलना कूदना चालू करिए उसके बाद ही देख सकते हैं तो हाँ कि क्या है, बट ये सांस के लिए तो देखना पड़ेगा हम लोग को।
1: डॉक्टर साहब आप तो खुद भी चूंकि एक पढ़ाई वाले माहौल से ही आए, तो उन बच्चों के लिए जो आजकल जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेस तो है ही क्योंकि वहाँ पहुँचना है और पढ़ाई के लिए भी बहुत सारा समय देना है, लेकिन बावजूद इसके जैसे आपने कहा कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आउटडोर एक्टिविटी कहीं भी आप समय निकाल लें, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए।
0: या मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप एक बार सर्च करिएगा राजवर्धन सिंह राठौर और मनीष सिसोदिया, दोनों सेम एज के हैं, दोनों के सेम एज है, बड़ा फोटो देखिए, राजवर्धन सिंह राठौर जी कम से कम 10 साल छोटे लगते हैं मनीष सिसोदिया से।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
0: राजवर्धन सिंह राठौर जी का बिल्कुल पेट निकला हुआ, मनीष सिसोदिया का पेट निकला हुआ,
1: बाल भी चले गए
0: हैं, वो कम से कम 60-65 के लगते हैं, है ना, वो नहीं लगते राजवर्धन सिंह राठौर जी। सिंपल लाइफस्टाइल का अंतर है, दोनों नेता हैं, दोनों का पब्लिक एक्टिविटी में काम है, लाइफस्टाइल का अंतर है। एक आदमी अपनी उम्र से 20 साल 15 साल कम लग सकता है कसरत करके, एक्टिव लाइफस्टाइल करके, दूसरा आदमी उस पर भी सेम काम है, दोनों पब्लिक ड्यूटीज कर रहे हैं, इसमें आप ये भी नहीं कर सकते कि इस पर ज्यादा काम है उस पर कम काम है, उल्टा बीजेपी वाले पे ज्यादा काम होगा, वो अभी एक्टिव पार्टी है, आम आदमी पार्टी फिर भी बैकग्राउंड में है, ये सब लाइफस्टाइल ही है बस। तो हमारी फिजियोलॉजी
1: मतलब आपने अपने 24 घंटे के यूनिट टाइम को किस तरह से डिजाइन कर रखा है, क्या आप सोना कितना है उसमें, खाना कब लेते हैं, एक्टिविटी कब करते हैं, सोशल लाइफ आपकी

0: इतनी है। आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत टाइम ले रहा
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में से भी अगर हम 50% टाइम अपना एक्टिविटी को दे दें तो शायद हमारा काम बन जाए।
1: सर, आधे घंटे एक्सरसाइज निकालना बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए। उतना ही हो जाए ना तो बहुत हो जाएगा। जो लोग आधे घंटे भी रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज मेरा मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, योगा नहीं है, प्राणायाम नहीं है, चलना नहीं है। एक्सरसाइज वो है जिसमें सांस फूले, पसीने आए, थोड़ा सा दम
0: हाँ,
1: लगे,
0: मतलब पूरा शरीर एक बार
1: पूरा शरीर एक बार
0: आपका
1: एक्टिव
0: खुल
1: होना चाहिए,
0: जाए,
1: खुल जाए एक बार।
0: और
1: हाँ,
0: वो सुबह शाम कभी भी हो
1: अब
0: सकती है
1: लोग एक एक घंटे
0: इसमें।
1: योगा करते रहते हैं, नहीं होगे पतले आप।
0: हाँ
1: थोड़ा
0: सही।
1: बहुत 5-10 किलो कम हो जाएगा स्टार्टिंग में, अगर 120-30 किलो के ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एक प्लेट्यू आ जाएगा बहुत जल्दी, पर जो एक्सरसाइज लंबे
0: लेकिन
1: टाइम से करते
0: बॉडी
1: रहेंगे
0: को एक शेप मिलाना, वो फिर
1: सर,
0: आपको
1: आपको जोर लगाना पड़ेगा।
0: एक्सरसाइज करनी
1: जी सर,
0: पड़ेगी।
1: और
0: तो
1: सबसे पहले एक्सरसाइज है, खाना
0: हेलो,
1: बहुत लोग कम कर लेते
0: हाँ
1: हैं।
0: एक फोन ले लेते हैं। हेलो
2: हाँ
0: जी, नमस्ते।
2: जी, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ, आशीष बंसल।
0: आशीष बंसल जी, बताएं बंसल साहब।
2: मेरी शिकायत ये है
0: हाँ,
2: कि पूरे शरीर में ये समझ लो कि खुजली बहुत आती है,
0: खुजली, ठीक है।
2: और दूसरा कि पेट में मोटापा बढ़ गया है, कितनी भी एक्सरसाइज कर लूं मेरा पेट नहीं घटता है।
0: ठीक है, उम्र और बता दो डॉक्टर साहब, बंसल साहब।
2: उम्र मेरी है 24+,
0: 24?
2: और हाँ 24+। और एक चीज और बतानी है
0: हाँ
2: कि मेरा हरदम बीपी बढ़ा रहता है, 4 कदम चलता हूँ सांस फूलने लगती है, पसीना बहुत आता है, थकान होती है।
0: तो कई सारी चीजें 24 साल में बंसल जी आपने पाल ली है, फिर भी डॉक्टर साहब क्या
1: बंसल जी,
0: कहते।
1: कितना वजन होगा आपका
2: मेरा वजन मैंने 2 साल पहले नापा था, जब तो 80 किलो था,
1: अभी,
2: अब
1: कितना लग
2: तक
1: रहा है
2: मैंने
1: आपको,
2: नापा नहीं है। अंदाजन
1: फिर भी कितना अंदाजन?
2: मेरा कम से कम 70 के पास तो होगा।
1: अच्छा, 70 के किलो, तो ज्यादा भी नहीं। हाइट कितनी है आपकी?
2: मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच। अभी हाल ही में मैंने ऑपरेशन भी करवाया अपना हर्निया का।
1: जी,
2: तो सर ये बताएं कि मेरी मतलब मैं कैसे समस्या का समाधान कर पाऊं, जैसे पेट अंदर हो
1: आप
2: जाए।
1: एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ अभी डेली में?
2: अभी देखिए ऑपरेशन को कुछ टाइम हुआ है तो मैं एक्सरसाइज तो नहीं कर पा रहा।
1: पहले क्या करते थे? पहले
2: हाँ,
1: क्या करते थे आप एक्सरसाइज?
2: पहले मैं करता था एक्सरसाइज में ऐसे पुशअप लगा लेता था और अपना भाग ले दौड़ लेता था, अब नहीं था, अब
0: और
2: नहीं कर पाता हूँ।
0: एक्टिविटी क्या है, व्यवसाय क्या है बंसल साहब आपका?
2: मेरा नौकरी का ही व्यवसाय है, नौकरी करता हूँ,
0: अच्छा,
2: प्राइवेट जॉब।
0: प्राइवेट जॉब करते
1: बंसल जी,
0: हैं।
1: देखिए अभी जैसे कि आपने बताया सर्जरी हुई है तो आप चल नहीं पा रहे हैं, तो अभी तो मैं बोलूँगा कि डॉक्टर की सलाह के हिसाब से रहिए। अभी मोटापे को नहीं, अभी तो पहले हर्निया को सेटल करिए आप। जब वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल एक्टिविटी पे आप आ जाओगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज चालू करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब एक्सरसाइज
2: ठीक
1: डेली
2: है
1: आपकी आधे घंटे हो जाएगी कम से कम, उसके बाद मुझे
2: सर।
1: उम्मीद कम है कि आप पतले नहीं होगे।
2: क्यों,
1: नहीं होगे, मैंने कहा मुझे उम्मीद कम है कि पतले नहीं होगे, हो ही जाओगे
0: हो ही
1: एक्सरसाइज डेली
0: जाओगे,
1: चालू
0: एक्सरसाइज
1: करोगे तो।
0: अगर
1: आप
0: करेंगे तो हो ही जाएंगे,
1: उसके
0: ये
1: बाद भी
0: कहना।
1: अगर दिक्कत आती है तो एक बार आप हमसे सलाह जरूर ले सकते हैं। बाकी
2: अच्छा
1: खुजली
2: मेरे
1: के
2: को
1: लिए
2: एक चीज
1: खुजली है, मोटापे
2: बताइए,
1: से रिलेटेड नहीं लग रही मेरे को कुछ भी।
0: हाँ खुजली का अलग
2: बढ़ा
0: कोई,
2: रहता है, बीपी की शिकायत,
0: अब बीपी
2: जी मैं
0: बहुत
1: वही
0: आता
1: बता
2: है।
1: रहा हूँ कि अब ये जो बीपी बढ़ा रह रहा है, सांस फूल रही है, ये हार्ट पे संकेत है कि हार्ट पे जोर आना चालू हो गया। तो उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा आपको, ये मोटापे से भी रिलेटेड हो सकता है, तो एक बार इस पर आपको पर्सनली आके दिखाना पड़ेगा हमें इसके लिए तो। जी,
2: अच्छा,
1: पर हाँ मोटापे के लिए तो एक्सरसाइज।
0: बंसी साहब, हम जैसा अक्सर डॉक्टरों से मिलते रहते हैं
2: जी
0: और रेडियो में रह के जितना हमारी जानकारी है, उम्र और उसके हिसाब से ये काफ़ी अर्ली चीज़ है, तो आपको बहुत कॉन्शियस होना
1: जी
0: चाहिए और इसमें आपकी विलिंग ही काम करेगी। लेकिन जब कभी हमारी विलिंग काम नहीं कर रही हो तो एक अच्छा साथी डॉक्टर के रूप में हो सकता है, एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके आप दिखा लीजिए, सलाह ले लीजिए, अपना एक वो बनवा लीजिए, एक्टिविटी चार्ट बनवा लीजिए, डाइट चार्ट बनवा लीजिए। तो कई बार हमारी बिलिंग बिल पावर कमज़ोर पड़ जाती है, तो ऐसे में सलाह लेने की, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल वो आपकी कम नहीं है, ठीक है, तो आप मिल लीजिए डॉक्टर साहब से सिम्स में जाके, तो बेहतर रहेगा आपके ना जी। तो डॉक्टर साहब चलते चलते अब काफ़ी प्रश्न आए हमारे पास, क्या कहेंगे, समस्या तो देखो बड़ी है और इस पर घंटों और भी बोला जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की विल पावर ही इसमें काम करेगी।
1: नहीं सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है, विल पावर का ही है। अगर बीमारी में बोल रहा हूँ तो बीमारी में विल पावर नहीं आता कभी भी, बीमारी होती है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बीमारी है तो इसमें विल पावर, देखिए अगर लाइफ स्टाइल ही इन पर इम्पॉर्टेंट है, आपका रीज़न है मोटापे होने का, तब तो मैं विल पावर को बोल सकता हूँ।
0: लेकिन
1: पर
0: अगर
1: वो भी
0: कोई,
1: बहुत छोटा कॉम्पोनेंट है विल पावर का,
0: सही
1: बहुत
0: बात
1: सारी
0: है,
1: चीज़ें होती हैं। अब आपके माँ बाप बहुत मोटे रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो आपको जेनेटिक फैक्टर आएगा मोटे होने का, उसमें विल
0: जेनेटिक,
1: पावर क्या कर लेंगे?
0: सही बात है।
1: इसमें
0: तो
1: आप मोटे
0: वहाँ
1: होने
0: तो
1: ही
0: फिर
1: होने
0: आपको
1: हैं,
0: गॉड
1: वहाँ
0: गिफ्ट हो
1: आपकी
0: गया।
1: बॉडी बहुत मोटा होने के लिए रेडी रहेगी। इसके अलावा थायराइड की अगर दिक्कत है आपको, थायराइड मोटापा करती है,
0: सही बात है।
1: हॉर्मोन्स की दिक्कत है, नॉर्मल
0: शुगर हो
1: फीमेल्स के अंदर
0: गया,
1: PCOS नाम की बीमारी बहुत
0: हाँ
1: कॉमन है, मोटापा होता है उसमें।

0: उसमें बेचारी विल पावर क्या कर लेंगे,
1: क्या कर लेंगे, सही बात है।
0: तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बोले कि मोटे हो तो विल पावर कम है, ये गलत होगा। बहुत सारी रीजंस हैं, जेनेटिक्स है, एनवायरनमेंट है, खाना पीना, लाइफस्टाइल, बीमारियां, 100 चीज़ें हैं। तो वो तो मैं मरीज को देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट
1: है, तो फिर वहाँ सलाह ले लेनी चाहिए,
0: उसके साथ सलाह लेनी चाहिए। बस सबसे इंपॉर्टेंट पहला है एक्सरसाइज करो कटली आधे घंटे रोज, उसके बाद वजन नहीं कम हो रहा तब डॉक्टर को जरूर दिखा लो, तब आगे
1: तो शुरुआत अपने से अगर आप कर लेंगे।
0: सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआत जो मैं लगता है खाना पीना, लोग सब काम कर लेते हैं, सब सारा चावल छोड़ देंगे, जंक फूड छोड़ देंगे, यानी कौन से नए नए नुस्खे ले आते हैं, मैंने तो सुने भी नहीं है। मील रिप्लेसमेंट्स आ गए आजकल, 5,000 रुपए का महीने का खाना हो गया अलग अलग, एक्स्ट्रा नॉर्मल खाने के ऊपर 5,000 रुपए का खाना, आप सोचिए, और लोग खा रहे हैं, पतले नहीं हो रहे हैं कि साहब एक्सरसाइज कितनी करिए, सब जीरो है, उतना ही खा रहे हैं बस। स्टार्टिंग में 5-10 किलो कम हुआ, उसके बाद प्लेट्यू आ गया, फिर उतने के उतनी ही है। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट तो एक्सरसाइज है, आधा घंटा भी निकालो,
1: प्लेट्यू आप कह रहे हैं कि जहाँ ठहराव आ गया वो आपकी कोशिश काम नहीं कर रही है,
0: हाँ।
1: या जो कर रहे थे उससे काम नहीं चल रहा,
0: ये तो सर जब हम लोग, हाँ जब हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं मरीजों को, हम लोग दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद भी प्लेट्यू आते हैं, उसको तोड़ने के फिर तरीके होते हैं,
1: वहाँ फिर सलाह,
0: हाँ या फिर चीजें होती हैं कि फिर हम दवाइयों में एडजस्ट करते हैं, डाइट में एडजस्ट करते हैं, एक्सरसाइज एडजस्ट करते हैं, कैलोरीज को ऊपर नीचे करते हैं हफ्ते में एक दो बार, प्लेट्यू तोड़ने के तरीके होते हैं।
1: कई बार मरीज सोचता है कि अब मैंने ले लिया, मेरा ठीक चल रहा है, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब सलाह की जरूरत नहीं है, अब हॉस्पिटल,
0: जैसे कि मैं बताता हूं कि ओबेसिटी जो मोटापा है, ओबेसिटी में अगर हम किसी को ट्रीट करना चालू करते हैं और वो हमारे फॉलोअप से गायब हो जाता है, साल भर में 60% मरीजों का वेट वापस उतना ही हो जाता है इतना पहले था,
1: वही आ जाता है
0: जी। तो फॉलोअप तो चाहिए, इलाज चाहिए,
1: छोड़ नहीं सकते,
0: छोड़ नहीं सकते, अब ये लाइफस्टाइल है, आपको चलना ही पड़ेगा।
1: तो श्रोताओं, मोटापे के बारे में कुछ बातें की, बहुत और भी हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हम समय में बंधे हुए हैं, आज हमारे साथ डॉक्टर कुलवंत सिंह सिसोदिया जी जुड़े थे आकाश चिम्स हॉस्पिटल से, और बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन शुरुआत वहीं से है कि अगर मोटे की तरफ आप चले गए हैं तो एक्सरसाइज को जीवन में पहले लेके आएँ, फिर खुराक है, आपकी जीवन शैली है, फिर आपकी सोच है, और एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा हॉस्पिटल भी आपका मददगार हो सकता है। लेकिन यही है कि आप कुछ चीज़ों को और कुछ जानकारियों के साथ घर पर नहीं बैठ सकते, क्यों डॉक्टर साहब?
0: जी जी बिल्कुल, और लकीली अभी तो हमारे पास सर ऐसी ऐसी दवाइयाँ भी आ गई 4-5 साल में कि बैरियाट्रिक सर्जरी के बराबर का हम रिजल्ट दवाइयों पर ला रहे हैं, कि आपको बिना सर्जरी के बस दवाइयों पे हम रखेंगे कुछ साल तक, और जितना बैरियाट्रिक सर्जरी में आपको रिस्पांस मिलता है उतना बिना सर्जरी के मिलने लग जाता है। दवाइयाँ थोड़ी महंगी मैं मानता हूँ, बट आपकी सर्जरी भी महंगी नहीं है, मैं सस्ती नहीं है, वो भी काफ़ी महंगी होती है जी, ये है।
1: तो श्रोताओं, अगले हफ्ता फिर इसी समय और इसी दिन आपके साथ रहेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। अभी विदा लेते हैं, डॉक्टर साहब आप आए, जानकारी दी, हमारे श्रोताओं से जुड़े, उनके कुछ समाधान आपने उन तक पहुंचाए, मैं समझता हूं कि अगर वो फॉलो करेंगे तो कुछ लाभ भी होगा।
0: जी जी,
1: आपका आने के लिए और जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्ते, थैंक यू।
2: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्रीराधा वैली मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्रीराधा वैली मथुरा।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय था मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर कुलवंत सिंह सिसोदिया। आपसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम ब्रजलोक के गीतों का। आज के कलाकार हैं हरि किशन। बांसुरी पर संगत दे रहे हैं लक्ष्मण दुर्लभ। हारमोनियम पर संगत है हरि शंकर शुक्ला की। ढोलक पर अमित पाठक। परकशन पर हैं सूरज भान।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप आनंद ले रहे हैं हरी किशन के गाए ब्रज लोक गीतों का।

0: को सिर्फ प्यार नहीं, सुरक्षा का भरोसा भी चाहिए। इस रक्षाबंधन UP 112 है हर परिवार के साथ।
1: पुलिस सहायता, एम्बुलेंस, फायर इमरजेंसी, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, साइबर क्राइम, रेल, हाईवे या किसी भी इमरजेंसी में 112 की फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर।
0: शहर हो या देहात, दिन हो या रात, रखिए अपनों की सुरक्षा का भरोसा।
1: किसी भी आपात स्थिति में फोन उठाइए और 112 मिलाइए। UP 112 नंबर 1, सेवाएं अनेक।
0: UP 112 द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं ब्रज लोक गीतों के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं हरि किशन। तो आइए आनंद लेते हैं एक और प्यारे से लोकगीत का।

ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरि किशन के गाए ब्रज लोक गीत। संगत पर कलाकार थे बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर संगत थी हरि शंकर शुक्ला की, ढोलक पर थे अमित पाठक, परकशन पर सूरज भान। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है तथा सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देने में मदद करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल और प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमरेली जिले में दुधाला के पंचगंगा तीर्थ में नवनिर्मित हेतनी हवेली झील का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 9 टीम और उत्तर प्रदेश में एक टीम तैनात की गई है। नई दिल्ली में आज बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर क्षेत्र में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तक बाढ़ का व्यापक असर नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इस्पात विनिर्माण में भारत जापान साझेदारी बढ़ाने के लिए निवेशकों से चर्चा की।

ओसाका में आरओएचएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कात्सुमी अजुमा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने बैठक की। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 127 रन की बढ़त बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई।

0: में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 164 अंक गिरकर 77,309 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे अनिता सेन का कजरी गायन। रात्रि 10:00 सुनिएगा श्री राम शर्मा की लिखी रास लीला, शीर्षक गौरांग लीला, प्रस्तुति नरेश मल्होत्रा की रहेगी। किसान भाई और बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे किसान वाणी संध्या 6:50 पर, जिसका अनुप्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:15। इस कार्यक्रम में देश हमारो क्रम में विषय लेकर आएंगे अंडमान निकोबार द्वीप, वार्ताकार होंगे बाल किशन अग्रवाल। बहनों के लिए कार्यक्रम होगा वनिता लोक दोपहर 1:15 से। आज हमारी दूसरी सभा का आरंभ करेंगे संध्या 4:00 से कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, जिसका अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय लेकर आएंगे विश्व झील दिवस, आयुष्मान जन आरोग्य योजना, इसी के साथ होगी भेंट वार्ता। आज का विषय रहेगा स्वरोजगार एवं उद्यम प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाएं। वार्ताकार होंगे चंद्रभान सिंह, आपसे भेंट करेंगे जितेंद्र सिंह। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, समय रहेगा 2:30। फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का समय रहेगा संध्या 6:30। कंट्री वाइड रात्रि 9:30 से, इनसाइड रात्रि 9:45 से आप सुनेंगे। दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी, समय रहेगा संध्या 7:31। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तरानों का आनंद ले सकेंगे रात्रि 9:15 से। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 से प्रसारित किया जाएगा।

साथ ही एक बार फिर आपको याद दिला दें कि आज हमारी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 4 बजे से। कार्यक्रम रहेगा संदेश टू सोल्जर। अभी तक आप सुन रहे थे आज के प्रमुख आकर्षण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए करते हैं अपनी माटी को नमन।

संवित सुरों में अभी आपने सुना देशगान। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक।

जिससे किया ये वादा है, अब मंजिल पाने का इरादा है। ना हार मानूंगी ना ही रुकूंगी, क्योंकि जीतना मेरा इरादा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपकी सखी नीतू सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार, और आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक में हमारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की फुलवारी में हम लेकर आए हैं आपके लिए जानकारी, मनोरंजन, घरेलू टिप्स और फिल्मी तरानों का खजाना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन पंक्तियों के साथ। जल है जीवन का आधार, बिन जल सूना है संसार। नदियाँ, झीलें और समुंदर सबको देती जीवन दान। बहनों, यह तो हम सभी जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे दैनिक जीवन के सभी काम जल पर ही आधारित हैं, लेकिन जल का स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है, और इसका मुख्य कारण बारिश का कम होना और झीलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता का नहीं होना है। जबकि झीलें हमारे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। झीलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सन 2024 में प्रत्येक वर्ष 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। बहनों, पहला झील दिवस 27 अगस्त सन 2025 को मनाया गया। झीलें मीठे पानी के महत्वपूर्ण भंडार हैं, जो पीने के पानी की आपूर्ति, कृषि के लिए, उद्योगों और अन्य मानवीय गतिविधियों के लिए बेहद जरूरी है। इसी के साथ झीलें मछलियों, जलीय पौधों, पक्षियों और अन्य वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करती हैं। झीलें जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि झीलें कार्बन का भंडारण करके बाढ़ के पानी को अवशोषित करके जलवायु संतुलन में योगदान करती हैं। बाढ़ प्रबंधन में भी झीलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। झीलें अतिरिक्त पानी को अवशोषित और संग्रहित कर सकती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। बहनों, झीलें लाखों लोगों को की आजीविका का आधार है। मछली पालन कृषि के अतिरिक्त मनोरंजन और आर्थिक अवसर प्रदान करती हैं, जिससे पर्यटन और अन्य गतिविधियां आकर्षित होती हैं। लेकिन झीलें अत्यधिक उपयोग, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मिले जुले प्रभावों से प्रभावित होती हैं। झीलों का प्रदूषण अक्सर उर्वरकों, प्रदूषकों और ठोस कचरों के सीधे झीलों में डाले जाने के कारण होता है, और तापमान वृद्धि से यह स्थिति और भी बदतर हो जाती है। झीलों को बचाने और उनके संरक्षण के लिए सीवेज के पानी को झीलों में जाने से रोकना और वर्षा जल का संचयन करना सबसे जरूरी कदम है। झीलों की नियमित सफाई करके खरपतवार, प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरों को समय समय पर हटाते रहना चाहिए। झीलों में गंदे पानी और कचरे के बहाव पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। झील में पानी लाने वाले प्राकृतिक स्रोतों और जल मार्गों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। झीलों की सुरक्षा ही हमें आने वाले जल संकट से बचा सकती है। पानी रे पानी, तेरा रूप है निराला, तू ही तो है इस जीवन का उजाला।

बहनों, अपने मन के भाव को प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका काव्य है। काव्य के माध्यम से भाव को बहुत ही सहज तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कविता के जरिए साधारण सी बात भी रोमांचित हो जाती है। तो बहनों, चाहे बात रिमझिम फुहारों की हो या फिर सावन में आने वाले मुख्य त्योहार भाई बहन के स्नेह की हो, हर बात को अनोखे रूप से प्रस्तुत करने की कला ही अलग होती है। तो बहनों,

आज इसी क्रम में सुनवाते हैं काव्य पाठ बारिश और रक्षाबंधन। प्रस्तुत कर रही हैं चंद्रेश जैन।

सावन के महीने में आपने सावन के कई गीत सुने होंगे, मल्हारे भी गई होंगी, मैं भी यहाँ एक मल्हार दे रही हूँ, देखिएगा एक सावन का गीत, टपा टप में।

रख हार गुदी पर हरवा चमके रे गुदी पर हरवा चमके रे। काजलिया की काली कोर गोरी घर से रे टपाटप में घा बरसे रे टपाटप में घा बरसे रे। मैं यहाँ आपको रक्षाबंधन से संबंधित एक गीत दे रही हूँ।

आप सुन रही थी काव्य पाठ बारिश और रक्षाबंधन, प्रस्तुत कर रही थी चंद्रेश जैन। बहनों, हम अब तो सुहाने मौसम के लिए बस यही कहना चाहते हैं, सावन की बहार हो, रिमझिम फुहार हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, बाजार में रौनक बेशुमार हो, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां अपार हो।

गांधी ने क्या खूब कहा है, पहला सुख निरोगी काया। यह बात बिल्कुल ठीक है। यदि हम स्वयं स्वस्थ होंगे तभी तो हम अपने घर परिवार

अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। लेकिन बहनों, हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता की आदत को अपनाना बेहद जरूरी है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जिसे हमें अच्छे स्वस्थ रहने के लिए अपनाना बेहद जरूरी है। स्वच्छता की आदत हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ बनाए रखती है। हम अगर रोजमर्रा की जिंदगी में स्वच्छता को अपना लें तो अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। बहनों, स्वच्छता का मतलब केवल शारीरिक स्वच्छता से ही नहीं है, बल्कि अपने घर की स्वच्छता से लेकर अपने आसपास की स्वच्छता से भी है। लेकिन हम लोग आमतौर पर अपने घर की स्वच्छता पर तो ध्यान देते हैं और घर की साफ सफाई करने के बाद कूड़ा घर के बाहर डाल देते हैं। बहनों, अक्सर हम ऐसा ही करते हैं ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। बहनों, ऐसा करने से उन पर, कूड़े पर अनगिनत मच्छर, मक्खी बैठकर जगह जगह अपने बैक्टीरिया फैला देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए बहनों, हमें अपने बच्चों को भी शुरू से ही स्वच्छता की आदत सिखानी चाहिए। इसीलिए भोजन से पहले और बाद में हाथ अवश्य धोएं। जब हम कहीं बाहर से घर आते हैं तो ना जाने कितने बैक्टीरिया अपने साथ ले आते हैं। इसीलिए घर आते ही हाथ धोना और कपड़े बदलने जैसी आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। बहनों, आजकल बाहर के जंक फूड खाने का चलन बहुत हो गया है। बहनों, बच्चे छोड़ो, हम बड़े लोग भी बाहर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, जो कि हमारी बीमारी का मुख्य कारण है। जब हम बाहर खाते हैं ना तो वो चीज़ फ्रेश होती है और पता नहीं उस पर कितने मक्खी मच्छर बैठते हैं और हम बहुत स्वाद से वो खाना खाकर आते हैं। इसीलिए बहनों, घर पर बना हुआ भोजन का ही सेवन करें। घर में जैसे हम किचन में काम करते हैं तो किचन के बर्तन तथा फ्रिज की सफाई पर भी ध्यान दें। बर्तनों को यूज़ करने से पहले बहनों, क्योंकि बर्तन सभी धुले हुए रखे रहते हैं तो हम उन्हें जब भी यूज़ करें तो उन्हें दोबारा पहले धो लें। घर में जैसे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, इन सबको भी ढककर रखें। और बहनों, सबसे बड़ा क्या होता है, फ्रिज में आमतौर पर सारी सब्जियां, फल या फिर जो भी बने हुए आइटम होता है, दूध होता है, उसको हम ऐसे ही खुला ही छोड़ देते हैं। तो बहनों, फ्रिज के भी सारे आइटम हमेशा ढककर ही रखें। बहनों, कपड़े हमेशा धुले हुए पहनें और किसी का भी यूज़ करा हुआ तौलिया यूज़ ना करें। और पहने हुए कपड़ों को भी, ये है कि जब हमने एक बार कपड़ा पहन लिया तो उसको धो लें, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहनों, जब बात स्वच्छता की और स्वास्थ्य की चल ही रही है तो इस बदलते मौसम में अपने को स्वस्थ रखने के लिए अगर हम कुछ घरेलू टिप्स अपनाएं तो इस मौसम का इंजॉय कर सकते हैं। बहनों, इसके लिए थोड़ा सा खाने पीने का इस समय ध्यान दें। हल्दी वाला दूध दिन में एक बार जरूर लें और दिन में 2 या 3 बार गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। अगर गुनगुना पानी कोई नहीं पी पाए तो गुनगुने पानी से हम गरारे भी कर सकते हैं। तो बहनों, यह तो थे कुछ घरेलू टिप्स। अब इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होने का टाइम होता है, समय होता है हमारे कार्यक्रम संपन्न होने का। बस हम तो जाते जाते यही कहना चाहेंगे, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है। इसी के साथ नीतू सक्सेना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

तो सक्सेना एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का ये गीत हमने लिया है सुरेश वाडेकर और माल्या धीर की आवाज में फिल्म चांदनी से।

हसन जहांगीर की आवाज को अभी आपने सुना फिल्म 40-84 में। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सौतन से, उदित नारायण अलका याग्निक के युगल सुरों में।

गुरु रंधावा तुलसी कुमार को अभी आपने सुना फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में। इसी के साथ फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ प्रिया आकाशवाणी।

0: नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से 2 मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमन

0: ट्वेल्थ हो चाहे ओलंपिक्स हो एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स, ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहाले गए और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल्कि महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल्कि एक टीम तैनात

0: की गई है।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है NCERT व CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
2: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
0: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
2: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहाँ चल रहे हैं?
2: अजीत जी चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
0: क्या बात है, जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रहे हैं आप?
2: नहीं नहीं अजीत जी बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहां के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
0: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
2: जी चलिए श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछते हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
0: अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिन राम, ये मेघालय राज्य में है।
2: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ।
0: विमलेश जी यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा
2: जी।
0: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है
2: जी।
0: जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
2: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर।
0: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है
2: जी।
0: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11900 से लेकर 12000 मिलीमीटर तक, यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
2: 12 मीटर यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा
0: जी। जी तो विमलेश जी अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है।
2: बिल्कुल,
0: क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता, लेकिन जरा सोचिए विमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
2: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है, अब समझ में आया कि कितना पानी वहाँ बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहाँ के

0: सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
1: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है।
0: जी, अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं। अजीत जी, वहाँ अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये काम कैसे होते हैं?
1: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियाँ होती
0: जी,
1: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
0: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं।
1: जी
0: तो जी जी अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादू यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
1: इमरेश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
0: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं, आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
1: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। विमलेश, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
0: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
1: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते।
0: जी,
1: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
0: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिन राम हमें क्या सिखाता है?
1: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
0: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
1: भला वो क्या?
0: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
0: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
1: जी जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिन राम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मौसिन राम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप करें।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ।

0: कैसी रही चौपाल?
1: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
2: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है। नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
1: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
0: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
2: ये लो, नानी जी भी आ गई।
3: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
0: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
3: हाँ वो तो है।
1: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
3: अच्छा तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
0: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
1: कहाँ से आया है
0: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
1: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
2: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
0: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
0: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
0: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है। वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
0: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
0: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
0: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
3: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
0: हाँ।
3: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
0: बिल्कुल।
3: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
3: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
3: हाँ।
0: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
2: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है। अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला

0: और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: वही इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
8: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
9: इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
6: जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
10: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
11: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
12: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
11: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
13: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम में वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसीगौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए

0: उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
1: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
1: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थीं, वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थीं। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थीं कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
0: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में

0: ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
1: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
2: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
3: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
2: अच्छा।
3: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
2: अच्छा।
3: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
2: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
3: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
2: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत धन्यवाद।
1: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
0: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
5: चेतना,
4: जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा संध्या 3:58 से फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:58 हो चुके हैं। अब हम आरंभ करते हैं आज की दूसरी सभा।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। ये एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो वर्षों से हमारे जो जवान हैं उनकी वीरता, उनके अनुशासन, उनके समर्पण, उनके त्याग की कहानियां आपके बीच लेकर के आता रहता है। उन्हीं की जुबानी आप सुनते हैं उनकी कहानी। लेकिन आज हम आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज उन सीधे उन सैनिकों तक पहुंचाएंगे जो इस समय शायद किसी बर्फीली चौकी पर है, किसी तपती सीमा पर हो, किसी जहाज पर, समुद्री जहाज पर, या किसी ऑपरेशन के बीच खड़े हैं। आज का संदेश टू सोल्जर्स पूरी तरह समर्पित है आपके संदेश, आपकी दुआओं, आपके गर्व की, और गर्व की बातें जो उनकी होती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, इसी अभिमान की मैं बात कर रही हूँ।

और हमारे सैनिक अपने परिवार से महीनों महीनों बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमारी ओर से एक छोटा सा संदेश जब पहुंचता है तो शायद उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी तो एक सैनिक ने कहा था कि सरहद पर सबसे मुश्किल रातें तब आसान होती हैं जब लगता है ना कि देश वाले हमें याद कर रहे हैं। ये बात सच है, क्योंकि देशवासियों का जो प्यार है, भरोसा है, उससे भी लड़ते हैं वो। तभी तो सियाचिन में तैनात एक जवान ने लिखा था ये संदेश कि माँ, यहाँ तापमान -30 है, लेकिन जब कोई बच्चा पत्र लिखता है, संदेश भेजता है कि भैया आप हो इसलिए हम सुरक्षित हैं, तो मेरे ना दिल का तापमान गर्म हो जाता है। बस यही भाव, यही रिश्ता हम जोड़ना चाहते हैं। 9868107070 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है और कार्यक्रम में बहुत खास संदेश टू सोल्जर्स।

बातचीत होती है उनसे आप सुनते हैं और गर्व करते हैं, लेकिन आज आपका गर्व पहुंचाने का काम मैं कर रही हूं, सूत्रधार हूं। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो आपका आपके दिल का संदेश है, जो भी आप महसूस करते हैं जरूर लिखिएगा। युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करने वाले हमारे सशस्त्र बल मुश्किल की हर घड़ी में तो साथ खड़ाई दिखाते थे, लेकिन सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बाढ़ हो, भूकंप हो, प्राकृतिक आपदा हो, राहत, बचाव, पुनर्वास, इन सब में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। याद दिलाना आवश्यक है, महसूस करना हर पल आवश्यक है। कई बार वे वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना भी एक चुनौती होता है। और मीरा जी लिखती हैं, पता नहीं कहां से लेकिन लिखी है, बहुत पते की बात लिखी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, आप सरहदों की रक्षा नहीं करते, हमारे सपनों की भी रक्षा करते हैं।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स. इस शो में आज आपके साथ हूं मैं शैली भाषांजलि. अमूमन हमारे साथ होते हैं देश के जाबाज जो रूबरू हमारी

संदेश टू सोल्जर्स जिस कार्यक्रम में हम दोहराने की ये कोशिश करते हैं, बात आप तक पहुंचाते हैं कि जब भी कोई क्षेत्र आपदा में घिर जाता है तो सशस्त्र बल केवल राहत सामग्री नहीं पहुंचाते बल्कि लोगों को कठिन समय से निकाल करके भी लाते हैं। फिलहाल का समय बहुत ही कठिन है नेपाल के लिए भीषण बाढ़ की वजह से, लेकिन भारत एक तत्पर, एक सजग, एक देश की तरह अपने सशस्त्र बल की मदद से इनका बचाव भी करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं, कई जिंदगियों के लिए उम्मीद भी बन जाते हैं। और हमारे सशस्त्र बल की सेवा केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये हम जानते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय जो अभियान है उसमें वे हाथ बढ़ाते हैं और काम करते हैं, क्योंकि वर्दी का अर्थ केवल शक्ति नहीं, अनुशासन, साहस और मानवता सबसे बढ़कर।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आज सोल्जर्स की ही बातें कर सकते हैं, बहुत गर्व के साथ बातें करते हैं। अब जो पूरा देश, जो जो बहनें हैं, अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने की तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ भाई अपने घरों से बहुत दूर हैं, देश की सीमाओं पर हैं। किसी बहन की राखी आज पहुंचेगी शायद डाक से उनके पास, किसी की वीडियो कॉल पर बंधेगी और किसी बहन की कलाई खाली होगी, भाई की कलाई खाली होगी, क्योंकि उनका भाई देश की रक्षा में तैनात है। लेकिन सच तो यह है कि सैनिक सिर्फ अपनी बहन की रक्षा नहीं करता, पूरे देश की रक्षा करता है।

आज संदेश टू सोल्जर्स में देश के हर वीर जवान को एक राखी, एक अनदेखी राखी, वो धागा आपकी कलाई तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन देश की हर बहन की दुआ आपके साथ है।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स. और ये कार्यक्रम तभी पूरा होता है जब आप जुड़ते हैं अपने मैसेजेस के साथ, अपने भाव के साथ. शांताचारा बाडीगर को कोनूर कोकानूरू कोकानूर एम आई राइट? ओके, भाव की तरफ ध्यान दीजिएगा. शब्दों पे क्षमा चाहूंगी, लेकिन दावानागरे से लिखते हैं कि कार्यक्रम इसलिए वंडरफुल होता है ना शांताचारा जी, बिकॉज सैनिकों के बारे में होता है. आप जुड़े हैं इस शो के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं ककरोला द्वारका से, एंड ही सेंडिंग हिज हार्टिएस्ट लव टू द इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द नेशन. एंड बहुत सारी प्यारी बातें, डिवोशन डेडिकेशन की उनको उनके बारे में लिखी है, एक्सप्रेस की.

ये अपनी फीलिंग्स और सल्यूट करते हैं उनको। यशवंत जी लिखते हैं अपने अपने भाव के साथ, और मंजू भाटिया जी कहती हैं कि हमारी सीमा पर तैनात सभी सैनिकों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, अपने हर मिशन में आप कामयाब हो, यही हम चाहते हैं। जी हाँ, रक्षाबंधन एक ऐसा धागा जिसमें विश्वास बंधा है, सुरक्षा का वादा है, वो ये करते हैं। इसलिए आज आपकी आवाज उन तक पहुंचे, आपकी दुआ, आपका गर्व, आपका सम्मान, आपके भाव, आपके शब्द, इसी उद्देश्य से तो ये शो बना है। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि आपकी बात को उन तक जोड़ूं और पहुंचाऊं।

आकाशवाणी के इस चैनल में आप जुड़ रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। ये बहुत ही खास दिल के करीब यह कार्यक्रम होता है। हम जानते हैं कि सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, कोई धूप में तपकर, कोई छांव में रहकर अपने हिस्से की जमीन कमा रहा है, रोटी कमा रहा है, थकता है, मुस्कुराता है, चलता है, फिर लग जाता है। लेकिन स्पेशली उनकी बात करना चाहूंगी, उन माताओं को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने देश को अपने बेटे दिए हैं, उन बहनों को सलाम करना चाहूंगी जो भाई के लौटने का इंतजार करती हैं। स्पेशली जब राखी आती है तो उनके इंतजार में बहुत ही एक तत्परता बन जाती है। उन सैनिकों को प्रणाम करूंगी जिनकी वजह से हम त्योहार मना पाते हैं। और यही बात कहते हैं अनिल जी, अनिल कुमार, गेंडा खाली, चिलिया घोल, टनकपुर जिला, चंपावत, उत्तराखंड से इन्होंने लिखा है और यही कहा है कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी है, पर ये भी कहा है कि सुरक्षा के साथ हम कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं उनकी वजह से। हैप्पी राखी, हैप्पी हैप्पी लॉट ऑफ विशेज ही इज रिटन। दिस इज श्री रंगम राजेश फ्रॉम तमिलनाडु। आप सुनिए ये गीत, हम फिर आते हैं। मैसेजेस का सिलसिला यहाँ बन चुका है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। संदेश टू सोल्जर्स में आप अपने संदेश भेज दीजिए। दिस इज द प्रोग्राम विच रीचेस स्ट्रेट टू द सोल्जर्स एंड द हार्ट्स।

चूंकि ये कार्यक्रम प्राइमरली आपके संदेश, आपके दिल की भावना और आवाज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो सिलसिला मैसेज उसका यहाँ है वो आप तक जरूर पहुंचाती हूँ। यहाँ पर आनंद मोक्षी ने मुंबई से लिखा है, बहुत शुभकामनाएं दी है रक्षाबंधन की। और ये इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, इन्होंने यश सिंध ने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि सरहद पर जो खड़े हैं सीना ताने, वही तो इस पावन राखी का असली मान है। जो घर नहीं आ सकते वतन के खातिर, उन भाइयों के लिए दिल से दुआ आती है, बिल्कुल आती है दिल से। रेशम का धागा भले सरहद तक ना पहुंचे, पर हर बहन की दुआ आपको महफूज रखती है। बिल्कुल सही बात है, न जाने कैसे आपके दिल तक पहुंच जाती है। और यही बात यश शिंदे जी ने लिखी है। और हमारे पास मैसेज आया विपिन नेहरा का देहरादून से, एंड ही इज ऑल्सो विशिंग यू नो वॉर्म विशेज ही सेंडिंग टू ऑल द सोल्जर्स। और ये शो अच्छा, बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, इसी तरह से प्यार से आप जुड़े रहिए हमारे शो से, संदेश टू सोल्जर्स। ये हमारा शो है, सोल्जर्स की ईशान में हमेशा जी करता है कि कुछ ना कुछ बोले। बहुत सारी बातें उन पर लिखी गई हैं, लेकिन ये बात बहुत प्यारी लगती है मुझे। शायद आपने पढ़ा होगा स्कूल में, जानते होंगे इसके बारे में कि देवों के सिर पे चढ़ जाऊं, भाग्य पे इठलाऊं, ये चाह नहीं है, बस तोड़ लेना वनमाली मुझे, उस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक।

और इसी के साथ ही हम रसराज जी, प्रीतम जी और राजकुमार संतोषी जी का, जी के मैसेज का बहुत बहुत स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं ना संदेश टू सोल्जर्स के कार्यक्रम में, जब हम आते हैं सूत्रधार के रूप में, आपकी भावनाओं को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर माइक के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं, तो एक अलग भावना में परिपूर्ण हो जाते हैं। वो बर्फीली हवाओं में जो डटे सैनिक हैं, कभी समुद्र की अनदेखी गहराइयों में तिरंगे की शान उसकी रक्षा करने जो जो नेवी के जाबाज हैं, जो आसमान में सरहदों की जो चौकसी कर रहे हैं, एयरफोर्स के जो शूरवीर, जो पायलट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, इन सभी की अनगिनत कहानियां आप तक आती रहेंगी संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिस तरह से दिल से आप जुड़ते हैं, उस तरह से दिल से, प्यार से, मन से, भाव से, आदर से हम अपने सैनिकों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थे लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम। फिल्म थी मैंने प्यार किया, संगीत निर्देशक थे राम लक्ष्मण। और आइए सुनते हैं अलका याग्निक के साथ मोहम्मद अजीज को। फिल्म है खुदा गवाह, गीत आनंद बख्शी का, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अलका याग्निक की आवाज़ में करण अर्जुन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और अब सुनते हैं कुमार सानू के साथ कविता कृष्णमूर्ति को, फिल्म है जुड़वां।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज विश्व झील दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने 27 अगस्त को विश्व झील दिवस के रूप में नामित किया है। झीलों और उनके पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस दुनिया के मीठे पानी, जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा

सुरक्षा और जल स्रोतों की रक्षा करने का संदेश देता है। झीलें जलवायु विनिमयन, मनोरंजन और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसे मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं।

0: और साथियों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है स्वरोजगार एवं उद्गम प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाएं। विशेषज्ञ वार्ताकार हैं चंद्रभान सिंह और इनसे भेंट कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जो लोग स्वरोजगार कर स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो सरकार भी उनके साथ है और इस दिशा में विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं जो कि आम लोगों को, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र मथुरा के उपायुक्त उद्योग श्री चंद्रभान सिंह जी। तो आज हम उनसे कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम ब्रज दर्पण के अंतर्गत हार्दिक स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्रभान सिंह, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केंद्र मथुरा। मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं और जनपद मथुरा के सभी निवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसपे मैं जो सरकार की स्वरोजगार स्थापित करने के महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सबसे फ्लैगशिप और महत्वाकांक्षी योजना है सीएम युवा योजना, जिसको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि योजना ना होके एक अभियान है जिसमें हमें अधिक से अधिक अपने नवयुवकों को, नवयुवतियों को, अपने युवा साथियों को रोजगार से जोड़ना है। ये एक ऐसी योजना है जिस योजना में आपको बिना ब्याज का, मतलब ब्याज रहित और कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा और साथ में ही आपको 10% की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसमें जो हम लोगों का, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 1,00,000 युवाओं को प्रतिवर्ष और 10 वर्ष में 10,00,000 युवकों को हमको रोजगार से जोड़ना है। इस योजना के जो मुख्य आकर्षण है, जो मुख्य बिंदु हैं कि न्यूनतम कक्षा 8 पास हमारी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग होना चाहिए। इसमें आपको 5,00,000 रुपये तक का कोई भी उद्योग या सेवा, उद्योग मतलब आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, सेवा मतलब सर्विस इंडस्ट्री, जैसे होटल हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए या किसी भी तरीके की सर्विसेज, इसमें 5,00,000 रुपए तक की परियोजनाओं पे आपको 100% ब्याज मुक्त, मतलब आपका जो ब्याज है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और कोई भी कोलेट्रल या गारंटी नहीं लगेगी। बैंक द्वारा आपसे किसी भी तरीके की कोई गारंटी या कोई कोलेट्रल की मांग नहीं की जाएगी, 100% ब्याज मुक्त होगा और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको इस पे 10% की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये योजना इस तरीके की है कि आप बस केवल अपना विजन बनाइए, अपने मन में कुछ काम करने का प्लान करिए और जिला उद्योग केंद्र में आप एक बार विजिट करिए या ऑनलाइन वेबसाइट पे देख सकते हैं और वहां से इस योजना के बारे में सारी आपको जानकारियां, पात्रता, प्रक्रिया सब कुछ पता चल जाएगी। इसी के साथ जो हमारे विभाग में अन्य योजनाएं हैं, जैसे कि आप लोग सभी अवगत ही होंगे कि ODOP, एक जनपद एक उत्पाद योजना, इसके अंतर्गत जनपद मथुरा में ठाकुर जी की पोशाक, चूंकि ब्रज की नगरी है तो ठाकुर जी की पोशाक यहाँ पे ODOP है, इसी के साथ स्वच्छता संबंधी उपकरण, ये भी यहाँ का ODOP है। इस योजना में आपको अगर अपना रोजगार शुरू करना है तो आपको सब्सिडी वाला ऋण भी मिलेगा। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो इसमें टूलकिट और ट्रेनिंग योजना भी चलती है जिसमें आपको 10 दिवसीय ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के उपरांत आपको मानदेय दिया जाएगा और काम करने के लिए उस विधा से संबंधित मशीनरी भी दी जाएगी। और अगर आगे अपना बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो आप किसी न किसी योजना से आप लाभ लेके अपना एक बड़ा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे परंपरागत कारीगर हैं, जैसे हमारे नाई हो गए, बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, इनके लिए एक अलग स्कीम चलाई हुई है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत हमारे परंपरागत कारीगर जो किसी भी विधा से, वो चाहे दर्जी हों, चाहे वो मोची हों, चाहे वो हमारे लोहार साथी हों, चाहे हमारे वो नाई हों, हलवाई हों, ऐसे बहुत सारी ट्रेडें हैं, इन ट्रेडों में उन्हें 10 दिवसीय प्रशिक्षण मिलेगा। इसके साथ उन्हें मानदेय के रूप में एक धनराशि मिलेगी और उस विधा में काम करने के लिए उनको वो सारी मशीनरी मिलेंगी जिससे वो प्रतिदिन अपनी आजीविका का कुछ न कुछ उनकी आजीविका की व्यवस्था होगी। और अगर उसको बड़े स्केल पर ले जाना चाह रहे हैं तो उनको हम बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडी वाला ऋण भी दिला सकते हैं, ब्याज फ्री वाला ऋण भी दिला सकते हैं। तो ये योजनाएं हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगर कुछ हमारे युवा साथी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ 25,00,000 50,00,000 तक की भी योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत

0: 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, जिसमें 25% की सब्सिडी होती है, और वो कोई भी अपना बड़ा उद्यम, वो चाहे सेवा क्षेत्र का हो या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का हो, वो आराम से इसमें स्थापित कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि जो कई बार देखा जाता था कि बैंकों से समस्याएं आ रही हैं, अब इन योजनाओं की समीक्षा हर एक स्तर पे, जिला स्तर पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा, मंडल स्तर पे आयुक्त महोदय द्वारा, और इसी तरीके से एक प्रक्रिया बनी हुई है शासन स्तर पे इसकी समीक्षा होती है, जिसमें फास्ट्रैक माध्यम से प्रयास रहता है कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर हम लोग उनका ऋण हर हालत में डिसबर्स करा ले जाएं।
1: अभी जो आपने प्रशिक्षण का जिक्र किया, ये बताएं कि जिला उद्योग केंद्र मथुरा के माध्यम से किस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं?
0: हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण योजनाएं, दो योजनाएं हैं हमारे पास। एक योजना हमारी है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसमें हमारे परंपरागत कारीगर जैसे दर्जी, मोची भाई हो गए, लोहार साथी हो गए, हमारे राज मिस्त्री हो गए, टोकरी बुनकर हो गए, सुनार हो गए, ऐसे वो सारी ट्रेडें जो हमारे परंपरागत काम से जुड़ी हुई हैं, वो इसमें हैं, जिसमें आप किसी भी जनसेवा केंद्र से, आप अपने मोबाइल से या हमारे कार्यालय में संपर्क करके आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 10 दिवसीय प्रशिक्षण मिलेगा, और प्रशिक्षण में आपको 10 दिवस का रहना खाना सारी व्यवस्थाएं रहेंगी जो सरकार की तरफ से निःशुल्क रहेंगी, और इसी के साथ आपको 10 दिवस का मानदेय भी मिलेगा, लगभग 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रहता है, 4,500 रुपये। और इसके बाद जब आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, तो अगर हमारे कोई दर्जी साथी हैं तो उनको सिलाई मशीन, वो दर्जी में काम करने वाले वो सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी मशीनरी मिलेगी। कोई हमारे अगर धोबी साथी हैं तो उनको धोबी का काम करने के लिए, उस विधा के लिए उनको बहुत सारा सामान और उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। जो दूसरी हमारी प्रशिक्षण योजना है वो ODOP प्रशिक्षण योजना है। इस योजना के अंतर्गत उनको, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे ठाकुर जी की पोशाक और प्लम्बर मतलब स्वच्छता संबंधी उपकरण, दो ट्रेडें हैं ODOP के रूप में, तो इन दोनों ट्रेडों में आपको ठाकुर जी की पोशाक का प्रशिक्षण भी मिलेगा, प्रशिक्षण के रूप में मानदेय भी मिलेगा, और जब आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको काम करने के लिए अच्छी उन्नत किस्म की हाईटेक सिलाई मशीनें मिलेंगी, और फिर आगे अगर आप उस काम को और बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारे ब्याज मुक्त ऋण सब्सिडी वाली योजनाओं से आप जुड़ सकते हैं।
1: तो इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा या सबसे पहले यहाँ जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में संपर्क करना होगा?
0: बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। आप किसी भी जनसेवा केंद्र जा सकते हैं, और हमारी योजनाएं इतनी लोकप्रिय योजनाएं हैं कि आप वहां पे जाके जनसेवा केंद्र संचालक से कह सकते हैं कि हमको जो है CM युवा योजना में आवेदन करना है, या हमको प्रशिक्षण की योजना में आवेदन करना है, या हमको विश्वकर्मा योजना में आवेदन करना है, तो वो आपका आवेदन कर देगा। बहुत नॉमिनल सी फीस वो लेता है, हमारे आवेदन की कोई फीस नहीं है। इसके बाद हमारे युवा साथी, चूंकि अब मोबाइल और इनमें इंटरनेट पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो वो मोबाइल के माध्यम से भी अपने घर से अप्लाई कर सकता है। हमारी वेबसाइट है msme.up.gov.in। अगर उसको कोई और समस्या आ रही है या नहीं समझ पा रहा है, तो हमारा कार्यालय जिला उद्योग केंद्र मोहली रोड पे है, आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, हम यहाँ से भी आपका आवेदन करा देंगे।
1: आवेदन करने के बाद क्या कोई यहाँ कार्यालय में कोई उनका यहाँ साक्षात्कार लिया जाता है, किस तरह से जो उनका ऋण है वो पास होता है?
0: जब आपका आवेदन हो जाता है, आवेदन के पश्चात फिर एक साक्षात्कार की प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग स्क्रूटनी करते हैं कि हम आपने जो आवेदक है उसकी इच्छा और उसकी विधा का चयन करते हैं, तत्पश्चात उसको सेंसिटाइज करते हैं कि हमारी ये योजना है, इसमें इतने दिन का प्रशिक्षण है, आपको आना होगा। तत्पश्चात जब उसका चयन हो जाता है, चयन हो जाने के पश्चात प्रशिक्षणदायी संस्थाएं हैं जो शासन द्वारा नामित होती हैं, हम उनके पास आपका आवेदन भेज देते हैं और आपका प्रशिक्षण वहां से प्रारंभ हो जाता है।
1: तो श्रोताओं, हमारे साथ रहे जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र मथुरा के उपायुक्त उद्योग श्री चंद्रभान सिंह जी, और जैसा कि स्वावलंबन और स्वरोजगार की दिशा में चल रही विभिन्न तरह की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी, तो जो भी ऐसे लोग हैं, युवा हैं, जो सेवा क्षेत्र में या विनिर्माण क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, स्वावलंबी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो आपने हमारे श्रोताओं तक और विशेष रूप से युवाओं तक इन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं पुनः आपसे अपील करूंगा कि एक जज्बा और एक उम्मीद और एक प्लान बनाइए, और बस आपका केवल एक ध्येय ये होना चाहिए कि हमें अपना उद्यम स्थापित करना है और हमें 4 और लोगों को नौकरी देना है। अगर आप इस ध्येय के साथ हमारे कार्यालय विजिट करते हैं तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपका हर संभव मदद करेंगे, और आपके आवेदन कराने से लेकर प्रशिक्षण कराने और ऋण वितरण तक जो भी यथासंभव सहयोग होगा हम करेंगे, और केवल आपका यहीं तक सहयोग नहीं रहेगा, जब आपका एक बार उद्यम स्थापित हो जाएगा

0: तो आपके लिए मार्केट, विभिन्न मेले इत्यादि के माध्यम से हम आपके लिए ब्रांडिंग और पैकेजिंग, मार्केटिंग इत्यादि का भी काम करेंगे। तो मैं आकाशवाणी का और साथी संचालक का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट msme.up.gov.in इस पे आप विजिट कर सकते हैं और सारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। किसी भी जानकारी या कोई कंफ्यूजन होने पे आप जिला उद्योग केंद्र आ सकते हैं, यहाँ पे हमारी टीम है जो आपको हर संभव मदद करेगी। बस हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
1: साथियों, अभी आपने भेंट वार्ता सुनी। स्वरोजगार एवं उद्यम प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाएं, वार्ताकार थे चंद्रभान सिंह और इनसे भेंट कर रहे थे जितेंद्र सिंह। और साथियों, कार्यक्रम में अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1,300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
2: हमारी एम्बेसी वहां के सरकार से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से वहां से निकाला जाए। 21 भारतीय नागरिक जो तमिलनाडु से हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और ये लोग वहां से निकलने के बाद काठमांडू आएंगे और काठमांडू से फिर भारत की यात्रा करेंगे।
1: चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल को बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद

की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। मेरा युवा भारत लेह ने EJM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेह की NSS इकाई के सहयोग से खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 250 विद्यार्थी और युवा शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी सीरीज के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज खेल के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड। 9:45 पर होगा कार्यक्रम इनसाइड। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसान वाणी। और संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 6:15 पर होगा ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में देश हमारो क्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जानकारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में। जानकारी आपको देंगे बाल किशन अग्रवाल। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे से लेकर 8:20 तक।

रात 8:20 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा। रात्रि 8:30 पर आज की फिल्म होगी दाग।

रात 8:20 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे एक ही फिल्म से। यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी दाग।

रात 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तरहने। रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे स्वामी श्री राम शर्मा की लिखी रासलीला गौरांग लीला। इसके प्रस्तुतकर्ता होंगे नरेश मल्होत्रा। आज आप सुनेंगे इसका प्रथम भाग। रात्रि 10:30 पर होगा उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अनिता सेन का कजरी गायन, विदुषी सविता देवी का गायन और विदुषी शोभा गोटो का गायन। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम या कार्यक्रम में आज देह समारोह क्रम में हम आपको देवा में जानकारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में ये जानकारी आपको दे रहे हैं बाल किशन अग्रवाल।
1: देखिए, वैसे तो सब लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी के अवकाश में आनो जानो लगे रहे, घूमने के हिसाब से भी लगे रहे, कहीं ना कहीं पर्यटक स्थल के हिसाब से भी लगे रहे। और यह ब्रज क्षेत्र के लोगों की तो बड़ी धारणा रही, क्योंकि अपना ब्रज क्षेत्र तो एक धार्मिक पर्यटक स्थल तो है ही है। तो यहाँ के लोगों को ना ज़्यादातर रुझान ऐसी जगह पर घूमने को रहे जहाँ जो धार्मिक स्थल नए रहे। तो ज़्यादातर मैं देखूं और मैं भी बड़ा घूमने फिरने को शौक है ऐसी जगह पे। मैंने भी देश के कई सारे हिस्से में घूमे हूँ, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा की एक दो जगह हैं, राजस्थान की भी एक दो जगह हैं। तो हमारे एक साथी हैं आचार्य जी, उनने कही मान की भाई एक बार अगर आपको मन करे तो अंडमान निकोबार के लिए ज़रूर जाइयो। तो हमारा बड़ा रुझान बने, क्योंकि हम नेट वगैरह पर देखते रहे, अंडमान निकोबार की जानकारी भी लेते रहे, बड़ी अच्छी जगह दिख है देखने के लिए। तो पर बोले भाई जावे के काजे तो और घूमने के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया जगह रहे अंडमान निकोबार। तो हमने अपना मन बनायो, क्योंकि अब नई जगह ही तो जावे के लिए आने जाने के साधन की व सब चीज़ की जानकारी भी चाहिए ही। तो भाई हिसाब से हमने फिर उनसे जानकारी ली, बोले भाई आप यहाँ से चेन्नई के लिए चले जाओ, और फिर चेन्नई से करीब 1100-1200 किलोमीटर की दूरी पे पड़े, दोनों तरीका की सुविधा है, शिप की भी व्यवस्था है और एरोप्लेन की भी व्यवस्था है, जहाँ तुम्हारा मन अच्छा लगे बातचीतते जाइयो। पर हमने कही भाई ऐसा है कि क्योंकि नई नई जगह पे जानो है तो कोई टूरिस्ट वाली आजकल की व्यवस्था बहुत सारी है, तो टूरिस्ट में ही क्यों ना जाया जाए। तो हमने फिर जो है एक टूरिस्ट वाले से बातचीत करी, तो माने हमको जो है 5 रात्रि को और 6 दिना को अंडमान निकोबार को घूमने को पूरा पैकेज करीब 30,000 रुपया को माने हमें लमसम में बतायो। तो हमने कि भाई कोई जादू ना है, 6 दिना घूमने फिर वे के काजी 30,000 रुपया और अंडमान निकोबार जैसी जगह पे आदमी जाएगा तो वहाँ कछु मायने न रखे, 30,000 रुपया की का कीमत है ऐसी जगह।

घूमने के काजे। तो मैं आप लोगन को भैया सब स्रोतन के लिए जो जो चीज मैंने अंडमान निकोबार में देखी है और बाकी प्राकृतिक छटा सुंदरता के बारे में मैं पहले तो आपते प्रार्थना करी दूं बतावे थे पहले कि सब लोग बात जगह पे जरूर घूमने काजी जाइयो जिन जिन लोगन को घूमने को मन करे। तो बाकी मैं आपको व्यवस्था बता दूं और जगह की बता दूं। ये वैसे तो हमारे देश में कुल प्रदेशन में थे 7 प्रदेश ऐसे हैं जो केंद्र शासित हैं, उनको एक हिस्सा है, एक प्रदेश है केंद्र शासित प्रदेश है। और या के बारे में बहुत से लोगों ने सुने होगा कि 2005 में वहाँ सुनामी आई और बस सुनामी में घूमने पे व्यवस्था तो सब जगह एक जैसी रहे, प्रकृति भी एक जैसी रही है लगभग, ज़्यादातर कोई कोई जगह की अलग बदल जाए, लेकिन वहाँ के लोगों को व्यवहार और दृढ़ जो इच्छा शक्ति है, मैं तो वहाँ जाके बड़ो ही अचंभित है गयो। मैंने देखा कि 2005 में जहाँ प्रदेश में सुनामी आई हो वहाँ के लोगों की क्या इच्छा शक्ति रही है, इतना अच्छा व्यवहार उन लोगों को रहो घूमने फिरने में, उन लोगों को ऐसा ऐसा व्यवहार साहब भाई वास्तव में मन मेरा तो वहाँ बड़ा भारी करके अभिभूत है गयो। वैसे तो सुनवे में एक जैसा लगे कि अंडमान निकोबार कोई एक ही द्वीप है का, लेकिन वैसे तो ये 10 डिग्री के पैरेलल पे बने हुए 2 द्वीप हैं, एक अंडमान और एक निकोबार। ये हमारे देश के पूर्वी हिस्सा में स्थित रहे, ज्यादा बड़ो ना है, जाको क्षेत्रफल कुल 8,073 किलोमीटर स्क्वायर को है, जाकी राजधानी भी बहुत अच्छी रहे, पोर्ट ब्लेयर जाकी राजधानी है, जहाँ पे पहले हम सब लोगों ने सुने होगा कि काले पानी की सजा मिलो कराई, तो वहां पे जा काले पानी की सजा से संबंधित जेल भी है, सेलुलर जेल जाको नाम है। और मैं एक चीज मैंने जब वहां के लोगों से पूछी, वैसे तो वहां की मुख्य भाषा तो अंडमानी है, तमिल भाषा है, बंगाली भी बोले वहां के लोग, मलयालम भी बोले, पर कछु लोग हिंदी इंग्लिश में बात करें। अब क्योंकि हम थोड़े लिखे भैया ब्रज बारे तो आदमी है ही है, तो अंग्रेजी भाषा भी बोल ले, ब्रज को आदमी तो ऐसा हो के सब तरीका की भाषा जानवे की इच्छा रहे बाकी। तो हमने वहां के लोग वागनते जानकारी ली, तो उन लोगों ने हमको बताई कि साहब यहाँ पे हमारे या राज्य में ऐसी ऐसी भूमि है जो कृषि योग्य है, ज्यादा भूमि तो खैर ना है, कुल 48,675 हेक्टेयर भूमि है जो खेती योग्य रहे वहाँ जगह पे, और वहाँ धान की खेती ज्यादातर होकर है जहाँ प्रदेश में। और काले पानी की जो जेल है सेलुलर जेल सा उनने हमें घुमाई, हमने जो अपने हमारे जो गाइड वारो है काओ वो तो बिन्ने बेचारे ने अलग कर दियो। सबसे बड़ी बात जो है ना पर्यटक स्थल की वहाँ के रहवे वारे इनके व्यवहार के ऊपर निर्भर करे, और मैं तो भैया वहाँ के लोग वागन के व्यवहार से इतनो ज्यादा अभिभूत रहे हो कि मोह तो कहो गाइड वारे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये मानो कि वहीं के लोग आगे जब इन्हें पता पड़ी ना कि भाई ये ब्रज क्षेत्र को रहवे वारो है, काना की नगरी को रहवे वारो है, तो लोगों ने हाथे हाथन पे ले लियो भैया, और पूरा अंडमान निकोबार द्वीप उनने मुहे ज्यादातर घुमायो। वैसे तो ये ज्यादा बड़ो राज्य ना है, तो ये ज्यादा बड़ो प्रदेश ना है, यहाँ में कुल 3 जिले और जाको जो सबसे बड़ा नगर है पोर्ट ब्लेयर वो जाकी राजधानी रे है। ये जो राज्य है अंडमान जो निकोबार है ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सा में स्थित है, और यहाँ में छोटी छोटी टूटी भई कड़ीन से एक बहुत ही सुंदर स्थान है जो जहाँ सबको मन मोह ले। सबसे बड़ी बात तो फिर एक और चीज रही है घूमने के हिसाब से कि यहाँ की जब हवा चले ना है तो ऐसा लगे आदमी को झूमने को मन करे अलग ही, इतनी सुंदर समुद्र के किनारे पे इतनी गीत गाती भई हवा में, ऐसे मान लो कोई संगीत बह रहे हो, ऐसा मन करे भैया यहीं पे डांस करवे लग जाए, इतनो टॉप को स्थान रहे भाई। और वैसे तो बाकी फिर क्योंकि ऐसी आदत रही है ना जो आदमी घूमे फिरवे बारो रेखा है, तो बाकी जीव आशा रे भाई यहाँ के हम मुख्य पक्षी जाने राज्य के, राज्य को मुख्य पक्षी कहा है, राज्य को मुख्य पशु कहा है। तो मैं अपने सब स्रोतन को जे बता दूं भैया या राज्य को जो मुख्य पशु है ना वह पशु को नांग में डुगोंग, और या राज्य के पक्षी को नाम है बुड़ पिजन, बहुत ही सुंदर पक्षी है, गहरी सिलेटी रंग की जहाँ पे नीचे ते धार रे और ऊपर ऊपर हल्का सा चमकता भयो जाको चेहरा रे, या बुड़ पिजन को ललाट जो है बड़ी जोरदारी ते चमके है। हमें बिन्ने दिखायो जंगल में ले जाए के बोले साहब अपने राज्य को हम आपको पक्षी दिखा।

0: तो हमने साहब पक्षी देखे हो, सबसे बड़ी बात है पक्षी केवल जय राज्य में और मिले का, वो राज्य में मिले उन्हें, तो चलो कहूँ देख यू ले। हमने कि भाई काना थे, हमने डोर लगाई भाई काना या अंडमान निकोबार थे हमारे ब्रज में भेज दे, तो एक बार हम देख ले और अपने सब संघ के लोगों को दिखवाए देंगे। वैसे तो यहाँ की जो हवा है ना, वो जीवन में ऐसा उल्लास भर दे है, ऐसा उल्लास भर दे है भैया, वहां ते ना आवे को मन करे। मेरा तो ऐसा मन करे आयो कि 5 रात और 6 दिना के एक बार और जाकू 30,000 रुपया दे दूं और यहीं पर रुके रहूं। पर भाई काम काज वाले आदमी को तो ऐसा है ना कि घूमे फिरवे को थोड़ा बहुत ही दिना मिलाओ करे ना। पर यह है कि भाई मैं सब लोग अंते जो भी श्रोता हैं, मेरी ऐसी आशा है कि कहूं पे अगर घूमे काजे जाएं। एक दूसरी चीज और है, भावुकता की जाए ज्यादा, भावुकता में थोड़ा सा मैं आप लोगों से कह रहे हूं कि क्योंकि जहाँ राज्य में कभी सुनामी आई हो, कभी आपदा आ गई हो, तो देखो जी वैसा तो कोई माँ फैक्ट्री वैक्ट्री ना आती कि भाई चलो माँ उद्योग हो तो उद्योग से कोई बड़ी माँ लोग वागन की रोजी रोटी कम जाए। ये एक पर्यटक स्थल है, तो जैसे हम लोगों को मन करे भाई जम्मू कश्मीर जावे को या कहूँ राजस्थान घूमे फिरवे को, तो मेरी भैया सब स्रोतन ते एक प्रार्थना है, एक बार अंडमान निकोबार जरूर जइयो, क्योंकि जा राज्य की जा जिले को स्थान पर्यटक स्थल में है जाए, तो बामे चाहे भली एक बार को कोई उद्योग ना हुए तो काम चल जाए, क्योंकि पर्यटक स्थल खावे को दे जाए, पर्यटक कछु न कछु तो रोजी रोटी हमें दे जाए। कि सब लोग यो कहें कि भाई जम्मू कश्मीर भाई धरती को स्वर्ग है, धरती को स्वर्ग है, पर भैया जीव धरती के स्वर्ग ते कम ना है, यहाँ पे जरूर घूम के आई हूँ। अंडमान निकोबार की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है, बात चीजें में आप सब लोगों के संग रखने की इच्छा मेरी कर रही है कि या राज्य को जो स्थापना ही ना अपने देश के आजाद हैवे के करीब 7 साढ़े 7 साल बाद, 7 सवा 7 साल बाद जो है या राज्य की स्थापना भाई 1 नवंबर 1956 में या देश को या राज्य को स्थापन रहे हो 1 नवंबर 1956 को। वैसे तो यहाँ की जो साक्षरता है, यहाँ के लोगों में जो पढ़वे लिखवे की क्रिया है ना, वो हमारे मथुरा ते और यूपी ते तो बहुत ही ज्यादा रही है। यहाँ की जो कुल साक्षरता है लगभग 78% के तकरीबन है, यानी पढ़े लिखे लोग 100 में से 78 के करीब मिल जाएंगे। तो मेरो भैया मैं अब चलते चलते सब स्रोतन ते मेरो एक ही निवेदन है कि सब जगह चाहे भले ही घूमने को जाइयो, एक बार अंडमान निकोबार घूमने का जे जरूर जाइयो। राधे राधे।
1: ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी आपने देश हमारो क्रम के अंतर्गत ये जानकारी लेनी अंडमान निकोबार द्वीप, यह जानकारी आपको दे रहे हैं बाल किशन अग्रवाल। अश्रोताओं कार्यक्रम में अब आपको सुनवा में एक लोकगीत संवेद स्वरन में।

समवेत शरण में अभी आपने जे लोकगीत सुनो, यही के संगे आज को अभ्रस साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

ये थे मोहम्मद रफ़ी और साथी, फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी। और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार और साथियों को, फिल्म का नाम है राधा का संगम।

महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में अभी आपने ये पारंपरिक भक्ति रचना सुनी। फिल्म थी पूरब और पश्चिम। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हमका खाली एक ही फसल पर ना निर्भर रह के तमाम तरह के काम करे चाहिए। जैसे होगा कि हम लोग पशुपालन कर ले, मधुमक्खी पालन होगा, और जैसे गोबर से हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना सके भैया।
1: एक के साथ साथ सब्जी उत्पादन है, औषधि उत्पादन है, या बागवानी है, कहे का मतलब है कि ऐस काम करे के यहाँ है जो अपनी खेती में सहायक भी बने और हमार आमदनी भी बढ़त रहे।
0: बिल्कुल भैया सही कहे हो, ऐसे ऐसा काम करिए जो एक दूसरे के जोड़े
1: जोड़ है। अब जैसे पशुपालन है तो पशुपालन में का होता है कि देखो जो अपनी खेती में अवशेष बचत हैं वो चारा के रूप में जो है वो प्रयोग हो जाते हैं पशुन में, और जो पशु के अवशिष्ट होते हैं वो जो है खेती में खाद के रूप में आ जाते हैं, मैंने खेत की भी खुराक पूरी हो जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बताया भैया। देखो जोन किसान जो है एक फसल पर निर्भर रहा थे, वो मान लियो कोनो मौसम खराब हैगा या फसल में रोग लाग गवा या बाजार भाव अच्छा ना मिला, तो इसे उका नुकसान उठाए पड़त है। मगर ई जो हम लोग तीन चार काम करबे तो उमक आमदनी के भी कई जरिया हुई है भैया।
1: बिल्कुल अहे के साथ ही होते हैं कि जैसे जो अपन छोटी मोटी आमदनी है और रोज के खर्चा में हो जाते हैं, और जो मुख्य फसल अपन होते हैं वह बचत के रूप में आ जाते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: हमारे पास बचत भी हो जाता है, अपन काम हम ठीक ढंग से कर सके थे। और ज्योति बहनी एक बात और है कि ठीक ढंग से काम करे के खातिर ये बात के बहुत जरूरत होते कि हमारे तो बढ़िया और सटीक जानकारी हो।
0: बिल्कुल भैया, तो यही लिए जो है आज के खबरें सुन लीजिए।
2: उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र से जुड़े परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के निर्देश दिए हैं। करीब 4,000 करोड़ रुपए की विश्व बैंक समर्पित यूपी एग्रीस परियोजना प्रदेश के 28 जिलों में लागू की जा रही है। इसके तहत करीब 10 लाख किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, बेहतर उत्पादन और बाजार से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। परियोजना के तहत गूगल के सहयोग से ओपन डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके जरिए किसानों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौसम, मंडी भाव, मिट्टी और खेती से जुड़ी जरूरी सलाह उपलब्ध कराने की तैयारी है। सरकार का फोकस कृषि की लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को परियोजना के समझौतों को तेजी से लागू करने और इसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। यानी तकनीक के सहारे यूपी की खेती को ज्यादा उत्पादक और किसानों की आय को अधिक मजबूत बनाने की तैयारी है।
1: तो ज्योति बहनी
3: हाँ
1: देखो ये तो रही खबर के

0: जानकारी के बाद, क्योंकि देखो जब तक समाचार दुनिया भर का ना ही मिलते तब तक हम अपन जान नहीं पाए थे कि दुनिया में क्या चल रहा है। और एक बात और है, बात यह है कि जैसे जौन अपन खेती किसानी हो तो, मैं एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो अगाया सो सवाया, जौन काम आप पहले करी हो उमा सफलता मिली। खास करके जौन खेती और सब्जी उत्पादन है इमा तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ मतलब लागू होते हैं। जैसे सब्जी होते का होते, शुरुआत में अपन बाजार में हो तो कितने ऊंचे भाव पर होते हैं,
1: बिल्कुल
0: और के
1: बिल्कुल
0: बाद में हाँ धीरे धीरे उसका भाव गिरने लगे थे, और फिर एक समय ऐसा जब बहुत अधिकता हो जाए तो भाव नीचे भी आ जाते हैं। तो अगर समय पर जागरूक रहा जाए और अगेती खेती की जाए और वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो लाभ निश्चित रूप से होते हैं।
1: तो ठीक है भैया, तो एक भेंट वार्ता सुन लीजिए जी का विषय है गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती, और जी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनायक प्रताप शाही भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन जहां आप कर रहे हैं वहां गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मसौधा अयोध्या से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर विनायक प्रताप शाही साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो इस समय क्या कुछ संभावना है इसकी?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। बात करते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में। फूल गोभी में अगेती मध्यम वाली फसल की बुआई हो चुकी है। अब हम बात करें कि इस समय अगस्त से लेकर के सितंबर तक हम कौन सी बीज की नर्सरी तैयार करें, तो पूसा सिंथेटिक है, पूसा हिमज्योति है और पूसा शुभ्रा है। और देर से जो बोए गए पूसा स्नोबॉल K1 है, अब पूसा स्नोबॉल 16 है और पूसा KT125 है। ये फूल गोभी की प्रजाति है। देखिए आजकल फूल गोभी में भी हम बाजार में देखते हैं कि लाल गोभी और पीला गोभी भी प्रजातियां लगाई जाती हैं, जो एक आकर्षक भी रहता है और किसान को बेचने में भी आसानी हो रही है। इसमें आमदनी जो आम गोभी है उससे कम से कम 7-8 रुपया अधिक बिकता भी है। तो किसान भाई लाल गोभी में और पीले गोभी में बेलेटिना हिमाचल की प्रजाति है, वो भी आप लगा करके आप इससे अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हम बंद गोभी की बात करते हैं तो गोल्डन एकर है, पूसा मुक्ता है, पूसा डर्म हेड है, प्राइड ऑफ इंडिया है और पूसा सिंथेटिक है, श्री गणेश गोल है, बजरंग है। और इसके साथ पत्ता गोभी में भी आप बात करेंगे तो लाल पत्ता गोभी भी आता है। उसमें क्या होता है, स्टोरेज क्षमता थोड़ा सा आम गोभी है उससे अधिक होता है, तो उसको भी हम लाल पत्ते गोभी के नाम से आता है, उसके भी रेड कैबेज जिसको बोलते हैं उसको आप नर्सरी इस समय डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि गांठ गोभी की भी तमाम प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें लार्ज ग्रीन है, किंग ऑफ नॉर्थ है, पर्पल भी आना है, वाइट भी आना है और पालम टेंडर वोब है। ये प्रजातियां गांठ गोभी की हैं। और आजकल देखिए कि अधिक जो पोषक तत्वों से भरपूर रहता है तो उसको हम ब्रोकली की खेती, एंटीऑक्सीडेंट में ज़्यादा पाया जाता है और इसकी डिमांड आम गोभी से ज़्यादा रहती है। अगर इसकी बात करें उत्पादन की तो लगभग हमारा इसकी अवधि 70 से 80 दिन की ये फसल होती है। और ये जब हम बात करते हैं कि इसकी प्रजाति कौन से लें तो इस समय अगर आप देखेंगे तो बाल्थम 29 है, ग्रीन स्प्राउटिंग है, मीडिया है और जो संकर प्रजाति है डेस्टिनी है, मैराथन है और फैंटेसी, ये संकर प्रजातियां हैं जो 100 से 110 दिन में तैयार होती है। तो उसके लिए भी एक प्रजाति है पूसा ब्रोकली 1 है, KTS 1 है, पालम विचित्र है और पालम समृद्धि है। ये हमारी ब्रोकली की प्रजाति है और लगभग ये 70 से 75 दिन में 80 दिन में तैयार हो जाती है। उत्पादन की जहां बात करें लगभग 72 से लेकर 75 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन भी मिलता है।
2: डॉक्टर साहब अभी क्या इस महीने में यानी अगस्त भर में जो मध्यम गोभी है उसकी बेहन पड़ सकती है?
3: हाँ, अभी अगस्त में जो मध्यम वाली प्रजाति है उसकी आप नर्सरी डाल सकते हैं।
2: अंतिम समय
3: है, अगस्त के अंतिम समय तक आप डाल सकते हैं। सितंबर 15 सितंबर तक इसको तैयार कर सकते हैं।
2: और सितंबर में अगर डालनी है तो पिछेती प्रजातियों की?
3: हाँ, सितंबर में अगर डालना है किसान भाइयों तो पिछेती जो पूसा स्नोबॉल है, KT1 है, 25 है, ये प्रजातियां जो पिछेती हैं वो डाल, पूसा स्नोबॉल 16 है, ये डाल सकते हैं।
2: पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली और स्प्राउट ब्रुसेल्स की नर्सरी कब तक डाल दें किसान भाई?
3: देखिए किसान भाई, जो गोभी की बात हो रही है तो अंतिम जो लेट वाली प्रजातियां वो डालें, और पत्ता गोभी की अभी आप डाल दें। ब्रोकली की भी बहुत ही उपयुक्त समय है नर्सरी डालने का, सितंबर के प्रथम सप्ताह तक। आप कुछ प्रजातियां 15 सितंबर तक भी

0: की नर्सरी ब्रोकली की डाल सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास है?
0: देखिए किसान भाइयों, चूंकि आप देखते हैं कि हमारा मौसम विपरीत कंडीशन है, कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी बारिश एकदम नहीं होती है, तो वो जब हम नर्सरी डालते हैं तो ये ध्यान दें कि नर्सरी डालने के पहले देख लें कि कभी भी नर्सरी हम खुला जहां रोशनी मिले, और साथ साथ उसमें ऊंचा बेड बना करके यानी 25 से 30 सेंटीमीटर हाइट दे करके, एक नाली दे करके बेड बनाएं। बेड की चौड़ाई हमारी 1 मीटर रखें, लंबाई अगर 3 मीटर और आवश्यकतानुसार 5 मीटर तक लग सकते हैं, फिर एक नाली दें। अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो जो हमारा संकर प्रजातियों 7 से 8 बेड की आवश्यकता होती है, अगर हमारी उस तरह के
1: प्रजाति
0: ओपन प्रजाति है तो 10 से 15 बेड की हमारी आवश्यकता होती है। नर्सरी जब डालें तो किसान भाई ये ध्यान दें, जो 1 मीटर चौड़ा 3 मीटर लंबा है उसमें गुड़ाई कर लें, 5 से 7 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद हो बारीक हो उसमें मिला दें, उसके साथ प्रति बेड 25 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम डीएपी और 25 ग्राम एमओपी प्रति बेड के हिसाब से, और उसके साथ अगर नीम की खली है 200 से 250 ग्राम आप नीम की खली उसमें मिला दें, और मिलाने के बाद उस बेड को एकदम भुरभुरा बना दें। अब बनाने के बाद बेड पे उसमें कैप्टान या थीराम दवा होती है बुगाई के पूर्व 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उस बेड पे छिड़काव कर दें, और उसके बाद बीज की उस पे बुगाई करें।
1: डॉक्टर साहब, कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी रोपाई लायक गोभी वर्गीय सब्जियों की?
0: देखिए किसान भाइयों, जब हम नर्सरी की बात करते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी या ब्रोकली की, तो हमारा करीब 4 से 6 सप्ताह यानी 25 से 30 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, रोपाई में कौन कौन सी बारीकी है और अंतरण क्या होगा?
0: किसान भाइयों, जब मध्यम और पछेती की बात होती है तो उसमें अगर हम लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर हम रखते हैं जो मध्यम और पछेती है, और इसमें ये ध्यान देते हैं कि जब हमारा रोपाई करने के पहले उसकी खेत की तैयारी करते हैं, और खेत की तैयारी में हम देखते हैं कि उसमें खाद एवं उर्वरक कितना दिया जाए, तो जब हम अंतिम जुताई करते हैं तो उस समय हम 100 से लेकर 150 किलोग्राम बर्मी कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद उस खेत में मिला देते हैं। जब रोपाई करना होता है तो लगभग 48 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 32 किलोग्राम फास्फोरस और 24 से लेकर के 32 किलोग्राम पोटास, ये प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस एंड पोटास की पूरी मात्रा जब हम रोपाई करते हैं उसके पहले हम देते हैं।
1: गोभी वर्गीय सब्जियों में कौन कौन सी खास बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है?
0: देखिए किसान भाइयों, गोभी में तमाम तरह के विकृतियां आती हैं जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, उसमें आप देखेंगे एक ब्राउनिंग हो जाती है गोभी में, कभी कभी आप देखते हैं फूल आता है तो ब्राउन हो जाता है, और फूल गोभी में, और उसमें क्या होता है जो डंठल होते हैं उसमें खोखलापन आ जाता है, तो ये बोरान की डिफिशियंसी होती है। अगर हम ये शुरू में जब हम रोपाई करते हैं खेत की तैयारी करते हैं तो 400 से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ में आप बोरान उसमें डाल दें
1: यानी बोरेक्स,
0: बोरेक्स सुहागा जिसको बोलते हैं, और इसके साथ अगर बीमारी उस समय अगर आ रही है तो 0.2 से लेकर 0.3% तक घोल बना करके उसमें छिड़काव करें,
1: यानी 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से
0: 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसमें बोरेक्स का छिड़काव करें। एक आप देखते हैं कि गोभी में बटनिंग आती है, छोटे छोटे गोभी के फूल देखते हैं बटन आकार के हो जाते हैं वो, इसमें क्या होता है किसान भाई, इसमें नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। दूसरा ये होता है कि अगेती की पछेती में बुआई कर दी या पछेती की अगेती में कर दिए, और जब हमारी नर्सरी लेट कंडीशन में हम रोपाई करते हैं तो उस समय ये समस्याएं आती हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 87 550 110 86, 8755011086।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: किसान भाइयों अगर हम बात करते हैं कि गोभी वर्गीय खेती करने के लिए, चाहे वो गांठ गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे ब्रोकली हो, चाहे फूल गोभी हो, अगर आप 1 एकड़ में सही तरीके से खेती करते हैं तो हमारा मान के चलिए 100 से लेकर 100

0: 20 क्विंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन होता है। अगर इसकी लागत की बात करें तो लगभग हमारा 35 से 40 हज़ार तक, 45 हज़ार तक लागत आता है। अगर 10 से 15 रुपये किलो हमारा बिकता है तो हम अगर किसान भाई ठीक से करें तो 1.5 लाख से लेकर के 1,80,000 2 लाख तक आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेंगे।
1: डॉक्टर विनायक प्रताप शाही साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गोभी वर्गीय सब्जियों के उन्नत खेती क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ज्योति बहनी।
3: हाँ विनय भैया।
2: देखो, यह जो आज के अपन हिटवार्ता रहा है, गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती, यह कैसे लगा?
3: बहुत बढ़िया रही भैया, इसके लिए डॉक्टर विनायक प्रताप शाही भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ज्योति बहनी।
3: हाँ विनय भैया।
2: आज कल अगर मचान पर बैठो
3: हाँ।
2: और झमाझम बारिश हो रही हो, मन में जो है मलहारे उठती
3: है। तो मचान पर बैठे की बात कर रहे हो, हम तो भैया सीधा झूला झूले की बात कर रहे हैं।
2: लेकिन झूला हो चाहे मचान हो, जब बरसात होते है तो बरसात में गीत गाने के आनंद कुछ और हो जाता है।
3: ठीक है भैया, तो आज का लेके आए हो फिर?
2: हाँ, आज अपने कार्यक्रम में पंच बहन के खातिर एक लहन मल्हार गीत झमाझम बरसो, और इका गाय रही हैं आराधना राठौर और उनके साथी।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: ज्योति बहनी।
7: हाँ विनय भैया।
6: देखो एक बात और है, कुछ पंच भाई अपने बीच में ऐसे होते हैं जो ऐसी तकनीकें निकालते हैं या कहीं से कोई तकनीक सीख के आवते हैं, ऊपर काम करते हैं, तो बहुत जो खेती उनकी होते है अच्छी होते है और बहुत मुनाफे का सौदा होता है। कई बार लोग कहने लगे खेती घाटे का सौदा हो गया।

0: उनका घाटा ना कम होता है बल्कि कई गुना मुनाफा पैदा करते हैं सामान्य किसानों से।
1: बिल्कुल भैया, ऐसे किसानन का हम लोग नवाचारी किसान कही थे।
0: बिल्कुल कही थे। अब बड़ा मन होता है कि ऐसे किसान से मिला जाए, ऐसे किसान के काम के जानकारी दूसरे पंचम तक पहुंचे। तो देखो यह क्या प्रयास है, आज अपने कार्यक्रम में हाँ किसान हैं भैया विजेंद्र प्रताप सिंह, ई मचान पर करेला के खेती करते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी विधि है भैया।
0: हाँ तो इनसे जाना जाए इनकी क्या तरकीब है, क्या तकनीक है जिनके कारण ये बढ़िया अच्छे किसान माने जाते हैं और अच्छी पैदावार इनकी होती है।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं गोंडा जनपद के बेलसर ब्लॉक के बरसड़ा गांव, जहां प्रगतिशील किसान ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भैया अपने खेत पर हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भैया नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
2: ब्रजेंद्र भैया, आप मचान पर करेला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं।

0: भैया, आप मचान पर करेला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं
1: जी,
0: कि इस साल रकबा कितना है आपका?
1: लगभग करीब 2.5 एकड़ का है।
0: ये पहली बार है या इसके पहले भी आपने मचान पर करेला उत्पादन किया है?
1: इसके पहले गर्मी में खीरा लगा रखा था,
0: जी
1: खीरे की फसल खत्म हो गई, तो उसी मचान और उसी मल्चिंग पे हमने करेले की बुआई कर दी, तो
0: अच्छा,
1: अब उसका भी तुड़ाई चालू हो गया।
0: खरीफ वाले करेले की बुआई आपने कब की?
1: बुआई सर इसकी हुई थी वही जुलाई फर्स्ट वीक में।
0: और
1: जी
0: फलत चालू हो गई।
1: हाँ, फल चालू।
0: तो ये बताएं कि करेला की बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और फलत की तुड़ाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप करेला में?
1: जैसे कि हमने आपसे बताया कि हमने इसमें पहले खीरे की फसल ली थी, उसकी सफाई कर दी खेत की,
0: हाँ
1: और उसमें हमने ग्लाइफोसेट 41% का स्प्रे कर दिया, घास सब जल गई। और उसके बगल खीरे की बुआई हुई थी, उसी के बगल छेद करके हमने करेला बुआ दिया।
0: अच्छा,
1: यानी कि खाद वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ बीज लगा है या फिर अब जो दवा पड़ रही वो लगा है।
0: तो बुआई के बाद जमाव कितने दिन में हो गया?
1: जमाव में 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है, 8 दिन में। फसल
0: उसके बाद फसल की भूख कैसे मिटाते हैं?
1: वही हमारी ये जो वैरायटी है, इनका 211 नंबर है,
0: हाँ,
1: इसकी तुड़ाई 45 दिन पे चालू हो जाती
0: तो इसकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं ये जो नई किस्म है?
1: है। जैसे हमने देखा, जैसे पहले जो करेले लगा रहे थे, थोड़ा साइज उसका बड़ा हो जा रहा था
0: हाँ
1: और रंग थोड़ा हल्का कम उसका ग्रीन था, इसका डार्क ग्रीन है और वजन भी अच्छा है, ठोस रहता है अंदर तक, और फलत 45 दिन पे तो उत्पादन इसका जल्दी मिलने लगता है।
0: और मार्केट में डिमांड अच्छी होगी?
1: मार्केट बहुत अच्छी डिमांड है, इतना यानी खूबसूरत करेला है ये, तो बहुत बढ़िया है।
0: ये बताएं, कुल रकबा आपका 2.5 एकड़ का है,
1: जी,
0: तो कितने दिन पर तुड़ाई कर रहे हैं?
1: अभी तो तुड़ाई मान लीजिए चौथे या पांचवे दिन होती है, तो 7-8 कुंटल निकलना है, लेकिन ये है कि 10 दिन बाद ये करीब 10-11 पहुंच जाएगा।
0: 10-11 कुंतल।
1: हाँ, और भी बढ़ सकता है।
0: फसल की भूख कैसे मिटाते हैं, खुराक क्या देते हैं?
1: खुराक समय समय पर स्प्रे होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का, एनपीके वगैरह का, पेस्टिसाइड कीटनाशक का भी डालना पड़ता है।
0: क्या फर्टिगेशन के माध्यम से?
1: फर्टिगेशन तो वही बस स्प्रे में चलता है, एनपीके है 20-20-0-52-34 है,
0: हाँ,
1: बदल बदल के इन्हीं दोनों को चला रहे हैं। जब ग्रोथ की जरूरत होती है तो 20-20-20 चला देते हैं,
0: हाँ
1: और जब जैसे उत्पादन लेना हो तो 0-52-34 है, प्लस और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं।
0: कुछ समस्याएं
1: जी
0: आती होंगी हानिकारक कीट और बीमारियों
1: हाँ
0: की?
1: हाँ समस्या इस समय जैसे इधर बेल वाली जो है फसलें, कुकरविट्स, इसमें डाउनी मिल्ड्यू और थोड़ा वायरस का ज्यादा रहता है,
0: जी
1: कोड़ जिसको बोलते हैं देसी भाषा में,
0: हाँ,
1: इसकी दवा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
0: तो इसका प्रबंधन कैसे करते हैं?
1: इसमें बदल बदल के दवा डाला जाता है,
0: कुछ आईपीएम के उपाय भी अपनाते हैं?
1: इसको फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, वो स्टिक आती है चिपकाने वाली, सफेद भुनगे और इसके काले के मच्छर के लिए, पीला
0: हाँ,
1: और नीला कार्ड वो भी लगाया जाता है।
0: आगे कौन कौन देखभाल करेंगे आप जो मचान पर करेला चढ़ाए हैं?
1: अब जैसे शिमला मिर्च की नर्सरी पड़ी हुई है, उसको लगाना है 1 एकड़,
0: हाँ,
1: अब ये चालू हो गया तो टूटेगा पूरी बरसात।
0: करेला पूरे बरसात भर आपको मिलेगा, कब तक उम्मीद है?
1: अब जितना मेंटेनेंस के ऊपर है, जितना दवा पानी पड़ जाए कायदे से, टूटेगा, अभी तो चालू हुआ है, ये पूरा चलेगा मुझे लग रहा है नवंबर तक।
0: एकड़ पीछे अगर लागत की बात करें तो मचान पर करेला
1: लागत
0: उत्पादन में कितनी लागत गिरती है, उत्पादन का आंकड़ा क्या है और आपका मुनाफा होगा कितना?
1: इससे की लागत तो बहुत ज्यादा नहीं है, दवा जो पड़ रही है या लेबर चार्ज लग रहा है, मैंने बताया नहीं मल्चिंग और तार बांस वो सब उसी वाला लग गया है, उसी पे हमने ले लिया इसको, तो लागत तो बहुत ज्यादा नहीं आएगी। लागत तो बीज का और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट और स्प्रे फंगीसाइड इंसेक्टीसाइड का मिला के मुझे लग रहा है कि करीब 20,000 रुपये एकड़ लगेगा।
0: और उत्पादन कितना तक उम्मीद है?
1: उत्पादन अगर मेरा जैसे करेला मीडियम टूट जाए तो एकड़ में मान के चलिए 150 कुंटल तक टूट जाएगा।
0: और बाजार भाव कैसा मिल रहा है इस समय?
1: बाजार ठीक है अभी तो, 32 रुपए, 30 रुपए, 32, एक दिन 35 में भी बिका था।
0: हाँ,
1: 30 से नीचे नहीं रहेगा, मैंने बताया नहीं, कलर और साइज बहुत प्यारा है इसका।
0: तो क्या उम्मीद लगाए हैं कि एकड़ में कितना निकाल लेंगे?
1: देखिए सब्जी में एक बार मैंने आपसे और भी कहा, भाव राजा होता है,
0: जी
1: लागत अभी 2-3 तुड़ाई में अपनी निकली आएगी, उसके बाद जो निकल जाए मजदूरी काट के अपना मुनाफा ही है।
0: जो आपका अब तक का तजुर्बा है मचान पर करेला उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: देखिए अब फसल परिवर्तन के लिए भी हमने आपको बताया।

0: जैसे हमने पहले इसमें लगाई नवंबर में मटर, मटर के बाद हमने मचान पे लगा दिया खीरा,
1: जी
0: खीरा अपना जून में खत्म हो गया, उसके बाद करेला लग गया, पूरी बरसात चलेगा।
1: यानी रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं आप।
0: हाँ, तो जैसे जो बीच में मटर की खेती हो जाती है
1: जी
0: उससे रिलैक्स मिल जाता है खेत को।
1: ताकत मिल जाती है।
0: हाँ, ताकत मिल जाती। दलहनी का एक बीच में लेना बहुत आवश्यक है, 12 महीने में एक बार कोई भी खेत हो उसमें दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। ये कर रहे हैं तो मटर वगैरह या बीन्स है, या बोलते हैं आप ये लोबिया भी बो सकते हैं। अगर जैसे आप ग्रेन कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत ऑप्शन है आपके पास।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है सब्जी
0: जी
1: उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: यही बताना है कि फसल परिवर्तन, फसल चक्र बहुत आवश्यक है। एक बार जिसमें इसमें साल में एक बार गोबर की खाद भी पड़ेगी, एकड़ में 10 ट्रॉली गोबर की खाद में जरूर डालता हूँ, कि बहुत हेल्थी रहे, कमजोर ना होने पाए।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हाँ, मोबाइल नंबर बोले दे रहा हूँ, 97-94-44-72-59, 9794-44-72-59, 97-94-44-72-59, 9794-44-72-59।
1: ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बात हुई। आप 2.5 एकड़ मचान पर करेला उत्पादन कर रहे हैं, और जो भी आपका तजुर्बा था उसको आपने बताया, और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ज्योति बहनी ऐसा करो कि पंचमहल के मौसम की जानकारी जरूर दो।
4: बिल्कुल भैया, तो आज देखो भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ से जो हमका जानकारी मिली उसके अनुसार आज दिनांक 27/8/2026 का वर्षा का पूर्वानुमान है पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। जो है संभाग में स्थानन पर वर्षा जो है गरज चमक के साथ बौछारे पड़े की संभावना है भैया।
3: मतलब कहीं हल्की कहीं मध्यम वर्षा हो सकत है।
4: हाँ भैया।
3: और देखो हम पंच प्रयास गए थे कि अपने पंचम तक का नई नई जानकारी पहुंचे, नई नई बातें पहुंचे और खास करके जो पंच भाई सुनत हैं उनकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचे।
4: बिल्कुल,
3: इसके लिए जरूरी है कि अपने कार्यक्रम का पता पंचमहल का जरूर बतावा जाए।
4: बिल्कुल भैया, तो पता बता दियो आप।
3: हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। अगर हमका ईमेल करें तो ओहू का पता हम अपने पंचमहल का बता दी। हमारा ईमेल आईडी है farmandhomeairlko@gmail.com। इस पर आप हमका मेल भी कर सकते हो, अपनी प्रतिक्रिया अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हो। हमका इंतजार रही आपकी प्रतिक्रिया क्या। और ज्योति बहनी,
4: हाँ विनय भैया,
3: देखो अब अपने आज के कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो सब पंचन से लीन जाए आज्ञा।
4: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से किया खेलो इंडिया संवाद, कहा सरकार आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 107 स्टार्टअप्स और 9 इंक्यूबेटर्स को सौंपी प्रोत्साहन राशि, कहा प्रदेश के पास है दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली ऊर्जावान युवा वर्कफोर्स। नेपाल की आपदा में फंसे राज्य के नागरिकों को निकालने के लिए राहत और बचाव का कार्य तेज, SDRF और PAC की टीमें मौके पर पहुंची। और कानपुर में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में पायलट सहित 2 की मौत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल व विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
2: ये कार्यक्रम देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया था। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के 9 अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के अलावा प्रदेश के सभी 75 जिलों में 150 से अधिक केंद्रों पर इसका आयोजन किया गया। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद उपस्थित युवाओं से संवाद किया और उन्हें खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का ये प्रयास रहा है कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिले।
3: बीते 12 वर्षों में सरकार का निरंतर यही प्रयास रहा है कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक लोग इस देश के अंदर खेल सकें, विशेष तौर से युवा, जिसकी सबसे बड़ी आबादी आज हमारे देश में है। और

0: 2047 का विकसित भारत बनाने का सपना हम उसी युवा सामर्थ्य के बल पर देख रहे हैं।
1: आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नए उद्बोधन में कहा कि खेलो इंडिया भी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था और अब खेल का विजन उन्होंने इस बार 15 अगस्त को बताया है और 2036 में एक प्रबल दावेदारी मेजबानी के लिए ओलंपिक के लिए की जाएगी और उसके लिए 36,000 करोड़ का स्पोर्ट्स का बजट रखा है।
1: उधर बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि वर्ष 2047 के विकसित भारत में युवा ही अहम भूमिका निभाएंगे।
3: देश के युवा आज ये तय करेंगे कि विकसित भारत का संकल्प जो 2047 का है ये युवाओं के कंधे पर ज्यादा है, युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है।
1: सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये प्रयास देश के युवाओं में खेलों के प्रति नई ऊर्जा और विश्वास पैदा करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली ऊर्जावान युवा वर्कफोर्स यूपी में है, इन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना सरकार का काम है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को 3 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक और 9 इंक्यूबेटर्स को 1 करोड़ 79 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करने के उपरांत युवा उद्यमियों और उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था वाला राज्य है।
4: हमने अपने प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में यूपी की इकोनॉमी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को उनकी भागीदारी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, बड़े उद्योगों को जिनकी संख्या मात्र 12,000 थी आज हम उसको लगभग 3 गुना करने में सफलता हमने प्राप्त की है। ये है नया यूपी जो अब पीछे हटने वाला नहीं, तेजी के साथ देश की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह कल से 30 अगस्त तक 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि 29 अगस्त को रक्षा मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और 30 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे या सहायता चाहने वालों के लिए हेल्पलाइन 1070 शुरू की है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। नेपाल में फंसे प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार ने राहत बचाव टीमों को सक्रिय किया है। बचाव अभियान के लिए एसडीआरएफ की एक प्लाटून भेजी गई है। इसके अलावा पीएसी की 26वीं बटालियन के 22 जवानों को भी नेपाल भेजा गया है। राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम से सीमावर्ती जिलों के हालात पर नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय और नेपाली दूतावासों से भी संपर्क किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तैयार रहने और गंडक तथा नारायणी नदियों में जल स्तर की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। उधर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में हैं।
5: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा

0: एक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: कानपुर में आज गंगा नदी के किनारे एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक प्रशिक्षक और एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। दो इंजन से युक्त चार सीटों वाला ये विमान गर्ग एविएशन का था जो कानपुर के सिविल हवाई अड्डे से एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित करता है। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर रघुवीर लाल ने बताया कि एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल को सुरक्षित कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। घटना की सूचना डीजीसीए को दे दी गई है। तकनीकी और अन्य विस्तृत जांच डीजीसीए की टीम द्वारा की जाएगी। प्रदेश भर में कल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पर्व को लेकर बाजारों में रौनक है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। महिला यात्री आज से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और नगरीय बसों में एक सहयात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से किया खेलो इंडिया संवाद। कहा सरकार आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 107 स्टार्टअप्स और 9 इंक्यूबेटर्स को सौंपी प्रोत्साहन राशि। कहा प्रदेश के पास है दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली ऊर्जावान युवा वर्कफोर्स। नेपाल की आपदा में फंसे राज्य के नागरिकों को निकालने के लिए राहत और बचाव का कार्य तेज। एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें मौके पर पहुंची। और कानपुर में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में पायलट सहित दो की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले हैं उनके नाम हैं लाल माता सुदामा नगर रडलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर, प्रेमेश्वर, मीनाक्षी काना, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं मन भावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और फुनिदी भाई भागरी। गांव गोपी की नगरिया से मिठ्ठलाल सारस्वत, नेहा नीरज ने के तौर के माता पिता। ये संदेश हमें भेजा है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, असद अरहम हाशमी और मोहम्मद आलम हाशमी ने। जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत साहू और निशांत साहू। राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश नरवाड़े। रसीड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू। सादौल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा।

सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन, पंचकूला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, गांव नगलापुला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुग्गू और इनके परिवारीजन, गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, लाखन, सूरज, रोहित, चंचल, संजना और इनके माता पिता, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, अमित, शुभांश, शुभांगी, चुन्ना और इनके माता पिता, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, राहट गांव कंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा और रामेकर परिवार के सभी सदस्य, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आइए सुनते हैं आप सबके लिए कुमार सानू, किशोर कुमार और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है कामचोर, संगीत निर्देशक हैं राजेश रोशन।

कामचोर फिल्म का गीत अभी आपने किशोर कुमार और अलका याग्निक के स्वर में सुना। अब जो हमें संदेश मिले हैं उनके नाम हैं सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजीनगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, सोहम, सदानंद विराज, अंशुमन और बेबी ओबी। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, करण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता। शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, मास्टर अनवर, लुभना अंसारी और आलिया अंसारी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, रजमत वर्मा, मुरली, नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलो भर फातमा। आइए सुनते हैं आप सबके लिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम जुनून, गीत संतोष आनंद का, संगीत निर्देशक नदीम श्रवण।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में जुनून फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और अब आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज़ को। फिल्म है हमारा खानदान, गीत फारूक कैसर का है, संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें जो संदेश मिल रहे हैं उनके नाम हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, ग्राम बठेना पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल रेशमा और राजेश साहू, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधा यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे और बसंतरा भोजने, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण श्रीनिका और श्रीनिजा, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहाउद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, साइमीरा अजमीन गुड़िया, रघुनाथपुरा जलश्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और उनके परिवारीजन, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, परिधि मायरा सुरेशे और उनके परिवारीजन, शिरगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले और लोकेश एस काले। आइए सुनते हैं आप सबके लिए ये गीत।

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ

0: के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी। उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

ये थे लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह, फिल्म थी बॉबी, गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत परेलाल। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले।

आप हैं। ऊपर कोट भोला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान अब्बासी और उनके परिवार के सभी सदस्य।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ब्रजभूमि फिल्म का गीत अभी आपने चंद्राणी मुखर्जी और सुशील कुमार के स्वर में सुना। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। और आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज़ में गीत फिल्म है निगाहें। गीतकार आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये थे कुमार सानू और रूप कुमार राठौर। फिल्म थी नाजायज़। संगीत निर्देशक थे अनु मलिक। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है दाग। पहले सुनिए इस फिल्म में लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को।

ये थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर। अब आइए सुनते हैं इसी फिल्म में किशोर कुमार की आवाज में गाया ये गीत।

ये थे लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम और साथी। इसी के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी दाग। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा
1: महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9-1-1-1-2-3-0-8-8-7-1-8 और 9-1-1-1-2-3-0-8-8-7-1-9 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9-1-9-9-6-8-2-9-1-9-8-8 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9-7-7-9-8-5-1-3-1-6-8-0-7-9-7-7-9-0-9-1-0-7-5-0-0 और 9-7-7-9-8-1-0-3-2-6-1-1-7 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
3: बिहार जल संसाधन विभाग

0: के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
1: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
0: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
4: Discussions are expected.
5: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसमें व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
2: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
6: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
2: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
7: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय

0: हो अपना न हो।
1: हमारा धर्म हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं है तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
2: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
3: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
2: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
2: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
5: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
6: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
2: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लेन क्रिंक्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 300

FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने।

कथा संघ निर्देशक थे स्वर्गीय मदन मोहन। और अब सुनते हैं समीर की शब्द रचना, संगीत निर्देशक नदीम श्रवण, गायक स्वर कुमार सानू के, फिल्म का नाम आशिकी।

ये थे उदित नारायण और साथी। फिल्म थी डर, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे शिव हरी। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: रोशन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: रोशन जी, सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि, इसे हम सांस्कृतिक उपलब्धि भी कह सकते हैं, साथ ही इसका सभ्यतागत और कूटनीतिक महत्व भी है, खासतौर पे ऐसे समय में जब भारत बौद्ध देशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो एक नई उपलब्धि हमारे पास आई है, तो सारनाथ इस पूरी रणनीति में एक महत्वपूर्ण सेतु बन सकता है?
2: बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी धरोहर हैं, लगभग 45 हैं जो यूनेस्को की सूची में आए हैं, और सारनाथ का यूनेस्को की सूची में आना बहुत बड़ी गर्व की बात है। वो इसलिए है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत ही भारत से हुई थी, और भारत से शुरू होकर ये जापान तक गया। आज लगभग दुनिया की 7% आबादी ऐसी है जो बौद्ध धर्म को मानती है, और भारत को सारा क्रेडिट इसलिए जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म भले ही लुम्बिनी में हुआ हो, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ, उनका निर्वाण भी कुशीनगर में हुआ, और जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में उन्होंने दिया। तो इस तरह से भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि जहां से भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की, अपनी धर्म की यात्रा, अपने उपदेशों की यात्रा उन्होंने शुरू की, वो यात्रा आज पूरी दुनिया में फैल गई है। तो इसलिए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने कूटनीतिक तौर पर कहा, तो इस कारण जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं और जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसके कारण पूरी दुनिया में और खासकर जो बौद्ध देश हैं
1: जी,
2: उनमें जो भारत की सम्मान है, अभी आपने देखा कि जापान के जो पूरा एक प्रतिनिधिमंडल आया था, जापान का एक गवर्नर और उनके साथ जो लोग आए थे, उन्होंने पूरा फोकस ही बौद्ध सर्किट जो है उन पर किया था। तो वो भी चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, जहां जहां बौद्ध हमारे स्तूप हैं, जो बौद्ध सर्किट हैं, वहां आए और उसका प्रचार करें आगे। तो ये कूटनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: जी रोशन जी, सारनाथ वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और अब जाकर के इसे यूनेस्को की वैश्विक मान्यता मिली है। और हम ये भी देखते हैं कि भारत को बौद्ध दर्शन उसकी मूलभूमि के रूप में दुनिया के सामने हमेशा हम प्रस्तुत करते हैं, और ये भी देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी अहिंसा और शांति की बात होती है तो हम इन भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो जो हमारा मूल दर्शन रहा है आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, उसका कितना महत्व है आज के समय में?
2: देखिए, आज तो बहुत ही अधिक है, इसलिए है कि सारी दुनिया में जिस तरह से एक कंपटीशन चला हुआ है, एक उपभोक्तावाद जो चल रहा है, अभी हमने देखा कि पश्चिम में किस तरह से युद्ध की स्थिति है। तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो संदेश है कि अहिंसा होनी चाहिए, उसी अहिंसा के लिए हमारे जितने भी हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो अहिंसा की बात करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ही अहिंसा का हमें पाठ पढ़ाया है, और उसी अहिंसा के बल पर हम लोग जगह जगह जाकर उसकी वकालत भी करते हैं। और यूनेस्को ने जो अभी हमारी सारनाथ को जो यूनेस्को की लिस्ट में डाला है, उससे इस बल, इसको जो अहिंसा का है, उसको ज्यादा बल मिलता है कि सारी दुनिया अहिंसा की तरफ आए।
1: रोशन जी, भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो अब वो 45 हो गई, और हमारा देश वैश्विक स्तर पर 6 स्थान पर आ चुका है, जिसमें इटली सबसे ऊपर आता है। तो संख्या बढ़ना भारत के लिए कितना मायने रखता है, और फिर हमारे सामने एक ये भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उसका संरक्षण बेहतर ढंग से करें, प्रबंधन अच्छा करें, ताकि और भी ज्यादा पर्यटक उसकी ओर आकर्षित हों।
2: हमारा इतिहास आप देखिएगा, वेद काल से लेकर और वर्तमान तक हमारे भारत देश ने अनेक इतिहास देखे, और जब जब जो जो इतिहास ने जब जब करवट ली है, वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी भी कोने पर एक सांस्कृतिक छाप छोड़ी है। आप महाभारत कालीन देखिए, रामायण कालीन देखिए, बौद्ध के समय के देखिए, आप वैदिक काल के समय के देखिए, तो जितनी हमारी साइट हैं, जितनी हमारी सभ्यताएं हैं, वो सब धीरे धीरे निकल रही हैं। तो जो अभी तक 45 साइट तो हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा न जाने कितनी हैं जिन पर अभी ध्यान नहीं गया है, या जिनकी शुरुआती तौर पर अभी खनन चल रहा है। जब ये खनन हर जगह धीरे धीरे जब ये सरफेस पर आएंगी, तो फिर इन साइटों की संख्या बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इटली तो बहुत छोटा एक देश है
1: जी,
2: न जाने हमारे देश में कितनी ज्यादा साइट है जो अभी फोकस नहीं आई है। अभी जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो भी कोशिश कर रहा है कि जो छोटी साइट है, अगर उनका उत्खनन सही करे और उनके बारे में अगर इतिहास में सही हमें जानकारी मिल जाए, तो वो फिर दावा करेंगे, फिर यूनेस्को में फिर हमारी लिस्ट जाएगी, और ये संख्या मुझे लगता है कि बढ़ती ही जाएगी। अभी तो 45 हुई है, ये और ज्यादा बढ़ने वाली है।

0: अभी आप जो दावा करने की बात कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि सारनाथ की यूनेस्को मान्यता की प्रक्रिया 1998 की अस्थाई सूची से शुरू हुई थी और जो 2026 में जाकर पूरी हुई है। ऑलमोस्ट 3 दशकों की ये यात्रा रही है, तो क्या यूनेस्को की प्रक्रिया इतनी जटिल है या इतनी लंबी है कि किसी भी स्थल की वास्तविक, ऐतिहासिक और सार्वभौमिक महत्ता को प्रमाणित करने में समय लगता है?
1: मुझे लगता है कि ये तकनीकी है, क्योंकि 1998 में अस्थायी मान्यता तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जब उनकी टीमें आती हैं, क्योंकि ये 196 देशों का संगठन है और उसका कोरम भी होना जरूरी है, तो 196 देशों को तैयार करना, उनको मनाना, उनके सामने ऐसे प्रमाण देना, फिर वहां से टीमें आती हैं, जब टीम आती है उसके बाद वो अपने सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद उनको तसल्ली हो जाती है कि हाँ ऐसी साइट और कहीं नहीं है और इससे बेहतरीन नहीं है, तब वो उसको मान्यता देते हैं। और मान्यता के देने के साथ फिर एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जिस देश में ये यूनेस्को ने मान्यता दी है उस साइट का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वहां एमिनिटीज कैसी होनी चाहिए और जब वहां पर्यटक आए तो पर्यटकों के लिए सुविधा कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। फिर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो वहां की म्युनिसिपैलिटी, उसका भी एक रोल हो जाता है कि हम उस साइट को इतना सुंदर बना दें कि जब भी कोई आए तो ये कहे हाँ ये यूनेस्को साइट है, तो यूनेस्को के स्तर की होनी चाहिए।
0: रोशन जी, यूनेस्को के मानदंडों में सारनाथ के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से उसके प्रत्यक्ष संबंध को भी महत्वपूर्ण माना गया है, तो भारत की अपनी ये जो विरासत है दुनिया के सामने रख रहा है भारत, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दर्शन की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, मानव सभ्यता की भी बात करते हैं, भगवान बुद्ध की जितने भी शिक्षाएं रही हो, उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में लोगों को उपदेश दिए, जब वो सामान्य जन तक पहुंचाते हैं, तो भारत की अगर भूमिका की मैं बात करूं आपसे, किस तरह से भारत इस भूमिका को निभा रहा है?
1: देखिए, जो भारत की पारंपरिक तौर पर हम देखें तो हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के साथ साथ हम सबका सम्मान करते हैं, हम कहते हैं कि जो भी हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहे, हम सब समान हैं। और वही भगवान बुद्ध ने यही हमें सिखाया, उनका जो पहला उपदेश था कि जो दुख हैं, दुखों के बारे में उन्होंने चार उपदेश दिए थे, और वो अगर कोई उन चार उपदेशों को मान ले, दुख को मान ले, तो मुझे लगता है कि आधे दुख तो वैसे दूर हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सम्यक की बात की, 8 सम्यक में उन्होंने कहा, तो अगर आप 8 सम्यक को एडॉप्ट कर लेते हैं, उनको आत्मसात कर लेते हैं, तो आपके दुख तो सारे दूर हो जाते हैं। तो वही चीज, वही हैं, हम उन्हीं उपदेशों को लेकर हम अपने जीवन में हमने आत्मसात कर लिया है, और जो भगवान बौद्ध को मानते हैं, जो बौद्ध देश है, वो तो इस बात को एडॉप्ट करते ही हैं, लेकिन अब इसको प्रचार करने की जरूरत है कि पश्चिमी देशों में, क्योंकि पश्चिमी देश अभी भी ऐसे हैं जो कि उपभोक्तावादी हैं और वो भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं उन पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हमारा, भारत की बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से शुरुआत हुआ, लेकिन जो बड़े देश हैं, चीन है, जापान है, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, वो ज्यादा, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो भगवान बुद्ध के उपदेशों को लेकर पश्चिम तक जरूर जाएं।
0: रोशन जी, अब मतलब सारनाथ से पहले लुम्बिनी बोधगया भी यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं, ये ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो लोगों के लिए बड़े मायने रखते हैं, लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, तो इन स्थलों को जोड़ करके क्या एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सर्किट विकसित करने की आवश्यकता है जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी एक नई दिशा दे?
1: देखिए, भारत सरकार इसमें इस तरफ काम कर रही है, बौद्ध सर्किट के लिए अभी भी है, लेकिन इसको और ज्यादा करने की जरूरत है। जो नेपाल में लुम्बिनी और उसके बाद बिहार में बौद्ध गया और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और सारनाथ में उत्तर प्रदेश, कुशीनगर और जो सारनाथ है वो लगभग आसपास है, तो यहाँ बौद्ध सर्किट बनाने की बात है और चल भी रही है। जिस तरह से कि भारत सरकार ने रामायण सर्किट बनाया कि नेपाल से लेकर और भगवान राम के जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां तक, तो रामायण सर्किट है, तो उसी तरह से बौद्ध सर्किट भी है। मुझे लगता है कि इस पर अगर और फोकस किया जाए, अब तो और भी हमारी जरूरत हो गई है, क्योंकि अब सारनाथ को जब यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है तो हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है, ताकि जो दुनिया का धार्मिक पर्यटन है वो पर्यटक और हमारे देश में आए और भगवान बुद्ध के उपदेश सीखें, और पर्यटन का जब लाभ होता है तो आर्थिक तौर पर भी लाभ होता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है इससे।
0: अगर हम सरकार के प्रयासों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर बड़ा जोर दिया है। श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि मार्च 2026 तक 1,19,00,000 से अधिक पांडुलिपियों की सूचना मिलने की बात कही गई है, तो ये जो डिजिटल संरक्षण किया जा रहा है, इससे आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जो ज्ञान की परंपरा है उन तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो मूल उनकी जानकारी थी, मूल जो सूचनाएं थी, मूल आदर्श हो या जो भी महत्वपूर्ण बातें रही उन तक पहुंचाने के लिए?
1: देखिए, जितनी हमारी सभ्यताएं मिली उनमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनकी भाषा, उनकी जो लिपि थी उनको पहचानना। तो लिपि को पहचानने में कई साल लगे और अभी भी हमने पूरी तरह से लिपियों को नहीं हम ढूंढ पाए। बौद्ध धर्म की जो लिपि है

0: पाली, पाली को भी पूरी तरह से नहीं उसका हम खोज पाए हैं, लेकिन अभी तक जितना खोज पाए हैं उसके अनुसार से वो उपदेश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पांडुलिपि जहां जहां मिल रहे हैं और जहां जहां मिलेंगे, मुझे लगता है कि केवल ये जानकारी नहीं है, जो हमारा वर्तमान है और जो भविष्य की नीतियां बनेगी वो भी उस आधार पर बननी चाहिए, जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान पीढ़ी है और हम आने वाली पीढ़ी है, वो हमारे जो पुरातन है उससे सीखें। और इसलिए उन पांडुलिपियों के लिए सरकार ने ये मिशन चलाया है कि जो लिपियां जहां मिले उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनका डिजिटलीकरण किया जाए और सबसे पहले कि उसका दस्तावेज बनाया जाए।
1: रोशन जी, एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 के तहत निजी क्षेत्र, CSR और अन्य संस्थाओं को विरासत संरक्षण से जोड़ा जा रहा है, तो एक ये महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। आपके विचार में क्या निजी भागीदारी से स्मारकों की सुविधाएं और प्रबंधन बेहतर हो सकता है या फिर इसमें चीजों को और बढ़ावा देने की जरूरत है?
0: मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये बहुत ही अच्छा कदम है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी CSR के तहत या कोई NGO अगर आना चाहता है तो हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इन स्मारकों के आसपास आप साफ सफाई कर सकते हैं, आप यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं, आप यहाँ सौंदर्यकरण कर सकते हैं, उनके जो पार्क है उनको मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सारा काम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो इतना पैसा, इतना धन कहाँ से आएगा? तो इसलिए निजी क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है और उनके पास चूंकि CSR का पैसा होता है तो उसका अपना एक खर्चा वो वहां डालें और जो हमारी साइट है वो सुंदर भी बनेंगे और जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें और लोगों को शामिल करने की जरूरत है।
1: व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल या कॉलेज या कोई भी इस तरह का संस्थान वहां पर जाकर बात कर सकता है कि हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं, आपकी यहां पर हम ये करना चाहते हैं। सौंदर्यीकरण एक अच्छा कार्य होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस इस काम को प्रमोट करते हैं।
0: हमारे पास NCC है, हमारे पास NSS है, इसके तहत भी हो सकता है। वैसे भी आप जाते हैं आसपास शहरों में या कहीं गांव में सफाई करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी अगर किसी इमारत जो स्मारक है उस स्मारक को साफ सुथरा करने में अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि वो भी एक नवाचार होगा। तो जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा लगा सकता है, कंपनियां हैं वो अपना पैसा लगा सकती हैं और जो इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, आपने देखा बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है वो सुबह सुबह जाके सफाई करते हैं,
1: जी,
0: कहीं
1: जी।
0: उन्होंने कचरा देखा उसको उठा लिया, तो ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं जो RWA है, उनको भी शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर गवर्नमेंट का जो सारा बर्डन, जो सारा बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है वो कम से कम बंट जाएगा।
1: रोशन जी, 2014 के बाद की मैं बात कर रहा हूं तो भारत लगभग कुल 669 पुरावशेष वापस ला चुका है, तो ये भी माना जाता है कि जो चीजें भारत से बाहर चली गई, जिन्हें चोरी किया गया या फिर किसी और तरीके से ले जाया गया, उन्हें वापस लाया जा रहा है, तो ये भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विरासत के दावे को मजबूत करने की एक कूटनीतिक उपलब्धि है, तो सरकार के इन प्रयासों को आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, जो कि हमारी विरासत बहुत ही समृद्ध है और इस विरासत में हमने देखा है कि हम जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था तो विदेशों से आके बहुत सारे लोगों ने यहाँ के मूर्तियां हैं, यहाँ की जो विरासत है उसकी चोरी की या उसको ले गए। तो भारत सरकार ने जब कोशिश की कि कैसे अपनी विरासत को वापस लाया जाए, और अभी जैसे आपने बताया कि करीबन 650 से ज्यादा हम ला चुके हैं, तो दो तरह से हुआ। एक तो हम अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को वापस लाने में सफल हुए और दूसरा हमारा कूटनीतिक प्रयास भी तो है कि भारत सरकार ने दूसरी सरकार से जिस देश में वो है वहां से संपर्क किया, दोनों के बीच एक संपर्क जब स्थापित हुआ और वो माने और उन्होंने दिया। क्योंकि बहुत सारे देशों ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि हम नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो 3000 साल पुराने, 4000 साल पुराने, 1000 साल पुरानी चीजें हैं, मूर्तियां हैं, तो उनका एक अपना महत्व है। तो उस महत्व को अगर हम वापस अपने देश लेके आ रहे हैं तो हम अपने जो हमारे पीढ़ियां हैं, नई नई पीढ़ियां, उनको भी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये चीजें हमारी विरासत इतनी समृद्ध थी।
1: रोशन जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा और इसका उत्तर आप बड़ा संक्षेप में मुझे दें कि भारत ने बौद्ध विरासत के जो पवित्र अवशेष हैं ये विभिन्न देशों में ले जाकर के वहां लोगों को दर्शन के लिए उपलब्ध कराए हैं, ये एक बड़ी अच्छी मुझे पहल लगती है, आप इस पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, मुझे लगता है कि आपने धर्म का प्रचार करना है, अपने भगवान बुद्ध के देशों का प्रचार करना है, तो आपने भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष उनको लेकर आपको जाना पड़ेगा, तभी तो लोग समझेंगे इसमें ये क्या चीज है, कौन है, उनके बारे में सीखेंगे और तब उस धर्म का प्रचार हो गया, उनके उपदेशों का, खासकर जो अहिंसा के बारे में उन्होंने बातें कही हैं, तो उसका प्रचार होगा। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल।
1: रोशन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत, सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। कंट्री वाइड

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं रासलीला के अंतर्गत गौरांग लीला। आलेख स्वामी श्री राम शर्मा का है, प्रस्तुत करता है नरेश मल्होत्रा।

सुंदर निमाई, की सुंदर नृत्य, की सुंदर गान, निछोनी जाई निछोनी। अरे भैया निमाई, तू तो बड़ो सुंदर नाच गा रहे हो है, कहा तू

0: संग मुकू नहीं नचावेगो।
1: अरे भैया, यदि तुम सब मेरी संग मिलके नाचोगे गाओगे तो तुमको पाठशाला जाएबे को बहुत ही विलंब है जाएगो और तुम्हारे गुरुदेव तुमको पीटेंगे।
0: अरे भैया निमाई, हमारे गुरुदेव यदि हमको पीटेंगे तो पिट लेंगे, परंतु तेरे संग नाच गाय तो लेंगे।
1: अच्छा भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा, बोलो हरी।

0: भट्टाचार्य मोसाय।
1: हाँ कहो सायत रतन जी।
0: कितनो मन मोहक है यह मिश्र नंदन निमाई, या को यह रूप, यह रंग, यह अंग, यह ढंग, यह बोल, यह चाल, यह सौंदर्य, यह माधुर, सब मधुर मधुर मधुरात मधुर है। आहा, यह निमाई कहा है स्वर्ग को कुसुम है, कोई गंधर्व बालक है।
1: हाँ सहित रतन जी,
0: हाँ
1: आप जो कह रहे हो वो सत्य कह रहे हो, और या समय तो या शोभा को प्राप्त है रहे हो ये बालक कि चारों ओर ग्वाल वाल और ये मध्य में नंदलाल।
0: हाँ अथवा तो चारों ओर तारागण और मध्य में चंद्रमा, मानो तो चंद्रमा ही भूतल पे उतर के या निमाई के रूप में नृत्य कर रहे हो और रसामृत बरसा रहे हो।
1: हाँ सहत रतन जी, जब कभू आते जाते मार्ग में यह निमाई मोकू मिल जाए है तो मैं तो एकटक या बालक को देख तो ही रह जाऊं हूँ और मंत्र मुग्ध सो है के या बालक को ही निहार तो रहूं हूँ, या मैं मेरे नैन मन आत्मा प्राण सब डूब जाए हैं और ऐसो लगे है कि मैं स्वप्न सो जाग उठ्यो हूँ और देखूं तो सामने यह निमाई नाच रहे हो है और गाय रहे हो।
0: और भट्टाचार्य जी, हमारे हूँ मोहल्ला भर में यही बालक की चर्चा है, कहा बाल, कहा वृद्ध, कहा स्त्री, कहा पुरुष, सवन को यह निमाई अत्यंत प्रिय लगे है। स्त्री तो घर के काम धंधेन को

0: छोड़ छोड़ के या के मुख की चकोरी बनी फिरे हैं, और बालक हु सब कछु भूल के भौरान की भांति या गौर कमल के संग नाचते डोले हैं।
1: और आप जैसे भट्टाचार्य साहित्याचार्य जैसे महामहोदय गण एक बालक को मुख देखने में ही वा बैकुंठ के दिव्य सुख को उपभोग कर रहे हो, क्यों?
0: और आप यहाँ काहे को ठाड़े हो, कहा देख रहे हो?
1: साहित्याचार्य जी, मैं देख रहे हूं आपके भंग के रंग की तरंग को, आप जैसे विद्वत पुरुषन को ऊपर को खोल ही ढीलो पड़ गयो है। मनुआ राम तो वैसे के वैसे रंग रंगीले छैल छवीले बने भए हैं, रूप रंग की दुनिया को स्वाद अब ही छूट्यो नहीं है। यदि ऐसो है तो जाओ नाचो गाओ लूटो आनंद, यहाँ ठाड़े ठाड़े हाथन को क्यों मल रहे हो, होटन को क्यों चाट रहे हो?
0: न्याय बागीश जी, ऐसो कहे हैं कि एक तो हरि को नाम स्वतः ही परम मधुर मनोहर है, ताहू पे यदि पांच जने मिलके मधुर स्वरसों गावे तो औरहू मधुर मनोहर लगे है, और ताहू पे यदि मधुर स्वर वाले बालक गावे तो औरहू अधिक मधुर लगे है, और फिर यदि बालकन के सहित स्वयं गौरचंद्र गावे तो वह तो मधुर मधुर मधुरात मधुर बन जाए है। यासो न्याय बागीश जी, अब चाहे तुम तानो मारो या मेरी हांसी उड़ाओ, परंतु मेरो मन तो अब मचल रहो है, बालक बनवे के ताई मचल रहो है, हाथ उठाए के नाचवे गायवे के ताई मचल रहो है, और अब तो बस हा हा हा।
2: हरी बोल।

0: भावुकता, 16 आना भावुकता, मन भर भावुकता, साहित्याचार्य जो ठहरे, दिन रात काव्य अलंकार, नायक नायिका की रस भाव की चर्चा को करते करते इनको हृदय सार सत्यहीन दुर्बल है गयो है, तब ही तो भाव के झकूरान में बहते फिरे हैं।
1: और न्याय वागेश जी, आपको चित्त और आपकी तबीयत कैसी है?
0: भट्टाचार्य जी, मैं हूं न्याय बागीश, तर्क की तुला पे युक्ति प्रमाणन के बाट बटखरांसो, पदार्थन को तोलनो मेरो दैनिक कार्य है। मेरी बुद्धि सुमेरु पर्वत की समान अटल अचल एवं स्थिर है। मेरी बुद्धि पे भाव लहरिन को कोई प्रभाव नहीं पड़े है। ऐसी हजारन भाव लहरी वासों आए आए के टकराए टकराए के चूर मार है जाए हैं, बिखर जाए।
1: परंतु न्याय वागेश जी, अब तो मेरोहु मन या बालक की हरी बोल धुनी को सुन की पिघल तो ही जा रहे है, और मेरो मन करे है कि अपनी दोनों भुजान को उठाए के और या बालक के संग बालक बन जाऊं और बोलूं हाँ।
0: अरे ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो भट्टाचार्य जी, नेक अपनी मूछ माऊ देखो, शास्त्रन की पूछ माऊ देखो, व्याकरण साहित्य ज्योतिष मीमांसा सांख्य वेद वेदांताचार्य भट्टाचार्य महामहोदयगण इतनी लंबी चौड़ी पाग पदवी को लेकर के इन बालकन के संग नाचोगे गाओगे तो निक विचार करो, जो दुनिया आपको देख रही है यह आपके विषय में कहा कहेगी?
1: दुनिया? न्याय बागेश जी, ये भाड़ में जाए दुनिया और चूल्हे में जाए पंडिताई,

0: अब तो हृदय सूख रहे हो है, ने भिगो लें दे और कैद तो छूट के ने भग लें दे और कह लें दे हाँ।
1: अरे ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो हाँ। अरे ठहरो,
2: देखो यदि आपको हृदय इतनो ही उतावलो है रहे हो है, तो एक कार्य करो, यहां सो घर चले जाओ, घर जाके भीतर सो किवार बंद करके तारो लगाओ और खूब नाचो गाओ, कोई नहीं रोकेगो। यदि यहां बाहर नाचोगे गाओगे तो ये दुनिया ये समाज आपके ऊपर तारी बजाए बजाए के हंसेगो।
0: न्याय बागेश जी, ये दुनिया हंसे तो हसन दे और कोई ताहिने मारे तो मारन दे, चाहे कोई ताली बजाए के हंसे तो हसन दे। अब मेरो मन मेरे हाथ में नहीं है, अब मेरो मन कर रहे हो है हा हा हरी।

0: पहले साहित्याचार्य जी इन बालकन के संग बालक बन गए और फिर भट्टाचार्य हूं इन बालकन के संग बालक बन गए। अब मैं अकेलो ही का इन सब शास्त्र ने लेके चाटू, ऐसो कहो है कि महाजनो ये न गतः सपन था, बड़ेन के पीछे छोटेन को चल देनो चाहिए, ये सद्भाव में नाचे मैं अभाव में ही सही, ये सांचे को नाचे मैं झूठे को ही सही, क्योंकि ऐसो हु कहो है झुटमुट खेले सचमुच हुई, सचमुच खेले बिरला कोई, असल से सारा नकल संसार और नकल के भीतर असल करतार, तो मैं ही क्यों सूखो रहूं, मैं हूं या हृदय को भिगो लूं। बोलो हरी
1: हरी हरी।

रास लीला के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे गौरांग लीला। लेखक थे स्वामी श्री राम शर्मा। प्रस्तुति नरेश मल्होत्रा की थी। आज आपने सुना इसका पहला भाग। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। उप शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कजरी गायन। कलाकार हैं विदुषी शोभा गुरुटू और विदुषी सविता देवी। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं विदुषी शोभा गुरुटू की गाई इस कजरी के साथ।

ओपुस शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कजरी। कलाकार थीं विदुषी सविता देवी और विदुषी शोभा गोटू। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक

0: राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111-23088718 और +9111-23088719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779813261 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।